FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 अगस्त सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस समय 5:59 हो रहे हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किए जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, NPCI और भारतीय रिजर्व बैंक UPI को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने महज 3 वर्षों में 1000 किलोमीटर से अधिक सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 3रे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक महोत्सव में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र वित्तीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और स्टार्टअप्स के बीच नजदीकी सहयोग से भारत का फिनटेक क्षेत्र देश के आर्थिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण चालक बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश के फिनटेक क्षेत्र में विकास के अगले चरण में AI, क्वांटम प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन और विश्वसनीय डिजिटल नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और

0: भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सरकार की ओर से चार मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 2 दिन के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति कल विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस निर्णय पर संसद निर्णय करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जाँच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शनों में करीब 50 लोगों की मौत की खबर है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच दिल्ली में कल रात से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: मातृभूमि के इसी वंदन के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यही होता है संपन्न। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने जिन कलाकारों को सुना वो थे कैलाश श्रीवास्तव, हरिओम शरण, अनुराधा पौडवाल, रूप कुमार राठौर, चंदना दीक्षित। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन बिंदु के अंतर्गत आज का विचार एक चुप। आलेख आचार्य भगवान देव का है, वाचन कर रहे हैं श्री कृष्ण शरद।
1: बहुत दिनों से दांत और जीभ खुशी खुशी भाई बहन की तरह खूब हिलमिल कर रह रहे थे। वे आपस में हंसते हंसाते बस से कहानी सुनाते, सुख दुख में सदा एक दूसरे के काम आते। पर जहां दो लोग रहते हैं वहां कभी न कभी किसी न किसी बात पर तूतू मैमे हो ही जाती है। कहावत है कि बलवान कमजोर पर थोस जमाता है। वो चाहता है कि कमजोर

0: दूर सदा उसके सामने सिर झुकाता रहे। और एक दिन हुआ ये कि न मालूम किस बात पर दांतों को गुस्सा आ गया। उन्होंने किट किट करते हुए कहा, जीव सुन, देख रहा हूं आजकल तू बड़ी ठीठ होती जा रही है। दिन दिन तेरे तौर तरीके बदलते जा रहे हैं। लगता है बढ़िया बढ़िया चीजों को चक्कर तू बहुत इतराने लगी है। समझ ले, यदि मैं नहीं हूं तो तेरा काम न चले। बता तुझे आखिर किस बात पर इतना गुमान हो गया है। ये सब हमारे आगे नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा बोलने लगी है तू। पर जीप चुप रही, ना के कौन लड़े, रहना तो सदा साथ साथ है, फिर मन मुटाव से क्या फायदा। बस चुप रहो, यही ठीक रहेगा, एक चुप को हरावे। अभी दांतों का गुस्सा एकदम ठंडा नहीं हुआ था, तीखे लहजे में बोले, चटोरिन कहेंगे, याद रख, अब कभी बड़बड़ करेगी, ध्यान न धरेगी तो ऐसे काटूंगा कि रसगुल्ले का सारा स्वाद भूल जाएगी। पर जीव अपमान का घूंट पी गई और चूं तक नहीं बोली। सोचा, जरूर किसी बात से दांतों को गुस्सा आ गया है, हो सकता है कोई गलत फहमी हो गई हो। हमेशा तो प्यारी प्यारी बातें किया करते थे, ऐसे में कहा सुनी करना समझदारी नहीं। जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, मुझे आपा नहीं खोना चाहिए। जीव की चुप्पी ने बात वहीं खत्म कर दी। अकेले हाथ से तो ताली नहीं बजती। दांत भी शांत हो गए, उनका सोचा हुआ पूरा नहीं हुआ। सोचा था जीप भी जड़ी कटी सुनाएगी, बात बढ़ेगी और बढ़ती चली जाएगी, फिर हार मानकर वह पिद्दी सी जीप रोने लगेगी, गिड़गिड़ाएगी, उस पर हमारा रंग जम जाएगा। पर आज होना कुछ और ही था। थोड़ी देर बाद एक दांत में कुछ फंस गया। अब क्या था, दर्द के मारे बुरा हाल, पर फांस नहीं निकलनी थी, सो नहीं निकली, टीस होती रही, अरे राम रक्षा करो, बड़ा दर्द है, बुरा हाल है, क्या करूं। बस मोम दिल जीप पसीज गई, कहा सुनी सब भूल गई, अपना भाई का कष्ट भला उसे कैसे देखा जाता। ऐसे क्षणों में वह मदद नहीं करेगी तो फिर कब करेगी। और तुरंत जीव ने अपनी नोक दांतों के बीच बने स्थान में फिराई। दुखते दांत को थोड़ा आराम मिला, फिर सही तरीके से उसने दांतों के बीच में फांस को उछाल दिया। देखते देखते फांस निकल गई। अरे वाह, दांतों का दर्द एकदम गायब, टीस नदारत, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। अब तो दांत हो गया शर्म से पानी पानी, लगा अपने मन ही मन अपने को धिक्कारने। फिर बहुत धीरे से कहा, जीव बहन माफ करना, और कहते कहते रुआंसा हो गया। जीव मिश्री घुली आवाज में बोली, भैया चुप करो, मुझे लज्जित क्यों करते हो, ये तो मेरा फर्ज था। और फिर कभी उनमें झगड़ा नहीं हुआ, वे भाई बहन की तरह हिल मिलकर रहने लगे।
1: चिंतन बिंदु के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आज का विचार, एक चुप। आलेख आचार्य भगवान देव का था, वाचन कर रहे थे श्री कृष्ण शरद। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान से आज का संगीतबद्ध प्रसंग।

अयोध्या नगरी के बाहर जनकपुर प्रस्थान के लिए बारात सजी खड़ी है। वातावरण में स्त्रियों के कंठ से फूटते मंगल गीत के स्वर गूंज रहे हैं। मंत्री सुमंत्र दो रथ विशेष रूप से सजाकर राजा दशरथ के समीप ले आए। नरेश ने एक रथ पर आग्रहपूर्वक कुलगुरु वशिष्ठ को बैठाया तथा शिव गुरु गौरी तथा गणेश का स्मरण कर

स्वयं दूसरे रथ पर आरूढ़ हुए। गुरु की आज्ञा पाकर महाराज ने जब बारात को चलने का संकेत दिया तो देवगण मंगल पुष्पों की वर्षा करने लगे। समस्त वातावरण गाजे बाजे, घोड़े हाथियों के गर्जन तथा धरती और आकाश से झड़ते मंगल स्वरों की गूंज से झंकृत हो उठा। बारात ऐसी सजी है जिसका वर्णन करना कठिन है। चहुं ओर शुभ शकुन हो रहे हैं, बाएं नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो रहे हैं तो दाहिनी ओर खेतों में कौओं का समूह मंगल का संकेत दे रहा है। लोगों को नेवले तथा लोमड़ी के भी दर्शन हुए जो शुभ शकुन के लक्षण हैं। उधर उज्जवल धवल सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण का संकेत दे रही है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान से आज का संगीतबद्ध प्रसंग। स्वर सुरेश वाडेकर का था, संगीतकार थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे इस सप्ताह संसद में। रात्रि 9:30 का समय होगा राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृत भारती का, जिसमें सुनेंगे लघु रूपक राष्ट्र जागरण की दीपशिखाएं, स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी महिला सेनानियां। रात्रि 10 बजे होगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:20 पर होगा इस सप्ताह विधानमंडल में, ये कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित होगा।

देखभाल। जानकारी देंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। प्रातः 7 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे भूले बिसरे गीत। 7:31 पर ब्रज माधुरी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा ब्रज की साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का पाक्षिक विवरण परिक्रमा के अंतर्गत। साथ ही होगी ब्रजभाषा झलकी शहरी बाबू। प्रातः 8:30 का समय रहेगा चित्रपट संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि का। प्रातः 9 बजे सुनिएगा काव्यात्मक वार्ता ब्रज में सावन और तीज त्योहार। वार्ताकार होंगी डॉक्टर सरोज गुप्ता। प्रातः 9:30 पर होगा ब्रज की समसामयिक गतिविधियों पर आधारित सजीव कार्यक्रम ब्रज दर्पण। संगीत रूपक सावन आया धूम मचाता आप सुन सकेंगे प्रातः 10 बजे। प्रातः 10:30 पर होगा कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस हम आपके लिए लेकर आएंगे दोपहर 12 बजे। रामगोपाल शास्त्री के गाए हुए मल्हार गीत आप सुन सकेंगे दोपहर 12:30 से। 1:15 का समय रहेगा बहनों के कार्यक्रम घर अंगना का। कार्यक्रम में आज चर्चा होगी ब्रज में सावन मास और ब्रजवासिन में उत्साह और बरसात के मौसम में साफ सफाई उत्तम स्वास्थ्य के लिए जरूरी। साथ ही सुनिएगा वार्ता सावन के पर्व और त्योहार। जानकारी देंगी निधि भाटिया। दोपहर 2:30 का समय रहेगा सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का। 3 बजे होगा हमारी प्रथम सभा का समापन। संध्या 5:30 से होगा दूसरी सभा का आरंभ कार्यक्रम युववाणी के साथ। कार्यक्रम में आज की बात होगी भीष्म साहनी जयंती और भारत छोड़ो आंदोलन पर। साथ ही सुनेगा रूपक हम भारत की बेटी हैं, भारत की वीरांगनाएं। संध्या 6:15 का समय रहेगा ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम का, जिसमें आज श्रीमद भागवत कथा का प्रसंग होगा पूतना वध का। कथाकार होंगे धर्मवीर अज्ञानी। संध्या वंदन ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे संध्या 6:30 से। किसान वाणी इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे संध्या 6:50 से। श्रोताओं के संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी होगा संध्या 7:31 से। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 8:30 से। रात्रि 9:15 पर आप आनंद लेंगे सुहाने तराने का। रात्रि 11:10 पर होगा हमारी दूसरी सभा का समापन। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। बरसाती सब्जियों की देखभाल, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: बरसाती सब्जियां इस समय किसान भाइयों के खेत में लगी हैं। अगर इन सब्जियों की उचित देखभाल की जाए तो अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। इस समय खेत में मिर्च, भिंडी, बैंगन तथा कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे लौकी, करेला, कद्दू, खीरा आदि लगे हुए हैं। इन सब्जियों की यदि समय पर उचित देखभाल की जाए तो वांछित लाभ लिया जा सकता है। देखभाल में मुख्य रूप से जल निकास का समुचित प्रबंध करें, जिससे मिट्टी में वायु का संचार बना रहे और पौधों की वृद्धि ठीक से हो सके। बरसात में कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। यदि वर्षा देर से होती है तो 8 से 10 दिन के अंतर पर सिंचाई भी करनी पड़ती है। बरसात में खरपतवार का प्रकोप कुछ अधिक ही रहता है, जो मुख्य फसल की वृद्धि को कम कर देता है। इसलिए समय समय पर निकाई गुड़ाई करते रहें। बुवाई के लिए शुद्ध बीज का चयन करें जिनमें खरपतवार के बीज न हों। इस मौसम में लतर वाली सब्जियों को सहारा देकर के उगाया जाए, जिससे फल अधिक मिलेंगे, साथ ही फल सड़ेंगे भी नहीं। सहारा के लिए आप बांस, लकड़ी, छप्पर पर लतर को चढ़ा सकते हैं। अधिक उत्पादन और अच्छी गुणवत्ता वाली सब्जियां लेने के लिए यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करना भी जरूरी होता है। भिंडी में 15 से 20 किलोग्राम नत्रजन का उपरिवेशन किया जाता है, जिसे 30 से 40 किलोग्राम यूरिया से

0: पूरा कर सकते हैं। ध्यान रहे, खाद पत्तियों पर और तनों पर नहीं पड़ना चाहिए। यूरिया के उपरिवेशन के पूर्व देख लें कि खेत में पर्याप्त नमी है कि नहीं। यदि नमी कम है तो पहले सिंचाई कर लें, उसके 5 से 6 दिन बाद यूरिया का उपरिवेशन करें। मिर्च और बैंगन की फसल में 25 से 30 किलोग्राम नत्रजन यानी कि 50 से 60 किलोग्राम यूरिया का उपरिवेशन किया जाता है। यह उपरिवेशन 2 बार में किया जाता है, पहला पौधा रोपाई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी बार फूल आने के समय। कद्दू वर्गीय सब्जियों में नत्रजन का उपरिवेशन 20 से 25 किलोग्राम करें, जिसे 40 से 50 किलोग्राम यूरिया द्वारा पूरा कर सकते हैं। पहला उपरिवेशन फूल आने के पहले तथा दूसरा उपरिवेशन फूल आने पर करना होगा। इसके अलावा बरसात में सब्जियों पर कई प्रकार के रोग और कीट का आक्रमण भी होता है। भिंडी में लगने वाला प्रमुख रोग है येलो वेन मोज़ेक। इस रोग से बचने के लिए रोग रोधी किस्में जैसे कि परवनी क्रांति और पंजाब 7 को लगाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस रोग को सफेद मक्खी फैलाती है, इसके नियंत्रण के लिए 10 ग्राम डाइमेथोएट को 10 लीटर पानी में घोल करके 10 दिन के अंतराल पर 2-3 छिड़काव करें। अगर सब्जियों में एंथ्रेक्नोज रोग लगा है तो ब्लाइटॉक्स 50 या डाइथेनेम 45 में से किसी एक दवा की 10 ग्राम मात्रा को 5 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय सब्जियां तथा भिंडी में पाउडरी मिल्ड्यू का भी प्रकोप होता है, जिसमें पत्तियों की निचली सतह पर भूरी और सिकुड़ी हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए केराथिन 3 ग्राम को 10 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें। बैंगन में लगने वाला एक रोग है फास्मोब्लाइट। इसमें पत्तियां और फल सड़ने लगते हैं, पत्तियां पीली पड़ करके सूख जाती हैं। इस रोग से बचने के लिए बीज उपचार आवश्यक है। बीज को आधा घंटे तक 50 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर गर्म पानी में रखा जाता है, फिर बीज को निकाल करके छाया में सुखा लिया जाता है। इसके अलावा बरसात में कीट भी फसल को काफी प्रभावित करते हैं। भिंडी में जैसिड कीट लगता है, जिसके प्रकोप से पत्तियों में पीले पीले धब्बे तथा सिकुड़न आ जाती है। इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल डेमिटोन की 10 मिलीलीटर मात्रा को 10 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव किया जा सकता है। मिर्च तथा भिंडी में एफिड यानी कि माहू के आक्रमण होने पर 0.1% डाइमेथोएट का छिड़काव करें। बेल वाली सब्जियों की पत्तियों को काटकर नुकसान पहुंचाने वाला कीट है रेड पंपकिन बीटल। इस पर नियंत्रण पाने के लिए इंडोसल्फान का छिड़काव किया जा सकता है। भिंडी और बैंगन में बोरर कीट का आक्रमण भी अधिक होता है, इसके लिए फूल बनने के पूर्व तथा फूल आने पर इंडोसल्फान 15 मिलीलीटर को 15 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातों के अंतर्गत जानकारी, बरसाती सब्जियों की देखभाल। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

सूर्या और शाम के युगल स्वरों में अभी सुना आपने दिल्लगी फिल्म का ये गीत। बोल शकील बदायूं ने के थे, संगीत दिया था नौशाद ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म साहेब बीवी और गुलाम से। स्वर गीता दत्त का है, शब्द रचना शकील बदायूं ने की है, संगीत दिया है हेमंत कुमार ने।

सबक फिल्म में अभी आपने सुना मुकेश के सुर में ये गीत। शब्द रचना सावन की थी, संगीत दिया था उषा खन्ना ने। और अब कार्यक्रम में समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं फिल्म दिल ही तो है का ये गीत, जिसे स्वर से सजाया है मुकेश ने। शब्द रचना साहिर लुधियानवी की है, संगीत दिया है रोशन ने।

हेमंत कुमार को भी आपने सुना फिल्म 20 साल बाद में। शब्द रचना शकील बदायूं की थी, संगीत से सजाया था हेमंत कुमार ने। इसी गीत के साथ भूले बिसरे गीतों का सफर यही होता है संपन्न। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 7:18 होने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: सकू सह सकू। महात्मा गांधी। मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर। अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम। जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में वाराणसी के दो बुनकरों समेत 22 लोगों को प्रदान किए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। कहा, हथकरघा केवल आजीविका का साधन नहीं, समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। संसद ने पारित किया सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026। भुगतान में देरी और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाएगा ये विधेयक। मुख्यमंत्री ने अम्बेडकर नगर में 194 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सिद्धार्थनगर से शुरू होने वाले नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का केंद्र बिंदु बनेगा अम्बेडकर नगर। और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने अभी आगामी 5 दिनों तक और बारिश की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर कल नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। वस्त्र मंत्रालय के इस कार्यक्रम में वाराणसी के दो बुनकरों समेत 22 लोगों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं, बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए कई पहल की है।
3: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीवियन इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए। बुनाकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।

0: में वाराणसी के नसीम अंसारी को इश्कत गुलदस्ता जामदानी साड़ी बुनाई में उत्कृष्टता के लिए बुनाई श्रेणी में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं शाह मोहम्मद अंसारी को संत कबीर हथकरघा पुरस्कार लुप्त प्राय बुनाई श्रेणी में सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि के लिए इन दोनों बुनकरों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट शिल्पकारों और बुनकारों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर कल लखनऊ में उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हैंडलूम एवं पावरलूम उद्योग विकास योजना और झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए। कार्यक्रम में हथकरघा उत्पादों के विपणन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रमुख संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हथकरघा और पावरलूम से करीब 30 लाख लोगों की आजीविका जुड़ी है। सरकार ने 40,000 से अधिक हस्तशिल्पियों को विद्युत सुविधा के रूप में 109 करोड़ रुपए का लाभ दिया है। श्री योगी ने हथकरघा उत्पादों को डिजाइन, तकनीक, पैकेजिंग और मार्केटिंग के जरिए वैश्विक बाजार से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को उपहार में देने की अपील भी की।
1: हमारा प्रयास यही होना चाहिए, विदेश में बने हुए उत्पाद को नहीं बल्कि हमारे कारीगर और हस्तशिल्पियों के द्वारा जो उत्पाद तैयार होता है उसी को किसी को गिफ्ट के रूप में उपलब्ध करो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, अब दीपावली हो, होली हो, ईद हो, कोई भी पर्व और त्योहार होता है, किसी के घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए उत्पाद को ही भेंट करते। हम लोगों ने सरकारी विभागों में जो हथकरघा से जुड़े हुए उत्पाद को खरीदने के लिए व्यवस्था बनाई है। विभाग तत्काल इस पर आगे कार्रवाई करें और इसके लिए जिस भी स्तर पर प्रयास होने चाहिए इस पर भी हमारे प्रयास आगे बढ़ने चाहिए।
0: संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने कल इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अंबेडकर नगर में 706 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत वाली 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और प्रमाण पत्र भी बांटे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज अंबेडकर नगर विकास के मॉडल के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अंबेडकर नगर को एक्सप्रेसवे से जोड़कर जिले में विकास को गति दी है। सिद्धार्थनगर से शुरू होने वाले नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का केंद्र बिंदु भी अंबेडकर नगर को बनाया जा रहा है।
3: नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में भी हम लोग सिद्धार्थ नगर के बांसी से होते हुए, बसी होते हुए और प्रयागराज को जोड़ने और चित्रकूट से लेकर के फिर हम सुदूर दक्षिण भारत तक उस मार्ग को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसका केंद्र बिंदु भी हमारा अंबेडकर नगर जनपद बनने जा रहा है। अंबेडकर नगर जनपद से ही उसको प्रयागराज तक पहुंचाएंगे।
0: नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कल प्रदेश के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रकों के साथ बैठक की। इस दौरान उच्च शिक्षण संस्थानों में नशा मुक्ति अभियान को प्रभावी और सतत बनाने के लिए कार्य योजना बनाई गई। एक रिपोर्ट।
4: बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी राजकीय और निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में प्रतिदिन विद्यार्थियों को नशा मुक्ति शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही रन फॉर नशा मुक्ति, मैराथन, नुक्कड़ नाटक जैसी जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अभियान की प्रभावी निगरानी के लिए पूरे प्रदेश को 5 जोन में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन के लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों की बिक्री पर सख्ती से रोक सुनिश्चित की जाएगी। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।

बैठक में ये भी तय हुआ कि सभी राजकीय और निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के छात्रावास, कैंटीन और पूरे परिसर का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। ऑनलाइन डिलीवरी और कुरियर से आने वाली सामग्री की प्रवेश द्वार पर ही जांच होगी। ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी अन्य माध्यमों से कोई नशीला पदार्थ परिसर में न पहुंचे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और आपदा प्रबंधन विभागों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा है। लोकसभा में कल एक लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान स्थानीय भाषाओं में समय पर और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की से भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। उधर पहाड़ी क्षेत्रों के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर, प्रयागराज, जौनपुर और आजमगढ़ में गंगा और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। बढ़ते जलस्तर के कारण अस्सी घाट पर होने वाली आरती के स्थान को 10 फीट ऊपर कर दिया गया है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में वाराणसी के 2 बुनकरों समेत 22 लोगों को प्रदान किए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। कहा, हथकरघा केवल आजीविका का साधन नहीं, समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। संसद ने पारित किया सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026। भुगतान में देरी और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाएगा ये विधेयक। मुख्यमंत्री ने अम्बेडकर नगर में 194 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सिद्धार्थनगर से शुरू होने वाले नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का केंद्र बिंदु बनेगा अम्बेडकर नगर। और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने अभी आगामी 5 दिनों तक और बारिश की जताई संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। धन्यवाद।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: ब्रज माधुरी कार्यक्रम सुनवे वारे हमारे सभी श्रोता साथिन को जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। भैयाओ आज के कार्यक्रम को आरंभ करें हैं ब्रज की साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के पाक्षिक विवरण परकम माते जाए हमारे ताई लेके आए हैं भोलेश्वर उपमन्यु। तो आओ भैया सुनाए जा पाक्षिक विवरण को।
1: या पखवारे में गुरुदेव एवं साक्षात देव के रूप में विश्व प्रसिद्ध गिरिराज भगवान की पूजा अर्चना वंदना और परिक्रमा को भरपूर जोर रहे। लाखेन महिला पुरुषन ने अपने गुरुवन के आश्रमन और घरन में आयके पूजा अर्चना कीनी। भक्तन ने गुरुवन को तिलक करयो, वस्त्र फल मिष्ठान धनराशि और अनेक प्रकार के उपहार दीने। उन्होंने यथा सामर्थ्य भंडारे आयोजित कीने और साधुवन वैष्णवन संग जरूरतमंदन को भोजन कराए। अनेक संपन्न शिष्यन ने साधु वैष्णव ब्रजवासीन को दक्षिणा अर्पित करके आशीर्वाद लीनो। गुरु पूर्णिमा को महापर्व मथुरा वृंदावन गोवर्धन वर्षाना नंदगांव बलदेव राधा कुंड वांडीरवन वंशीवट महावन गोकुल कोसीकला कोकिलावन फरह राया माट सोनई छटीकरा मुड़ेसी आदि अनेक धर्म स्थलन पे जोर शोर से मनायो गयो। गुरुवन ने अपने आश्रमन में और घरन में भंडारे आयोजित करके भक्तन की अपने शिष्यन की अपनी तरफ ते प्रसादी सेवा कीनी। गुरु पूर्णिमा को सबसे बड़ो उत्सव गोवर्धन धाम में मनायो गयो। गोवर्धन में पूरे 5 दिना गुरु पूर्णिमा की धूम रही। इन 5 दिनान में लगभग 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने गिरिराज धरण की 7 कोसीय परिक्रमा लगाई। गौड़ीय संप्रदाय के संतन ने अपने सिर मुड़ाए के मुड़िया परंपरा को आगे बढ़ायो। इन संतन ने नंगे सिर गायन वादन करते भये नाचते कूदते गिर्रा जी की परिक्रमा लगाए के बेला को सार्थक कीनो। संतन की ऐसी परंपरागत परिक्रमा के दर्शन करवे काजे लंबी लाइन लगी। यह दौरान प्रशासनिक व्यवस्था जबरदस्त रही। यह अवसर पे गिरिराज धाम संघ राधा कुंड धाम राधे राधे गिरिराज धरण की जय के स्वरंते दिन रात गूंजते रहे। यह पूर्णिमा मेले की बेहतर व्यवस्था बनाए बे काजे आगरा मंडल को प्रशासन दिन रात लगे रहो। सैकड़ान अधिकारियन संग हजारन कर्मचारियन ने जबरदस्त मेहनत करी। लगभग 1000 सरकारी बसन ने भक्तन को गंतव्य तक पहुँचायो। भीड़ अधिक हैवे के चलते मेला के दौरान जगह जगह बड़े बड़े जामों लगे। परिक्रमा को दौर गिरिराज जी के अलावा वृंदावन मथुरा नंदगांव राधाकुंड बलदेव गोकुल महावन जैसे प्रसिद्ध धर्म स्थलन में खूब रहे। लाखेन भक्तन ने इन तीर्थन की परिक्रमा लगाई तथा अपने आराध्यन के दर्शन करके जम के धर्म लाभ लीनो। श्रद्धालुओं ने भगवान वेद व्यास जी को प्राकट्योत्सव याई पखवारे श्रद्धा भक्ति के संग मनायो। भक्तन ने वेद व्यास जी की तपस्थली मथुरा धाम के कृष्ण गंगा घाट पे आए के धूमधाम ते मनाई। उन्होंने वेद व्यास जी की प्रतिमा को अभिषेक कीनो, वस्त्र

0: अर्पित कीने विविध भोग अर्पित कीने जय जयकार करी। आयोजक ने या अवसर पे अनेक विद्वानन को सम्मानित कियो। अनेक भक्तन ने वेद व्यास जी की तस्वीर पे पूजा करके प्राकट्य उत्सव मनायो। उन्होंने चित्रण पे पुष्प चढ़ाए और पूजन अर्चन बंदन गुणगान आदि सत्कर्म कीने। या पखवारे इन धर्म स्थलन में जम के जाम लग्यो। भक्तन को कई कई किलोमीटर चल के अपने गुरु आश्रमन तथा अपने भगवानन के दरबार में दाखिल हैनो पड़ो। प्रशासन ने व्यवस्था संभालवे काजे खूब पसीना बहायो, लेकिन अतिक्रमण की जगह जगह भरमार हैवे के मारे हालात सुखकारी नहीं है पाए। रोडवेज ने अतिरिक्त बस लगाई तो रेलवे ने मुड़िया मेला स्पेशल रेलगाड़ी संचालित कीनी। भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय सावन महीना याई पखवारे आए गयो। या सावन महीना के पहले दिन तेई भक्तन ने महादेव जी की विशेष पूजा अर्चना आरंभ कर दीनी। सावन के पहले सोमवार को भोलेनाथ जी की भक्ति और अधिक बढ़ गई। महादेव जी के घर पहले पंचामृत बिल्व पत्रन विभिन्न फलन धतूरे के फलन अगरबत्ती धूप बत्ती ते जम के महके। शाम को देवादिदेव के घरन अनेक प्रकार के फूलन ते सजाए समारे गए। शाम को बिजली की भरपूर जगमग भई। भक्तन ने भोले बाबा के दरबार में प्रज्वलित दीपक धर क्यों रोशनी कीनी। देवादिदेव महादेव की पूजा अर्चना वंदना वृंदावन मथुरा नंदगाम राधाकुंड बलदेव गोकुल महावन गोवर्धन भांडीरवन वंशीवट माट राया फरह जैसे प्रसिद्ध धर्म स्थलन के संग ब्रज के सवई गामन में करी गई। सैकड़ान भक्तन ने गंगा जी ते कावर लायके अपने इष्टदेव शंकर भगवान को जलाभिषेक करके पुण्य प्राप्त कीनो। या पखवारे में मथुरा के रंगेश्वर महादेव भूतेश्वर महादेव गर्तेश्वर महादेव गोकर्णनाथ महादेव महावन के चिंताहरण महादेव नंदगांव के आशेश्वर महादेव वृंदावन के गोपेश्वर महादेव पर जबरदस्त भीड़ लग रही है। इन सभी महादेवन के मंदिरन में सोमवार को लाखें श्रद्धालु आमेंगे। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती याई पखवारी मनाई गई। जगह जगह आयोजन करके देश प्रेमियों ने आजाद जी के चित्र पे पुष्प अर्पित कीने। उन्होंने आजाद जी को भारत को महान सपूत सच्चरित्र अद्वितीय क्रांतिकारी बतामते भये भरपूर गुणगान कीनो। उनके चितेरन ने या अवसर पे आजाद जी की खूब जय जयकार करी। श्रद्धालुओं ने स्कूलन में आजाद जी को नमन बंदन गुणगान कीनो।
1: तो भैया परिक्रमा के अंतर्गत अभी आपने सुनियो ब्रज की साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को पाक्षिक विवरण। जाए हमारे ताई लेके आए भोलेश्वर उपमन्यु। और आओ भैया अब आनंद लें ब्रज भाषा झलकी को। सहरी बाबू या को आलेख आनंद बल्लभ गोस्वामी को है और प्रस्तुति है आर के त्रिपाठी की।
2: शहरी बाबू लीजिए सुनिए आनंद बल्लभ गोस्वामी की लिखी और आर के त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत ये झलकी।
3: ये तो तेने बड़ी अच्छी बात बताई। चल फटाफट मक्का की रोटी और सरसों की सब्जी बनाए ले। तो मालूम है दामोदर को मक्का की रोटी और सरसों की सब्जी बड़ी पसंद है। जब जब वो शहर ती आवे बाकू यही चीज बड़ी पसंद लगे।
4: सो तो मोकू सब मालूम है, तुम का बताओगे मोए।
3: चल चल झटपट तैयारी कर ले, वो आ रहे होएगो। देख मैं भी आज अभी खेत पे ना

0: जा रहे हो, बाद में जाऊंगा।
1: लियो बाबू, कुल्ला के लिए पानी ले लो।
0: ला धर दे यहां पे, देख तेरी मैया क्या कर रही है रे।
1: दामोदर चाचा आए तब तो जरूर मेरे काजे बढ़िया सी कमीज लाए होंगे।
0: जा जा पहले काम देख, अरे लाए होएगो तो मिल जाएगी। अरे सुनी, अरे देख नेक धनिया की चटनी पीस लेती।
2: मुझे मालूम है कि तुम्हारे दोस्त को बचपन से ही धनिया की चटनी बहुत अच्छी लगे।
0: अरे तू ही कैसे मालूम है?
2: माताजी बतायो करती कि स्कूल में तुम दोनों की चटनी के पीछे खूब लड़ाई होती, और देखो उन्हीं की पसंद की मूरी की भुजिया बनाए बे के लिए लीला की अम्मा ते मूरी मांग के ले आई हूँ, समझे?
0: हाँ रमेश की अम्मा, बचपन से ही हम दोनों बड़े गहरे दोस्त थे। हम दोनों ही पूरे स्कूल में पढ़वे में अव्वल हते। फिर पढ़े लिख के दामोदर तो शहर चलो गयो और बैंक में क्लर्क है गयो। मैंने बहुत मना करी हती कि देख दामोदर, गामन जैसा सुख तो कुछ शहर में ना मिलेगो। इतनी जमीन है तेरे पास में कि तेरी पूरी जिंदगी चैन से गुजर जाएगी, लेकिन माने मेरी एक ना सुनी।
2: तो फिर पढ़वे लिखवे को फायदा का भयो?
0: हाँ रमेश की अम्मा, देख बचपन से ही हम दोनों बड़े गहरे दोस्त थे। हम दोनों ही पूरे स्कूल में पढ़वे में अव्वल थे। फिर पढ़े लिख करके दामोदर तो शहर चलो गयो और बैंक में क्लर्क है गयो। मैंने बहुत मने करी, देख दामोदर, गामन जैसा सुख तो उस शहर में ना मिलेगो। तेरे पास इतनी जमीन है कि तेरी पूरी जिंदगी चैन से गुजर जाएगी, लेकिन बाने मेरी एक ना सुनी।
2: तो फिर पढ़वे लिखवे को फायदा का भयो?
0: क्यों, मैं पढ़े लिख के या खेती को नहीं कर रहे हो? और देख पढ़वे लिखवे ते ही तो आज सही तरीका थे खेती करवे को ज्ञान भयो है, या एग्रीकल्चर को पढ़ के अच्छे बीजन की पहचान, खाद पानी को सही तरीका, ये सब जानकारी भई है। और देख ले जे जमीन पिताजी के जमाने में ही और कितो गल्लो भयो कर तो, और आज कितो गल्लो है रियो है। देख जा खेती के वजह से ट्रैक्टर, ये नयो मकान, ये सब खेती के वजह से तो भयो ही है।
2: तो तुम्हारे हिसाब से तुम तो सुखी हो और दामोदर लाला जी बहुत दुखी हैं, यही तुम्हारो मतलब है ना?
0: अरे दुखी तो ना है, पानी मिलो भयो 10 रुपया किलो, दूध, बासी सूखी साग सब्जी, टंकी को पानी, दिन भर गाड़ी इनकी धूल मट्टी और धुआं फाकते रहो। अरे खुली हवा के तो वहां पे दर्शन उनाए, और गामन की शुद्ध ताजी हवा, ताजी पानी, ताकतवर खाए वो, ये सब गामन में मिले, शहर में इन सब चीजन के दर्शन उनाए।
2: तुम्हें ही तो अच्छा लगे गांव और यहाँ की शांति, दामोदर लाला जी को तो शहर अच्छा लगे। तो तुम्हें क्या परेशानी है ये बताओ मुझे।
0: हाँ, तू तो हमेशा उल्टो ही समझियो, तो कु कसम है। अरे भगवान जा पहले अपनो काम कर, बढ़िया ही अपने देवर की हिमायत ले बारी।
3: भौजी पाए लागू।
2: राम राम भैया, राम राम।
3: और भौजी सुनाओ क्या हाल है?
2: सब सही है भैया।
3: अच्छा जी बताओ, हमारो बेटा रमेश ना है, दिख रहे हो, वो कहाँ चलो गए हो?
2: यही है रमेश।
4: आयो।
3: आ बेटा।
1: राम राम चाचा।
3: खुशी रहे बेटा, और सुना क्या हाल है तेरे?
1: ठीक हूँ चाचा।
3: अच्छा ये तो बता, पढ़वे तो जावे है ना?
1: हाँ चाचा, अब मैं 6 दर्जा में आ गया हूँ, और मालूम है दर्जा 5 में मेरे पूरे गांव में सबसे ज्यादा नंबर आए।
3: अच्छा बहुत अच्छा भैया, आखिर अपने पिताजी की इज्जत तो जैसे ऊंची रखनी ही रहते हो। अरे तो मालूम है कि ना है, तेरे पिताजी भी हमेशा पूरे गांव में सबसे ज्यादा नंबर अंते पास होते।
2: लाला जी, बहू रानी को क्यों ना लाए?
3: भौजी कहा बताऊं तो है, देख बच्चन की मासिक परीक्षा चल रही है ना, सो तो उन्हें तैयार करवो, स्कूल भेजनो, और फिर ऊपर से घर के काम काज। अच्छा तो ऐसा है, अब क्या आमंगे हम गर्मी की छुट्टी में, तो सब बच्चन के समय था मंगे।
2: अच्छा लाला।
0: अरे भैया का अपने बेटा और भौजाई दीदी बतरा तो रहे हो? अरे कजी हम ते बतराए ले। देख मैं तो कहूँ कि तू हमेशा के ताई क्यों ना या गांव में आ जावे। अरे कहाँ रखो या बैंक की नौकरी में, तेरे पास इतनी जमीन जायदाद है, बहुत बढ़िया एक कृषि फार्म तू खोल सके, फिर तू पढ़ो लिखो है ही, क्यों ना अपनी योग्यता को फायदा या गांव में आए के उठावे।
3: फिर वही पुरानी बात, अरे यार।

0: जेई फावड़े अगर चलाने होते तो पढ़ाई करवे को कहा फायदा यार। अब तू तो मुझसे ज्यादा पढ़ो लिखो है और आगे ही पढ़ाई में रहो है हमेशा, कहा फायदा भयो तेरी पढ़ाई को। अरे अगर तू चाहतो तो तुझे शहर में बहुत ही अच्छी नौकरी मिलती, अच्छे अच्छे लोगों में रहतो, लुगाईन में भी रहतो। और फिर अच्छा एक बात बता कि गांव की जिंदगी और कुआ के मेढक की जिंदगी में कछु अंतर है के ना है?
1: अरे भैया जो भी अंतर है वो तेरी समझ में ना आवे को।
0: तू पिछले 15 साल से तो मुझे यही कह रहे हो है और अभी तक तो तेरी समझ में आयो ना है कछ।
1: ठीक है जब समझ में आ जाएगी बेटा तब तो ते बात करूंगा।
0: भैया रे तब तो तेरी इच्छा या जन्म में पूरी ना आए होनी।
1: देख
2: अरे अब तो शांत है जाओ, बेचारे लाला जी इतने दिनान में तो अब आए गांव में, खातिर करवो तो दूर।
0: अरे भौजी बस छोड़ो या की बात, तो या की तो यही खातिर है। अब आप बोलो कहाँ बनाए रही हो?
2: बुई तुम्हारी पसंद की मक्का की रोटी।
0: हाँ? अरे क्या?
2: सरसों का साग और धनिये की चटनी।
0: अरे भौजी वाह वाह वाह, जीभ में पानी आ गया भौजी, जाओ अब फटाफट ले आओ।
1: अब कैसे आया बेटा जीभ में पानी, खा ले तो शहर में, गांव आए हुए की क्या जरूरत आती।
2: आओ लाला जी आओ, चलो कुल्ला करके हाथ पैर धो लो, खाए बे को तैयार है।
0: हाँ भौजी चलो। वाह भौजी क्या चटपटी चटनी बनाई आपने आज।
2: मठा लेओगे लाला जी थोड़ा सा?
0: ना है भौजी, मठा तो सवेरे ही सवेरे पार्वती चाची ने झिक्के पवाए दियो।
1: अरे दामोदर
0: हाँ,
1: कितने दिन तू रुके हो गांव में अभी?
0: बस भैया रे 2 ही दिन की छुट्टी लेके आया हूँ और वो कुछ जरूरी काम है तब छुट्टी मिल पाई।
1: अरे ऐसा कहा काम हो?
0: अब तो ते कहा छुपाऊ भैया, पिताजी के परलोक सुधारवे के बाद से सब खेत जमीन ऐसे ही पड़े हैं। एक आध बार आध बटाई हेतु दियो धनिया को तो वाऊ ने कछु करके नाए दियो, और फिर उधर शहर में बैंक कॉलोनी में प्लाट ले लियो भैया मैंने हरकिशन। हाँ अब तो सच बताऊं, और देख गांव की बेकार जमीन को बेच के शहर में शानदार 3 मंजिलों में बनवाए रहा हूँ अब। हाँ
1: कहा कह रहे हो? गांव की जमीन को बेच के शहर में मकान बनावे गो? अबे तो कु नेकु शर्म ना आवे, बाप दादान की खून पसीना ते कमाई जमीन जायदाद को बेच के शहर में बसेगो? अरे भले आदमी, चल काहू की न मान के तेने नौकरी कर ली, घर खानदान को तू अकेलो ही लड़का घर गांव को छोड़ करके शहर में चलो गयो कोई बात ना है, पर ये बता रिटायर हेवे के बाद में तू कहा करेगो?
0: रिटायर है के बेटा नातीन को सुख लूंगो, ऐसो है कि अब हमारो गाड़ी को टाइम है वो है, अब मुझे चलन दियो।
1: ठीक है भैया जैसी तेरी इच्छा, हमारी शुभकामना तेरे संग में है, और देख जब भी हमारी जरूरत पड़े जा घर के दरवाजे हमेशा आधी रात को तेरे ताई खुले हैं।
0: अरे सो तो है ही है भैया, वहां में कहा कोई कमी है। अच्छा भौजी राम राम।
2: राम राम भैया।
0: हरकिशन भैया राम राम।
1: राम राम भैया राम राम।
3: Yeah.

0: कौशल्या बहुत दिन है गए, मेरे यार दामोदर की शहर से कोई चिट्ठी पत्री ना आई। पतो ना आए बेचारो शहर में कैसो है, कहा हम लोग उनको बिल्कुल ही भूल गए, वो तो शहर में जाए के।
1: हाँ रमेश के बापू, 10-12 साल तो है गए होंगे। पहले तो चिट्ठी भेज दो, ठीक है यहाँ पे बेचारे का कौन है सुबाकू लिखे है। अरे रमेश के बापू उठ के देखो कौन आया है।
0: कौन आया हुए?
1: हाय देखो तो।
0: अरे अरे दामोदर, राम राम भैया, राम राम, राम राम भैया, राम राम।
1: आओ लाला जी आओ बैठो।
2: हाँ भौजी।
0: अरे यार तू इतने दिन अंते गयो है, तेने कोई चिट्ठी पत्री ना दी, का अपने यार को बिल्कुल ही भूल गयो?
2: ना है भैया, ऐसा ना है सके।
0: अच्छा कौशल्या देख, हमारा यार आज बहुत दिन के बाद

0: में आयो है। पहले तू जा और जाए करके मेरे यार के ताई अच्छे से जलपान की तैयारी कर, बाकु जलपान करा।
1: अच्छा अच्छा अब लाता हूँ, तब तक लाला को हाथ मुंह धोन दियो।
0: हाँ यार दामोदर, अब जी बता तेरे कहाँ हाल है, शहर में तेरी कैसे कट रही है, हमारे बाल बच्चे हमारी भौजी सब ठीक ठाक तो हैं शहर में?
2: बस सब ठीक ही है, और फिर जैसे भगवान की इच्छा भैया, अब क्या बताऊं मैं तुझे, पत्नी को मरे 4 साल हो गए, और फिर बड़ा छोरा वो तो शहर में जाए के इसमें पीवे को ऐसा शौक लगो भाई, बहुत समझायो परवाने एक न मारी, और फिर 2 साल है गए वो अपने भैया के पास ऊपर चलो गए।
0: अरे राम राम, अरे भैया ये तो तेरे ऊपर बड़ो बच्चे बात है गयो, ये कहाँ रहे हो भैया? अच्छा दामोदर जी बता, भैया तेरे छोटे बेटा के क्या हाल है?
3: छोटा छोरा बस, बाकी तो पूछे ही मत हरकिशन, वाने तो एक ऐसी छोरी से ब्याह कर लियो है कि बस कहा बताऊं मैं, अब तू बस मैं कहा बस पूछे।
0: तेरी यह बिथाकू सुन करके, खैर जो कछु है गयो सो है गयो, अब आगे की सोच, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत।
3: ठीक है,
0: हमारी समझ में तो ये ना आवे कि लोग गावन को छोड़ के शहर की तरफ क्यों जामे हैं, ऐसो शहरन में कहा धरो है। पर चल तू तो शहर ते लौटे आयो, यही हमारे ताई सबसे बड़े खुशी की बात है। देख सवेरे को भटको भयो, सांझ को अगर घर आ जावे तो वकु भूलो ना ही कहे।
3: बिल्कुल सही।
4: आप सुन रहे थे आनंद वल्लभ गोस्वामी की लिखी झलकी शहरी बाबू। इसमें भाग लिया था विनोद बिहारी शर्मा, प्राण गोपाल आचार्य, इंद्र कुमार बंसल और डॉली अरोरा ने। प्रस्तुति आर के त्रिपाठी की थी।
5: तो भैया या ब्रजभाषा झलकी के बाद में आओ अब आनंद लें या ब्रज लोकगीत को। जय स्वर दियो है अलका राजेश ने।

अलका राजेश के सुर में अभी सुने आपने ये लोकगीत और याई के संग आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम यही हुए है संपन्न। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी, ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8 बजने को है, अब समाचार होंगे।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्यघर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई लेन देन निःशुल्क रहेगा। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया, विधेयक को देश का आंतरिक मामला बताया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहले औपचारिक बातचीत की। रूस से तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% शुल्क लगाने का विधेयक अमेरिका के सेनेट में पारित, और पूर्वी राजस्थान तथा ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता।

0: संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह के दौरान संस्थान के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जैसे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे जो IIT दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित AI संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है। यह आधुनिक सुविधा AI, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और अंतर्विषयक शोध के क्षेत्रों में संस्थान की क्षमता को मजबूत करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि IIT दिल्ली ने हमेशा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वह इस अग्रणी संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच जाने के लिए उत्सुक हैं। श्री वांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कल नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में IIT दिल्ली के निदेशक रंजन बैनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। श्री रंजन बैनर्जी ने नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा के बारे में भी जानकारी दी।
2: इस कॉन्वोकेशन में 3000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्रीज ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
0: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया है कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। एक रिपोर्ट।
3: UPI के जरिए लेनदेन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया PCI ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए UPI सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये स्पष्टीकरण एक बड़ा राहत देने वाला कदम है। PCI ने कहा है कि UPI देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेनदेन को देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है ताकि भविष्य में भी UPI उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक FCRA पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
4: हमने टिप्पणियां देखी हैं। ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
5: रेगुलेट द फ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स।
0: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है।
5: While we are coordinated,
4: पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में हम स्थानीय नौवहन मंत्रालय और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार के निर्बाध संचालन की मांग दोहराते रहे हैं। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे लोगों के बुनियादी ढांचे और नागरिकों, खासकर वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने से बचें।
0: पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए है। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल

0: जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन

0: समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक को समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। विधेयक में ईरान पर प्रतिबंध संबंधी 1996 के अधिनियम को बढ़ाकर 2031 तक करने का भी प्रावधान किया गया है। 1996 के इस अधिनियम में ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। इनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव में कथित गड़बड़ियां और स्थानीय विधानसभा चुनाव में बाहरी लोगों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शन में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में आज हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा में तेज बारिश की आशंका है। इसके चलते राज्य में व्यापक वर्षा होगी।
2: मौसम विज्ञान विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी और 24 जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की है, जिसमें कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। ऑरेंज चेतावनी वाले जिले सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, केओंझर और मयूरभंज है। भारी बारिश के अनुमान के देखते हुए एहतियात के तौर पर मयूरभंज में आज सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस बीच बालेश्वर के बस्ता में जड़का नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है।
3: केरलम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य के सभी जिलों में बीते सप्ताह से ही बारिश संबंधी अलर्ट जारी किए गए हैं। कासरगोड, कुन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, कोट्टायम, अलापुजा और पथनामथिट्टा जिले आज ऑरेंज अलर्ट पर, जबकि बाकी जिले येलो अलर्ट पर हैं। केरलम और लक्षद्वीप में आज तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस उपलब्धि से पता चलता है कि मिशन के तहत नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। एक रिपोर्ट।
4: अक्टूबर 2022 में शुरू होने के बाद से स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने मरीजों के लिए आसान QR कोड स्कैन के जरिए अस्पताल में डिजिटल रूप से पंजीकरण कराने की सुविधा देकर OPD रजिस्ट्रेशन के अनुभव का कायाकल्प कर दिया है। यह सेवा अभी देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 756 जिलों में 30,800 स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार स्कैन एंड रजिस्टर ट्रांजेक्शन के साथ देश में सबसे आगे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एम्स नई दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीजों ने इस सेवा से पंजीकरण कराए हैं। इस उपलब्धि के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने कहा कि स्कैन एंड रजिस्टर के जरिए 25 करोड़ लोगों के OPD में पंजीकरण की उपलब्धि भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र में नागरिकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। आनंद के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चिराग झा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद कनक। आज अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी हेडलाइन बनाया है। नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई

0: द्वारा दाखिल आरोप पत्र के हवाले से दैनिक जागरण ने लिखा है, एनटीए के ही तीन विषय विशेषज्ञों ने किया नीट का पेपर लीक। अमर उजाला ने लिखा है, सीबीआई का दावा, पेपर बनाते समय ही सवाल याद करते, टेलीग्राम व्हाट्सएप से बिचौलियों तक पहुंचाते, एनटीए के तीन विशेषज्ञ मास्टरमाइंड, कई महीने पहले रची साजिश। लोकसत्य लिखता है, सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, एनटीए के एक्सपर्ट निकले विभीषण। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, जिस तेजी से सीबीआई ने इस जांच को अंजाम दिया है उसी तेजी से आगे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। देश में जो भी पेपर लीक के मामले हाल के महीनों में सामने आए हैं उनकी भी सीबीआई जांच करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दिल्ली एनसीआर में कल हुई घनघोर बारिश को जनसत्ता ने आफत की बरसात कहा है। अखबार लिखता है, राजधानी में अगस्त के पहले सप्ताह में 2011 के बाद सबसे अधिक बारिश दर्ज, सड़कों पर भारी जलभराव। राजस्थान पत्रिका ने बदल रहा मानसून का पैटर्न शीर्षक से लिखा है, देश भर में अभी तक 11% कम बरसे बादल, 14 राज्यों में कम बारिश, 10 दिन में नहीं मिली राहत तो सूखे जैसे हालात। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियमन संशोधन विधेयक पर पंजाब केसरी के शब्द हैं, संसद में अब आर पार की तैयारी, एफसीआरए पर शाह संभालेंगे मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की व्हिप। मोदी और सुखबीर की मुलाकात से पंजाब में चुनावी हलचल तेज, जनसत्ता के पहले पन्ने पर है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भाजपा गठबंधन की अटकलें तेज। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इस बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ गूंजेगा वंदे मातरम, राजस्थान पत्रिका में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। यूपीआई लेन देन उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए निःशुल्क बना रहेगा, भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहली औपचारिक बातचीत की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi to present IIT Delhi's highest honours to meritorious students during its convocation ceremony today. UPI transactions to remain free for consumers and small merchants, clarifies Apex Digital Payments Body PCI. India rejects objections raised by a US lawmaker on proposed FCRA bill, says legislation is country's internal matter. Jharkhand government holds first formal talks with protesting students over alleged irregularities in recruitment examinations. US Senate passes Russia sanctions bill seeking 100% tariff over five countries. And heavy to very heavy rainfall likely over East Rajasthan and Odisha today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will address the 57th convocation ceremony of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, today. He will address over 3,000 graduating students, including 587 PhD scholars, who will be conferred their degrees during the ceremony. We have more from our correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi will present the institute's most prestigious honours, including the President's Gold Medal, Director's Gold Medal, Shankar Dayal Sharma Gold Medal and Perfect 10 Gold Medal to the meritorious students during the ceremony. Further, Mr. Modi will also inaugurate Param Pragya, an AI-powered high-performance supercomputing facility established at the Sonipat campus of IIT Delhi. The state-of-the-art facility is expected to significantly enhance the institute's capabilities in AI, data science, advanced computing and interdisciplinary research. In a social media post, the Prime Minister has said that IIT Delhi has always made a rich contribution in the fields of research and innovation. Mr. Modi said that he looks forward to being among the students and teachers of this pioneering institute. Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
2: Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu has thanked Prime Minister Modi after the two leaders reviewed progress in various aspects of partnership. Mr. Netanyahu wrote in a social media post responding to Mr. Modi's post regarding the conversation between the two leaders. During the phone call on Thursday evening, both leaders reviewed progress.

लता मंगेशकर और सखियों के स्वर में अभी सुना लम्हे फिल्म से आपने ये गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी, संगीत से सजाया था शिव हरि ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। फिल्म का नाम है क्रिएचर। शब्द टोनी कक्कड़ के हैं, संगीत टोनी कक्कड़ ने दिया है।

श्रेया घोषाल, उदय मजुमदार और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म गुरु में। शब्द गुलजार के थे, संगीत दिया था AR रहमान ने। और अब कार्यक्रम में समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। आइए सुनते हैं कुमार सानू और कविता कृष्ण मूर्ति को फिल्म 1942 अ लव स्टोरी में।

लगान फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक, उदित नारायण, सुखविंदर सिंह और साथियों को। शब्द रचना जावेद अख्तर की थी, संगीत से सजाया था ए आर रहमान ने। आइए सुनते हैं मोहरा फिल्म का ये गीत, जिसे स्वर दिया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत से सजाया है विजू शाह ने।

0: इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि यही होता है संपन्न। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है काव्यात्मक वार्ता ब्रज में सावन और तीज त्योहार। वार्ताकार हैं डॉक्टर सरोज गुप्ता।
1: श्रावण मास में उमंग और तरंग भारतीय कैलेंडर के मुताबिक जो श्रावण मास में आते हैं, इसकी उमंग और तरंग देखते ही बनती है विशेष रूप से वृंदावन धाम में, क्योंकि इसके आकर्षण का इन मंदिरों में हिंडोले, सज्जा, फूल बंगला, तीज त्योहार, झूला, पटली, कजरी, मल्हार राग, रक्षाबंधन पर सेवई, बूरा, घेवर, मालपुआ विशेष पकवान, और श्रावण मास में ही शिवार्चन, प्रथम सोमवार जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक, कांवरी, जमगट, बम बम बोलेश्वर। पर इन सबके साथ में एक श्रावण मास में विश्व कवि तुलसीदास जी का भी आर्यविवाह और त्रिविवाह हुआ, श्रावण शुक्ला तीज शनि और श्रावण शुक्ला सप्तमी, और उनका मर ग्रंथ रामचरितमानस जो हिंदुओं का पावन ग्रंथ है, इस दृष्टि से वो वंदनीय है। इसके बारे में भी मैं आभार नत हूँ। और राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त भी श्रावण मास की शोभा है, तो शहीदों को नमन और स्मरण भी हम करना अपना कर्तव्य समझते हैं। तो हम श्रावण मास में चलते हैं अपने वृंदावन। हो रहा आगमन भक्तों का वृंदावन, परिक्रमा, हिंडोले का आयोजन, फूल बंगला, पटली, झूला, सज गया बांके बिहारी, रूप निहारत अखिया नहारी, सेवा कुंज के ठाकुर श्याम सुंदर, दामोदर रूप सनातन, गौड़िया मठ, गोपीनाथ बाजार का बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, कृष्ण बलराम मंदिर, सज रही झांकियां आकर्षण।

शक, लग रहे हैं छप्पन भोग, बरखा हो रही मूसलाधार, गा रहे फिर भी राग मल्हार, राखी से वही छाई बाजार, ले लो भाई ले लो लग रही बुहार, जय हो गिरिराज जय हो त्रिपुरार, श्रावण है आज श्रावण है आज। और श्रावण में हिंडोले की बात न हो तो व्यर्थ है। तो हिंडोले सजे हैं और उस पर झूला झूल रहे नंद कुमार, कोयल कूके अम्बुआ डार, पपिया गावे राग मलार, पानी परे मूसलाधार, हिवड़े परे बिजुरिया मार, झूला झूले नंद कुमार, लेना नरचत बारम्बार, नीम ने बोरी झूला पटली, सज गए घर और द्वार, और बूरे सनी से वही घेवर जीम रहे हैं थार, बंसी बटपन घट पे जुड़ गई, देखो भीड़ अपार, ओफो देखो भीड़ अपार, चंदन पटली राधा बैठी, रेशम फुंदरा डोर सजी, नीली फरिया लाल गंगरिया झूलत प्रेम पगी, ये है सावन की लुनाई, सखियां गावे गीत मलार, ओहो गावे गीत मलार, श्याम सुंदर की कुछ मत पूछो, मंद मंद मुस्कात, इत उत्कूच इतवत सब देखत सखियां ओट दिखात, हो रही नैनो की मिलाई सारी, दुबिदा बिसार, ओहो झूला झूले नंद कुमार, लचक मचक जमुना जल चाल्यो, छायो जोबन ज्वार, मोर मगन भय थिरके फिरके, नाचे पंख पसार, मैं के सखियों की मिलाई, धीमी धीमी पड़त फुहार, ललचत सरोज बारंबार, झूला झूले नंद कुमार। और इसी में हमारी मतवाली तीज आती है और उसकी शोभा निराली है। आई तीज मतवाली, लय दे मेहदी रचवे वाली, नेहर जाऊं कल सवेरे, रचाए के होटल लाली, आयो सावन को महीना मुंके, मैं के अंगना जीना जीना, आवे सुतम ओए माई के की, दूबर है रे जीना, मत कर आज सवाली, लय दे मेहदी रचवे वाली, आई तीज की तो से मई घेवर बूरो लाए दे, कंटर घी को उतुलवाए दे, जय सखी संग झूला झूलू, महक आज जा घर की भूलू, और बेगई टिक्कस मोई दिवाए दे, गड्डी चढ़ू सवेरे वाली, आई तीज मत वाली, हरी हरी चुड़िया मोकू लाए दे, आज हार मोकू पहराए दे, पायल बिछुआ मोई दिवाए दे, चप्पल लाए दे चरमर वाली, आई तीज मत वाली, लाए दे मेहदी रचवे वारी, आज मोबाइल नाई करूंगी, औचक जाए थार जी मंगी, बट जोवती होगी मेरी अम्मा चश्मे वाली, अरे द्वार देखती होगी मेरे भैया की घर वाली, गड्डी चढ़ू सवेरे वाली, लाए दे मेहदी रचवे वाली, गहरी लगाऊं आज इमर मेहदी लाली, आई तीज मत वाली। हाँ ये सब तो है, तीज मत वाली है, लेकिन इसको देख करके उद्दीपन भी हो रहा है जिनके साजन खर नहीं है। तो श्रावणी फुआरे देख उसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है, देखिए आप भी। कजरी मलार और सावन की फुआर, बतराए रहे बोल छोड़ तकरार, करें आज काना श्री राधा से मनुहार, आए रहे और सावन प्रिय सजनी के द्वार, घूम घूम बोले पवन आए रहे सजना, चुम चुम झूमे मुख बोल रहे हो कंगना, काली घटा छाई रे तू बीजुरी तड़कना, घेरी घेरी आए मेगा आज मेरे अंगना, गुंग गुंग बोले भोरे आओ मिल गाओ, कुहू कुहू गुहे कोयल खुशियां मनाओ, चातक बोले पीऊ पीऊ मेगा घर आओ, पानी पीऊ चंच भरे प्यास बुझाओ, अम्मुआ की डार झूला पटली सुहाए, साल बीते आज साजन सावन घर आए, अंगना में अल्पना और चौक पूरी वाए, थारी ने सेमरी चामर गेवर पुआ खाए, कोठे भीतर ठाड़ी कजरी आज शर्माए, कौड़ा आंसू कड़े बोल मान में गिराए, कहे न संदेशा पिया तुमने पठाए, यौवन का उभार देख मलार मुस्कुराए, पकर कलाई हरी चूड़ियां पहरानी, खिल खिल होबे बता अकियां हरशानी, गले मिल कहे झूला सुन पटली रानी, सावन की फुआरे देख याद तेरी आनी, मान छोड़ कजरी ने पहनी धानी सारी, हरियर चूड़ियों से सजी फुलवारी, आसमाने अंक भरी धरती अप्यारी, सावन को राग सरोज हुलस रहो भारी। लेकिन सावन के अंधे को हरी हरा सूझता है, ये कहावत है ना, मन में जब हरियाली आ जाती है तो सावनी है, मन में जब हरियाली छाए, मन मस्ती में डूबा जाए, पनघट पर पनिहारे ने गूंजे, सावन जग में सबको सुहाए,
मौसम का गुरूर तो देखो।

रोए तो रोता ही जाए, पोंछले आंसू वो अपने तो जग में फिर सूखा पड़ जाए। मनमौजी सावन मन भावन, हरियर सबको रंग दिखाए, और कुदरत का रंगरीला महीना, सरोज विरहिणी भी मुस्कुराए। ये है सावन की बात। अब हम करते हैं विश्व कवि वंदनीय मानस के प्रणेता, उनका नमन, उनका स्मरण और उनको धन्यवाद ज्ञापन। राम

मानस के प्रणेता तुलसी तुम्हें प्रणाम। रचना तुम्हारी अद्भुत न्यारी, जान गया ये जहान। इसी श्रावण मास की देन है, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर, और श्रावण शुक्ला तीज जन तुलसी तजो शरीर। इसलिए तुलसी को प्रणाम। हमारा राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त भी इसी श्रावण मास में आता है, तो शहीदों के प्रति स्मरण और नमन भी हमारा कर्तव्य है। हम इस उल्लास को भी और उनके नमन को भी हम आपके ध्यान में लाना चाहेंगे।

0: श्रावण मास की महिमा, उसके लोक पर्व, राष्ट्रीय पर्व और वंदनीय मानस के प्रणेता, इनके प्रति सबके आभार नत हूँ। जय श्री राम।
1: अभी आप सुन रहे थे काव्यात्मक वार्ता ब्रज में सावन और तीज त्योहार। वार्ताकार थी डॉक्टर सरोज गुप्ता। और आइए अब आनंद लेते हैं इस लोकगीत का।

बीना शर्मा और सखियों के स्वर में अभी आपने सुना ये गीत। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 9:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कन्नौज और पीलीभीत जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कन्नौज जिले की हलचल, आलेख और स्वर है रवि द्विवेदी का।
1: कन्नौज जिले में गंगा और काली नदी के जल स्तर में लगातार बढ़त जारी है। प्रशासन ने बाढ़ की आशंका को लेकर तटवर्ती ग्रामीणों से सचेत रहने को कहा है। गंगा नदी का जल स्तर चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच गया है। प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। राजस्व कर्मी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर पैनी नजर बनाए हुए हैं। राजस्व आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई फ्लोटिंग मोटर बोट का उपयोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी एवं खोज बचाव कार्यों के लिए किया जाएगा। कन्नौज जिले में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में जनपद को 28 लाभार्थियों के चयन का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक इकाई की कुल लागत 2 लाख रुपए निर्धारित है, जिसमें 5 लाभार्थियों को 80,000 रुपए अनुदान मिलेगा। कन्नौज में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत बालक बालिकाओं को पौष्टिक संतुलित एवं स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। जनपद के 1576 विद्यालयों के बालक बालिकाओं को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। कन्नौज में समाज कल्याण विभाग की एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत जिले की 10 ग्राम पंचायतों में आधुनिक सामुदायिक केंद्र के निर्माण का काम प्रगति पर है। सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों को प्रमुखता दी जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को सामाजिक सांस्कृतिक और शादियों के लिए उचित स्थान उपलब्ध कराना है। राज्य मंत्री असीम अरुण ने बताया कि बारात घरों का निर्माण पूरा होने पर ग्रामीणों को काफी सहूलियत मिलेगी। आगे अन्य ग्राम पंचायतों में भी सामुदायिक केंद्रों का निर्माण होगा।
2: आज जरूरत है कि हर गांव में एक बारात घर या मोटी बात कहूँ तो एक सामुदायिक केंद्र होना चाहिए, जिसमें कि हर तरह के कार्यक्रम वहाँ पे हो जाएं। ये सभी वर्गों के लिए है, ग्राम पंचायत इसका संचालन करेगी। मेरा सुझाव है कि इसका एक छोटा सा शुल्क रखा जाए, जिससे कि उसका मेंटेनेंस भी होता रहे।
1: कन्नौज जिले में पशुओं का खुरपका मुंहपका जैसी अत्यंत संक्रामक बीमारी से सुरक्षित रखने के उद्देश्य FMD टीकाकरण अभियान का 8वां चरण चल रहा है। अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए ग्राम एवं वार्ड स्तर पर टीकाकरण कर्मियों की तैनाती की गई है। जनपद में कुल 28 टीमें गठित की गई हैं। अब तक करीब 20% पशुओं का टीकाकरण हो चुका है। भारत पशुधन ऐप पर पशुओं का पंजीकरण कराने की सलाह दी जा रही है। कन्नौज जिले में जल संरक्षण, भूजल संवर्धन तथा वर्षा जल संचयन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 16 जुलाई से 22 जुलाई तक आयोजित वर्षा जल संचयन सप्ताह के अंतर्गत ग्राम पंचायत, विकास खंड एवं जनपद मुख्यालय स्तर पर गोष्ठियों एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान आमजन को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। जल संरक्षण प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। जनपद में 3 नदियां होने के बावजूद भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। वर्ष 2021 में विकास खंड छिबरामऊ का

0: जल स्तर 15.19 मीटर था, जो वर्तमान में घटकर 21.06 मीटर तक पहुंच गया है। इसी प्रकार हसेरन, कन्नौज, जलालाबाद, तालग्राम एवं सौरिक विकास खंडों में भी भूजल स्तर में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। किसानों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाने, सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का उपयोग करने तथा कम सिंचाई वाली फसलों को उगाने की सलाह दी जा रही है। कन्नौज में वृक्षारोपण महाअभियान के तहत अमृत सरोवरों, विद्यालयों, ग्राम पंचायतों, सार्वजनिक स्थलों एवं अन्य चिन्हित क्षेत्रों में लगभग 39 लाख पौधों का रोपण किया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 20 जून से 4 जुलाई तक कन्नौज जिले में 1700 लक्ष्य के सापेक्ष 851 आवेदन बैंकों को प्रेषित किए गए, जिनमें 217 आवेदन स्वीकृत, 221 को ऋण वितरण, 326 आवेदन अस्वीकृत तथा 321 आवेदन बैंक स्तर पर लंबित हैं। विकास अभियान की रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिल रही है। अब तक बड़ी संख्या में युवा रोजगार हासिल कर चुके हैं। कन्नौज जिले में पीएम सूर्य घर योजना के तहत जुलाई तक 2352 सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके सापेक्ष 2329 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इसके बावजूद पाप परिवारों को योजना से जोड़कर लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। कन्नौज जिले में लखपति दीदी योजना के अंतर्गत अब तक 22,376 स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक की है। महिलाओं को स्वरोजगार एवं आजीविका गतिविधियों से जोड़कर उन्हें लखपति दीदी बनाने का काम प्रगति पर है।
1: कन्नौज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं पीलीभीत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सतीश मिश्र का।
2: पीलीभीत में सावन के महीने में शिव मंदिरों पर पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु सुबह से ही जुटते हैं और पूरे दिन बम बम भोले के स्वर सुनाई देते रहते हैं। शहर के गौरी शंकर मंदिर जंगल में स्थित इकोत्तरनाथ शिव मंदिर, मनकामेश्वर महादेव मंदिर, त्रेतानाथ शिव मंदिर, मोटे महादेव मंदिर, लीलाहार शिव मंदिर सहित विभिन्न शिव मंदिरों व शिवालयों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सोमवार के दिन श्रद्धा का सैलाब और अधिक बढ़ जाता है। जिले की देवहूति, देवहा, शारदा और गोमती नदी के विभिन्न घाटों से भरकर श्रद्धालु जनपद के शिव मंदिरों व छोटी काशी कहे जाने वाले लखीमपुर जिले के गोला गोकर्णनाथ मंदिर जाकर शिव जी का जलाभिषेक कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा कांवड़ियों की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। कांवड़ मार्गों व मंदिरों के आसपास पुलिस तैनात की गई है और साफ सफाई की समुचित व्यवस्था कराई गई है। श्रद्धालुओं के ठहरने व भोजन के लिए कई जगह भंडारे भी आयोजित किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक सुकृत माधव मिश्रा मंदिरों व घाटों पर खुद जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पीलीभीत के सांसद जितिन प्रसाद ने पीलीभीत जिले के पूर्णपुर रेलवे स्टेशन पर ऐशबाग कासगंज एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री प्रसाद ने कहा कि इस नई ट्रेन के चल जाने से पीलीभीत का कार्य, व्यापार और पर्यटन बढ़ेगा, साथ ही पीलीभीत व आस पड़ोस के जनपद वासियों को राजधानी लखनऊ की यात्रा भी सुगम हो जाएगी। प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के गृह जनपद पीलीभीत में गन्ने की फसल का उत्पादन बढ़ाने पर खासा जोर दिया जा रहा है। जिला गन्ना अधिकारी खुशीराम भार्गव ने कहा कि गन्ने की अधिक पैदावार लेने वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा।
3: समिति स्तर पर जो सबसे अच्छी खेती करने वाले किसान हैं, जिनकी पैदावार अधिक आ रही है, उनको सम्मानित किया जाएगा। इसमें पेड़ी गन्ना के सबसे अधिक पैदावार लेने वाले किसान हैं और पौधे गन्ने की सबसे अधिक पैदावार लेने वाले किसानों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। क्रॉप कटिंग के आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में किसानों को विभाजित किया जाएगा। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं किसान, उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा।
2: पीलीभीत जिले में इस बार अच्छी बरसात हो रही है, इससे धान व गन्ने की फसल को काफी लाभ हो रहा है। पहाड़ों पर हो रही बरसात और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण पीलीभीत में शारदा और देवहा का जलस्तर भी बढ़ रहा है। कई जगह नदियां कटान भी कर रही हैं। जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया है और पूरी स्थिति पर नजर रखने को कहा है। पीलीभीत जिले में वैश्विक बाघ दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। टाइगर रिजर्व प्रशासन द्वारा बाघ मित्रों को समारोह पूर्वक सम्मानित किया गया। वैश्विक बाघ दिवस के बारे में पीलीभीत टाइगर रिजर्व के प्रभागीय अधिकारी मनीष सिंह ने बताया।
4: पीलीभीत टाइगर रिजर्व आज की डेट में देश का एक अग्रणी टाइगर रिजर्व है, जहां न केवल बाघों की संख्या बढ़ी है बल्कि बाघों की संख्या बढ़ने के फलस्वरूप यहां के स्थानीय निवासियों को रोजगार भी मिला है और साथ ही साथ जो है यहां पे बाढ़ या बाकी जो चीजें होती हैं उसको भी हमें लगता है रोकने में कमी मिली है।
2: पीलीभीत जिले में वन एवं सामाजिक वानिकी विभाग द्वारा जंगल की सबसे महंगी सब्जी कटरुआ को जंगल से लाने और जिले भर में परिवहन व बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है। प्रभागीय निदेशक भरत कुमार डीके के निर्देशन में कटरुआ बिक्री रोकने के लिए निरंतर अभियान चलाया जा रहा है और कई लोगों को कटरुआ के साथ गिरफ्तार किया गया है। पीलीभीत जिले की पुलिस को माह जुलाई की रैंकिंग में आई GRS शिकायतों के निस्तारण में संपूर्ण प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस पर IGRS पर नियुक्त पुलिस कर्मियों को अपर पुलिस अधीक्षक IPS विक्रम दहिया द्वारा

0: प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने सभी से और अच्छा कार्य करने को कहा है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल, जिसके अंतर
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आबोहवा। कार्यक्रम में आज वार्ता का विषय है, धरती बचाने के लिए जंगल जरूरी। वाचन कर रहे हैं कोमल मोदी।

जाए। इस प्रकार हमारी धरती को बचाने के लिए जंगल जरूरी है। प्रोफेसर एस के दुबे ने लिखा है, तरुओं के सुंदर गीतों से मन शीतल निर्मल होता है, सानिध्य मिले हरियाली का तो जीवन सुखमय होता है, ईश्वर दर्शन से शांति मिले वह वन दर्शन से होता है। आओ इसका विस्तार करें, मानव जीवन की ज्योति है जंगल।

0: आबोहवा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ता, धरती बचाने के लिए जंगल जरूरी। वाचन कर रही थी कोमल मोदी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: अब भरो सक्सेस की उड़ान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ की डायरेक्ट फ्लाइट्स दे कॉर्पोरेट और बिजनेस को कनेक्टिविटी की राइट चॉइस।
5: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वे ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज दर्पण। प्रस्तुति दे रही है सुरभि शर्मा।

सुप्रभात, करते हैं एक नई शुरुआत नए उमंग और नई आस के साथ। श्रोताओं, आज है 8 अगस्त। आज ही के दिन आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक भीष्म साहनी का जन्म हुआ था। उनका जन्म रावलपिंडी में हुआ था, जो आजकल पाकिस्तान में है। उन्होंने लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। विभाजन के पूर्व अवतैनिक शिक्षक होने के साथ साथ ये व्यापार भी करते थे। विभाजन के बाद उन्होंने भारत आकर 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि हासिल करी और समाचार पत्रों में लिखने का काम किया। बाद में भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा से जा मिले। इसके पश्चात अम्बाला और अमृतसर में भी अध्यापक रहने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन दिल्ली महाविद्यालय में साहित्य के प्रोफेसर बने। 1957 से 1963 तक मॉस्को में विदेशी भाषा प्रकाशन गृह में अनुवादक के रूप में कार्य भी किया। यहाँ उन्होंने करीब 2 दर्जन रूसी किताबें जैसे टॉलस्टॉय, ऑस्ट्रोवस्की इत्यादि लेखों की किताबों का हिंदी में रूपांतर किया। 2 सालों में उन्होंने नई कहानियां नामक पत्रिका का संपादन किया। वे प्रगतिशील लेखक संघ और एफ्रो एशियाई लेखक संघ से भी जुड़े रहे। 1993 से 1997 तक वे साहित्य अकादमी के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष भी रहे। भीष्म साहनी को हिंदी साहित्य में प्रेमचंद्र की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। वे मानवीय मूल्यों के हिमायती रहे। उन्होंने विचारधारा को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। वामपंथी विचारधारा से वो जुड़े हुए थे, लेकिन वो साथ साथ मानवीय मूल्यों को कभी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। आपादापी और उठापटक के युग में भीष्म साहनी का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था। उन्हें न केवल उनके लेखन के लिए स्मरण किया जाता है, बल्कि सहृदयता के लिए भी उनको जाना जाता है। भीष्म साहनी हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता बलराज साहनी के छोटे भाई भी थे। 1975 में तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1900 में शिरोमणि लेखक अवार्ड, एफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन का लेस्ट अवार्ड, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, भारत सरकार के पद्म भूषण अलंकार से विभूषित किया गया। न जाने कितने उनको विभूषण दिए गए। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं झरोके, तमस, बसंती, मैया दास की माणी, कुंती, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, कहानी संग्रह मेरी प्रिय कहानियां, भाग्य रेखा, वांगचू, निशाचर, नाटक हानुष, माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे, आत्मकथा बलराज माया प्रदर, बालकथा गुलेल का खेल। उनके उपन्यास तमस पर 1983 में एक फिल्म का निर्माण भी किया गया था। उनकी जो

कहानियाँ, उनका जो साहित्य हमें आम आदमी से जोड़ता है, क्योंकि जब तक हम अपनी मन को आम आदमी के साथ नहीं जोड़ेंगे, उसकी पीड़ा को कैसे पहचानेंगे। उनको हमारा शत शत नमन।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन

0: श्रोताओं, जब भी हम किसी देश के विकास की बात करते हैं तो हमारे मन में सर्वप्रथम युवाओं का चेहरा आता है, क्योंकि किसी भी देश की ताकत युवा ही होते हैं। युवा चाहे तो दुनिया मोड़ सकते हैं, धरा को ऊपर उठा सकते हैं, आकाश को नीचे झुका सकते हैं, लेकिन अगर यही युवा गलत रास्ते पर चला जाए तो देश का विकास न केवल रुक जाता है, यानी देश पतन होना शुरू हो जाता है। युवाओं को नशा मुक्त करने के लिए कई तरह के अभियान चलाए जा चुके हैं और एक नया अभियान चलाया जा रहा है, नशा मुक्त भारत, जो हम आने वाले समय में विजन देख रहे हैं कि हमारा भारत विकसित भारत माना जाएगा। उस समय कोई भी परेशानी नहीं होगी, सबके पास अपना घर होगी, गाड़ी होगी, जल सुविधा होगी, लेकिन अगर वहाँ पर युवा जो हमारे दिग्भ्रमित हो गए तो उस तरक्की का हम क्या करेंगे, उन्नति हमारे किसी काम की नहीं है। इसीलिए इस बारे में हमने विस्तार से जानकारी हासिल करी। हमारे साथ हैं,
1: सभी को नमस्कार, मैं अमित कुमार, जिला युवा अधिकारी, मेरा युवा भारत, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज हमारे ज़िले में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये नशा एक त्रासदी है, जिसको दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा विभिन्न विभिन्न संस्थाओं द्वारा विभिन्न मंचों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है कि कैसे हम अपने देश को नशा मुक्त बना सके। तो उसी कड़ी में सबसे मुख्य जो बिंदु है या कड़ी ही है वो है युवा। तो युवा को नशे से दूर करने के लिए ये कार्यक्रम आज

0: हमारे ज़िले मथुरा में भी इसका आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं जो नशे की लत में लग जाते हैं, उनको उससे दूर करने के लिए उनको कुछ ऐसे हम चीज़ों से, ऐसे कुछ प्रतियोगिताओं से जोड़ते हैं कि जो उनका ध्यान उस नशे से हटा करके उन प्रतियोगिताओं में लेकर के हम जाते हैं। जैसे कि वो प्रतियोगिताएं हमारे यहाँ पे गायन है, डांस है, स्लैम पोइट्री है, नुक्कड़ नाटक है, शॉर्ट फिल्म या रील मेकिंग है, आजकल रील मेकिंग काफ़ी फेमस है, तो उसको भी हम एक नशे से जोड़ करके करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग नशा मुक्त के ऊपर क्या युवा अपना एक विचार दे सकता है, वो रील के माध्यम से वो पूरे भारतवर्ष के युवाओं को संदेश दे अपने रील के माध्यम से, और साथ में पेंटिंग है, डिबेट या स्पीच कंपटीशन हम कह सकते हैं, तो और नारा लेखन भी है कि नशा मुक्त भारत के लिए क्या नारा लेखन हम दे सकते हैं। तो ये सभी इन 8 विधाओं में आज एक प्रतियोगिता 7 अगस्त को मेरा युवा भारत मथुरा के द्वारा KRPG गर्ल्स कॉलेज में की जा रही है, जिसमें हमारे पूरे मथुरा से, विभिन्न विभिन्न कॉलेज से, इवन ड्रॉप आउट्स बच्चे भी आज यहाँ पे आकर के जुड़े हैं। एक काफ़ी पॉजिटिव माहौल लग रहा है, तो इससे हमको पूरी उम्मीदें हैं कि जरूर ही एक संदेश जाएगा पूरे भारतवर्ष में। हम इस मथुरा की पावन धरती से, भगवान श्री कृष्ण की पावन धरती से, हम पूरे सभी भारतवर्ष के युवाओं को संदेश देने का काम कर रहे हैं।
1: ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है पूरा, इसकी शुरुआत कब हुई और क्यों हुई?
0: इसकी शुरुआत, देखो ये तो एक लगातार चलने वाला कार्यक्रम है, जैसे कि भारत सरकार बहुत से कार्यक्रम चलाती रहती है, तो अब उसी कड़ी में युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अभी जुलाई के महीने से ही इसको लॉन्च किया गया है, और इसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे वो जिला लेवल के बाद स्टेट लेवल पर भी उनको, जो भी विनर होंगे उनको वहाँ पर भेजा जाएगा, और उसके बाद इसको नेशनल लेवल पर भी ये प्रतियोगिता शायद ऐसा भी हो कि माननीय प्रधानमंत्री जी को भी उसमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, बच्चों को उनके सामने वो अपनी ये प्रतियोगिता में भाग ले पाएँ। तो ये जुलाई महीने से चलाई जा रही है और आगे चलती रहेगी। 15 अगस्त तक की कोशिश है कि इसको नेशनल लेवल का किया जाए।
1: नशा एक ऐसा शब्द है जिसे बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है, किसी भी तरह के नशे से दूर रहे, चाहे वो किसी भी तरह का नशा हो। फिर ऐसा क्यों महसूस हुआ कि एक इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाएं, ऐसे आयोजन चलाए जाएं ताकि हमारा युवा नशे से दूर जाए और अपने को सही तरीके से आगे बढ़ा सके?
0: ये जो आज अगर हम देखें, बड़ा ही तेज़ी से बदलता हुआ युग है, तो उसमें बच्चा जो युवा होता है हमारा, एक साथ बहुत से मल्टीपल चीज़ों को सीख रहा होता है, जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही हो सकती है। तो निगेटिव, जैसे कि नशा ही एक मेन निगेटिव चीज़ है जो युवा को बर्बाद कर देता है एक समय आने के बाद। तो स्टार्टिंग में बच्चा सोचता है कि कूल दिखने के लिए वो कोशिश करता है कि हम नशा कर रहे हैं, एक दूसरे के मित्र बोलेंगे कि यार तुम नशा नहीं करते हो तो फिर इसका मतलब तुम कुछ भी नहीं हो। इसी चीज़ों से बाहर निकालने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
1: क्या ऐसा लगता है कि छोटे शहरों से जो बच्चे आते हैं वो जल्दी सी गिरफ्त में आते हैं, या बड़े शहरों में भी ये चीज़ बड़ी आम है, बड़े बड़े जल्दी ही बच्चे नेगेटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं?
0: ये अभी भी बड़े शहरों में ज़्यादा आम है, छोटे शहरों में फिर भी माता पिता कोशिश करते हैं, परंतु बड़े शहरों की जो लाइफ है बड़ी फास्ट हो गई है, तो बच्चे तेज़ी से विभिन्न विभिन्न संस्थाओं या विभिन्न कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करते हैं। इवन इवेंट्स वगैरह हर टाइप की होती है, कॉलेज की अलग होती है, और फिर बाहर भी वो लोगों से मिलते हैं, तो बहुत सी विसंगतियाँ भी उनके अंदर चली जाती है, तो उन्हीं को दूर करने के लिए भारत सरकार की ये पहल है।
1: कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, उनके संस्कार, उनके माता पिता का अधिक व्यस्त होना या आज का सोशल मीडिया?
0: इसके लिए किसी एक व्यक्ति या विशेष किसी को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, परंतु युवा सबसे पहले खुद जिम्मेदार है, और साथ में हमारा ये समाज उसको वो चीज़ें बताएं, उनको अवेयर करें, क्योंकि युवा तो बहुत छोटा बच्चा 15 की उम्र से 29 की उम्र तक जाता है, तो छोटे उम्र में उन बच्चों को नहीं पता होता है, तो भारत सरकार वही काम भी कर रही है कि कैसे उनको हम शुरू से ही उन नशे के बारे में बताएं, कि अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति विशेष उसके लिए जिम्मेदार है, वो सभी कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा हो करके वो समस्याएँ धीरे धीरे उनकी लाइफ में आती है।
1: नशा किसी भी रूप में हो सकता है, तंबाकू का सेवन भी एक तरह का नशा ही है। आप देखते हैं कि छोटे छोटे जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनके आसपास पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू की दुकानें होती हैं, क्या प्राथमिक विद्यालयों

0: में भी ये पहल की जा रही है, क्योंकि शुरुआत जो होती है बहुत छोटे स्तर से होती है।
1: ये इवन बहुत सी, जैसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले एक अपना जजमेंट दिया गया था जिसमें कि हाईवे से दूर कर दी गई थी शराब की दुकानें, ताकि जो यात्री जा रहे हैं, गाड़ी चलाते हैं और बीच में रुक करके वो शराब ले लेते हैं। तो ऐसे ही और भी चीज़ें, जो विद्यालय हैं, छोटे छोटे प्राइमरी वाले हैं, उनके आसपास ऐसी ऐसी दुकानों को हटाने की भी चीज़ें प्रशासन के द्वारा की जाती है। तो वो ये बहुत अच्छी पहल है भारत सरकार की।
0: इसका आपने फीडबैक कितना पाया और ये किस स्तर पर इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया जाता है? क्या सिर्फ एक दो डिग्री कॉलेज में या सभी कॉलेजेस में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, सब में ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है?
1: ये सभी जगह ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इवन ये मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस पर इसका प्रचार किया जा रहा है। हमारे मथुरा में 31,000 युवा उस पोर्टल पर ऑन बोर्ड कर चुके हैं। तो जैसे ही हम ये इवेंट बनाते हैं कि हमारे यहाँ पे एक इवेंट होने वाला है नशा मुक्ति, कोई भी इवेंट हो सकता है, और विभिन्न कॉलेज, जैसे कि जितने सभी कॉलेजों में एनएसएस की यूनिट है, तो अभी एनएसएस,
0: चाहे वो गैर सरकारी हो, प्राइवेट भी हो,
1: हाँ वो प्राइवेट में भी, मतलब प्राइवेट में जरूरी नहीं है, परंतु हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो स्वयंसेवक है, वो जाते हैं प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस में, वहाँ पे भी इसका प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे यहाँ 10 ब्लॉक हैं, 10 के 10 ब्लॉक में हमारे पास दो दो वॉलंटियर्स हैं। तो उनको निर्देश जारी किए जाते हैं कि आप सभी ब्लॉक के जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, सब तक ये बातें पहुँचाएं। और आज बहुत अच्छे बच्चे आज यहाँ पे शामिल हुए हैं, सुबह से ही भीड़ की आवाजाही बनी हुई है।
0: पोर्टल की आपने जानकारी दी कि पोर्टल है, बच्चे अपलोड कर रहे हैं, तो ये पोर्टल क्या है,
1: ये
0: क्या है जिसमें बच्चे कांटेक्ट कर सकें या फिर उसको अपने डाउनलोड कर सकें अपने मोबाइल में?
1: मेरा युवा भारत, जिस डिपार्टमेंट में हम अभी काम कर रहे हैं जिला युवा अधिकारी के पद पर, मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के तहत बनाया गया एक डिपार्टमेंट है, जो कि 31 अक्टूबर 2023 को इसका गठन किया गया था। धीरे धीरे इसको एक फिजिकल प्लस डिजिटल एस्पेक्ट दोनों में ही डेवलप किया जा रहा है। आज की डेट में 623 जिलों में पूरे भारतवर्ष में इसका फिजिकल ऑफिस है, और एक्सपेंड कर रहे हैं जो नए जिले बने हैं आगे चल करके। अभी माननीय जो हमारे मंत्री जी हैं, उनके द्वारा नए जिलों में भी खोलने का इसको आदेश दे दिया गया है। और साथ में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो जहाँ पे अगर फिजिकल भी हमारी प्रेजेंस नहीं है, वहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें सभी युवा अपना रजिस्ट्रेशन, आज की डेट में 2,25,00,000 से ऊपर युवा उस पर रजिस्टर कर चुके हैं पूरे भारतवर्ष के विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों से, और ऐसा ऐसा टैलेंट देखने को मिल रहा है। बहुत से प्रोग्राम ऐसे हो रहे हैं, जैसे विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज हमारा कार्यक्रम हुआ, उसमें हमारे बिहार के बच्चे, इवन मध्य प्रदेश के बच्चे, इवन दूरस्थ साउथ वाले पार्ट अगर हम ले लें, तमिलनाडु से बच्चे लद्दाख में पहुंचते हैं, लद्दाख में पहुंच करके वहाँ के बॉर्डर एरिया में जाते हैं, वहाँ की चीज़ें जानते हैं, समझते हैं कि कैसी यहाँ की लाइफ है। तो वो सब चीज़ युवाओं के द्वारा एक्सपीरियंस इस पोर्टल के थ्रू की जा रही है।
0: इस पोर्टल पे क्या वेबसाइट है, क्या है पोर्टल?
1: ये पोर्टल एक वेबसाइट भी है, इसका एप्लीकेशन भी है। इसमें बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट निशुल्क अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है, और अपनी एक आईडी, जैसे बच्चे अपनी सोशल मीडिया पर आईडी बनाते हैं, तो वहाँ भी एक आईडी बन जाएगी, और उस आईडी को ओपन करने के बाद जिस जिले से वो बच्चे कनेक्ट हुए हैं, उस जिले में कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कौन से आने वाले हैं इन फ्यूचर, उन सभी की जानकारी उसमें दी जाती है।
0: कहा जाता है सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते। अगर कोई बच्चा नशे से मुक्ति चाहता है, मुख्य धारा में वापस आना चाहता है, क्या उसकी काउंसलिंग के लिए, उसके रोजगार के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं?
1: जी मैडम, उसके लिए हमारे यहाँ पे एक मेंटरशिप का भी प्रोग्राम है। अभी ये अपकमिंग फेज में है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये मेरा युवा भारत 2023 में, अभी ये काफ़ी न्यूली बिल्ट डिपार्टमेंट है, अभी धीरे धीरे इसको डेवलप किया जा रहा है, तो उसमें मेंटर वाला भी फेज़ है। तो जो मेंटरशिप के कार्यक्रम होंगे, उसमें करियर काउंसलिंग, वही निगेटिव किसी चीज़ों में बच्चे अगर हैं तो उनको कैसे उनसे दूर किया जाए, वो सब चीज़ें उसमें आ रही है। इवन अभी एक डॉक्टर का सेशन भी हुआ है नशा को लेकर के, जो हमारी CEO मैडम है उनके द्वारा जानकारी दी गई थी। लखनऊ में हमारा चिंतन शिविर हुआ था, उसमें इवन जो स्पेशलिस्ट है विभिन्न विभिन्न डॉक्टर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, वो भी आकर के काउंसलिंग करेंगे बच्चों।
0: पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की जाती है? कई बार तो घर का पारिवारिक माहौल होता है, वो बच्चों को नेगेटिव चीज़ों के चलते खेलता है, कई बार ऐसे सुनने में आते समस्याएं जो आती है बच्चों के सामने।
1: जी मैडम, ये ऐसा भी आगे इसमें चल करके चीज़ें, जैसे आपके माध्यम से भी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो इनका भी हम आगे रिव्यू करेंगे। स्पेशली जो ये है हमारा, वो 15 to 29 के लिए है, जो एज ग्रुप है उनके लिए है

0: स्पेशली, तो उन्हीं को हम ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं। बट जैसे कि आपने इशू रेज किया कि पेरेंट्स की भी होनी चाहिए, तो हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। ये हमसे भी फीडबैक ली जाती है हमारे अपर अधिकारियों के द्वारा, तो हम बिल्कुल ये फीडबैक उनके सर के सामने रखेंगे। तो
1: ये कार्यक्रमों का जो आयोजन किया जा रहा है, विभिन्न प्रतियोगिताओं में बच्चों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, कितना फीडबैक आपने पाया कि कितना पॉजिटिव रिजल्ट मिला, कितना नेगेटिव निकल
0: रहा है इसका? मैम यही बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मैम निकल के आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि अंदर पेंटिंग का कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो बच्चे हमको एक्स्ट्रा शीट्स मंगवानी पड़ रही है कि नहीं नहीं हमें लगा था कि उतना नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम हो रहा है अभी कि 8 इवेंट्स एक साथ की जा रही है और काफ़ी बच्चों में उत्साह है। क्योंकि होता क्या था कि पहले ज़्यादातर कि स्पीच कंपटीशन हो गया तो स्पीच वाले बच्चों ने पार्टिसिपेट कर लिया, परंतु एक रील मेकिंग जैसे आज चल रहा है, अब उसको भी माननीय मंत्री जी के द्वारा कि नहीं रील का भी हम कंपटीशन लेकर के आएंगे, क्योंकि युवा आजकल रील में ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो क्यों ना हम उसकी एनर्जी को पॉजिटिव लेकर के जाएं, एक सही धारा में उसको विकास करने के लिए देश के उसमें यूज़ किया जाए उसका। तो ऐसे ऐसे कंपटीशन इसमें जोड़े गए हैं, जैसे कि नारा लगा करके बहुत सी चीज़ें की जाती है, तो स्लोगन को भी रखा गया है इसमें कंपटीशन के लिए, एक अलग कंपटीशन बना दिया गया है। तो ये एक वाकई यूथ को एक मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बहुत ही अच्छी पहल है, जिसके लिए हम भी माननीय मंत्री जी अपनी सीईओ मैडम को आभार व्यक्त करते हैं कि किस तरीके से जो बच्चे छूट जाते थे, जो बच्चे कि उनका माने पेंटिंग में नहीं है, स्पीच में नहीं है, परंतु वो रील्स बनाने में परफेक्ट है, तो उनको भी इंक्लूड कर लिया गया है। मतलब हर किसी को जोड़ने की एक कोशिश की जा रही है, तो वो एक बहुत अच्छा ये हम लोगों के लिए प्रयास।
1: आप युवा हैं, आप खेल अधिकारी हैं, आप इतनी मेहनत करके आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं, सभी युवाओं से क्या कहना चाहेंगे?
0: युवाओं से मेरी यही अपील है कि आप नशा मुक्त एक भारत का निर्माण करें, और युवाओं के बिना इस देश की नींव नहीं है। युवा ही किसी भी बदलाव की पहली कड़ी होती है, युवा ही चाहे तो हमारे देश को फर्श से लेकर अर्श तक ले जा सकते हैं। आज युवा जिस तरीके से जुड़ रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी जिस तरीके से विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग युवाओं के साथ संवाद करते हैं, तो युवाओं के लिए एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि 1,00,000 लीडर्स को भी, युवा लीडर्स को जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो उनका विज़न भी यही है कि किस तरीके से हम युवाओं को जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम समझ गए हैं। और जैसे कि हमारा सबसे युवा देश है, तो हमको जो डिविडेंड है उसको लेना है और एक युवाओं को साथ लेके चलना है, युवाओं के साथ ही चलना है हमको। वही हमारा मेन अपील है कि युवा एक पॉजिटिव राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाए, और सभी विसंगतियों विभिन्न प्रकार की निगेटिव जो भी आदतें हैं उनसे।
1: श्रोताओ, अभी आपने सुना अमित सैनी जी को, युवा जिला खेल अधिकारी को। अब हम बातचीत करते हैं किस प्रकार युवाओं को नशे से मुक्त रखा जाता है ताकि हमारा देश पूर्ण रूप से विकसित भारत बन चुके। हमारे साथ है प्रोफेसर पल्लवी सिंह, प्रिंसिपल KR गर्ल्स PG कॉलेज। और सबसे पहले तो जो ये संकल्प प्रधानमंत्री का है कि पूरे देश को नशा मुक्त करें, विशेष रूप से नशा की तरफ आकर्षित होने वाली हमारी युवा पीढ़ी है, जो 15 से 29 वर्ष के जितने लोग हैं, ऐसे उन्होंने एक नारा दिया है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। हमारा भारत विकसित कैसे हो, तो सोच समझ विकसित होती है, तभी एक राष्ट्र विकसित होता है। और राष्ट्र के विकास में एक स्वस्थ नागरिक का होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारी जो आज की नवीनतम पीढ़ी है, अगर ये नशा युक्त हो जाती है, तो एक स्वस्थ भारत का निर्माण हम नहीं कर पाएंगे। अतः मेरे विचार से ये योजना और ये एक तरह से नारा और उद्देश्य जो लेकर के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आज युवाओं के सम्मुख आए हैं, ये आज की महती आवश्यकता भी है, क्योंकि समय ऐसा आ गया है कि हर व्यक्ति नशा की तरफ आकर्षित होता जा रहा है। तो आज विशेष रूप से ये कार्यक्रम का आयोजन KR गर्ल्स PG कॉलेज के प्रांगण में किया गया है। विविध कार्यक्रम हैं, युवाओं की प्रतिभाओं को ध्यान में रखते हुए नुक्कड़ नाटक से लेकर के स्लोगन, स्लैम पोएट्री है, स्किट है, और इसके अलावा काव्य पाठ भी बच्चे कर रहे हैं, तो स्लोगन और पेंटिंग के माध्यम से भी अपनी प्रतिभाओं को उजागर करेंगे। नशा युवाओं को बहुत जल्दी आकर्षित करता है, इसके पीछे वजह क्या है? कूल होना, सोशल मीडिया, घर में मानसिक परेशानियां, या माता पिता की बेरुखी, जो आज की इस भागम भाग की ज़िंदगी में दोनों वर्किंग है?
2: मेरे ख्याल से तो ऐसा है कि जब एक आप उम्र में आते हैं, जैसे आप टीनेजर जो कहलाता है, 13, 14, 15 शुरू होती है, तो उस समय हर व्यक्ति की चाह होती है कि मैं जल्दी बड़ों की नकल करूं। अगर वो अपने सामने एक

0: परिवेश देख रहा है कि वो सिगरेट पीता हुआ, जो प्रोजेक्शन किया जाता है विज्ञापन में भी कि सिगरेट पिया हुआ व्यक्ति बहुत ही बलशाली है, वो किसी दो चार गुंडों को मार देता है, तो कहीं ना कहीं ये विज्ञापन और ये जो टशन जो बच्चे दिखाते हैं और पीयर प्रेशर भी, कुछ बच्चे हैं जो गलत रास्ते पे हैं, वो दूसरे के कहते हैं कि देखो तुम सिगरेट नहीं पीते हो, तुम दारू नहीं पीते हो, एक बार पी के तो देखो, तो इस तरह का प्रलोभन भी लोगों के द्वारा दिया जाता है। और साथ ही अपने को बड़ा दिखाने की चाह में कि मैं अब परिपक्व हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, मेरे में ज़्यादा शक्ति है, मैं ज़्यादा मेच्योर हूँ, इस मेच्योरिटी की तलाश में भी लोग नशा की तरफ जाते हैं। और ज़्यादातर बच्चे तो मुझे लगता है वो कॉपी करते हैं, उसके डू एंड डोंट्स को जाने बिना केवल एक टशन रहता है कि सिगरेट फूंक के देखूं कैसा लगता है। और बहुत ही एक थोड़ी देर के लिए हो सकता है, बहुत बार लोग कहते हैं नशा लेते ही थोड़ी देर के लिए आप अपने बहुत सारी बेचैनियों और परेशानियों से मुक्त होते हैं, तो ये भी एक तरह से जैसे बहुत बच्चा स्ट्रगल कर रहा है। आज का कॉम्पिटिटिव युग है, प्रतियोगिता नेक टू नेक है, और आप देख सकते इतने आरक्षण, इतने प्रतिबंध, तो कहीं बच्चे जो बहुत अच्छे मार्क्स वाले भी होते हैं अगर सफल नहीं होते हैं तो अपनी कुंठाओं को शांत करने के लिए इस नशे की तरफ जाते हैं। तो ये दो चार चीज़ें देखी हैं मैंने। और बहुत बार ऐसा देखा कि एक आखी जीवन की आजकल एक शुरुआत हो गई है, कोई व्यक्ति शादी, लड़कियां जो विवाहित हैं शादी नहीं करना चाहती हैं, उनकी लाइफ बहुत ही मेट्रो सिटीज़ में अगर आप देखें तो सिगरेट पी रहे हैं, खुलेआम पी रही हैं, वस्त्र भी बहुत अर्ध नंगे जैसे वस्त्र भी पहन रही हैं, सिगरेट बियर बार्स वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं। ऐसा नहीं कि सरकार इस चर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है कि नशा सुलभ नहीं है, ये भी सुलभ है, कोई भी व्यक्ति ले सकता है। ज़्यादातर ये रहता है कि 18 वर्ष से ऊपर वाले को दिया जाएगा, लेकिन दिया तो जाएगा ना, ऐसा कुछ नहीं कि हमारे यहाँ इस तरह की कानून भी है कि रोका जाए। तो स्वाभाविक है कि एकाकी जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति वो अपने अनुसार जीना चाहता है, वो श्रृंखलता उसके जीवन में आ जाती है। और नशे में थोड़ी देर के लिए अगर ध्यान से देखिए तो कहा जाता है कि ड्रग्स वगैरह भी जब लेते हैं तो हम एक काल्पनिक दुनिया में पहुंच जाते हैं, और इस तरह की चीज़ें फिल्मों के पर्दे पे भी दिखाई गई। तो कहीं ना यही सब मुझे लगता है कि आजकल जो आपाधापी वाली जिंदगी है, संतुष्टि नहीं है, बहुत ज़्यादा चाहत है, और पीयर प्रेशर के साथ फैमिली का भी प्रेशर है बच्चों पे कि कुछ करो, अरे तुम निठल्ले घर पे बैठे तुम कुछ करे, उनकी शौक की चीज़ें ना करा के उनको प्रतियोगिता की लाइनों में खड़ा करना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमको नशा की तरफ ले जाती हैं, ताकि थोड़े देर के लिए हम अपने जितनी भी पीड़ाएं हैं उससे शांत मन से अपने जीवन को व्यतीत कर सकें।
1: क्या इस तरह के जो आयोजन किए जा रहे हैं, प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, क्या इनसे हम युवा को भटकने से बचा सकते हैं?
0: देखिए, एक तो होता है कि हम कहीं ना कहीं व्यक्ति को सही चीज़ों को बताएं कि वो जो क्षणिक सुख है वो कहीं जाके आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, स्वास्थ्य ही नहीं व्यक्तिगत प्रभाव के साथ वो सामाजिक प्रभाव भी डालता है। अगर कोई घर में ऐसा व्यक्ति जो रोज पी के आता है तो अपने ऐसी स्थिति में अपनी पत्नी को पीटेगा, किसी की बात नहीं सुनेगा, तो अगर पत्नी को मार रहा है तो छोटे बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम प्रस्तुत कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं, मुझे विश्वास है कि कभी आप बचपन में कहीं गई होंगी और किसी व्यक्ति विशेष की एक बात वो आपको जीवन में अगर उसी समय पॉइंट कर लिया होगा, आपने उसका अनुसरण बाद में अपने जीवन में हमेशा किया होगा। तो ये जो उद्देश्य और जो भी हमारे नाटक होते हैं, जो प्रयोग होती हैं, ये बच्चों को ये बताने के लिए होती कि वास्तव में इसका पहलू क्या है, जो मतलब सार्थक पहलू क्या है, क्या है इसके, अगर हम ड्रग्स लेते हैं तो ड्रग्स हमारी तरह कैसे हमें प्रभावित कर सकती है, हमारे जीवन को व्यथित कर सकती है। तो इसलिए नशा मुक्त जो अभियान है, से यस टू लाइफ नो टू ड्रग्स, ये हमारा इसका स्लोगन है। तो यस टू लाइफ मतलब ये कि जीवन को हाँ कहिए और नशा मुक्त भारत के निर्माण में अपना सहयोग दीजिए।
1: क्या
0: तो
1: कहना चाहेंगे सभी युवाओं से?
0: मेरा युवाओं से विश्वास है, नशा देश प्रेम का हो, नशा पढ़ने का हो, नशा प्रेम का हो। भैया, हम गोकुल नगरी में हैं, मथुरा नगरी में हैं, जहाँ कृष्ण ने भी एक नशा था, यहाँ के युवाओं में उस समय नशा था, जितनी गोपियाँ थीं उनमें कृष्ण को पाने का नशा था। तो ये जो नशा तो सही चीज़ है, पर नशा पॉजिटिव लीजिए इस चीज़ को कि हम ऐसा नशा करें जिससे सामाजिक उन्नति हो, राष्ट्रीय उन्नति हो, और वो शुरू होती है व्यक्तिगत उन्नति से। जैसे हम दूसरे को कहते हैं कि तुम सिगरेट मत पियो, तो पहला आप एक कदम उठाएं, मैं कोई भी नशा नहीं करूँगा, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करूंगा, अच्छे समाज का निर्माण करूंगा, और मैं इसका पहल करूंगा। अगर कोई युवा एक बार तैयार हो जाए नो कहने के लिए, नो टू ड्रग्स यस टू लाइफ, तो स्वाभाविक है एक बहुत ही स्वर्णिम युग की तरफ हम प्रशस्त हो रहे हैं। 2047 में जैसा कि हमारे राष्ट्र प्रधानमंत्री की परिकल्पना

0: करना है कि एक विकसित सुराष्ट्र और कल्याण लोक सामाजिक कल्याणकारी राज्य के समान हमारी व्यवस्था होगी, तो ये व्यक्तिगत सोच से शुरू होती है। और मैं सोचती हूँ जो भी युवा हमारे साथ आज जुड़ रहा है, कार्यक्रम में जुड़े या आपके माध्यम से जुड़े, एक बार मन में ज़रूर सोचेगा कि मुझे नशा मुक्त भारत की तलाश है और मैं अपनी तरफ से पहल लेता हूँ कि आज से कोई भी नशा, अगर मैं गया भी हूँ तो आगे से नहीं।
1: दूर रहें।
2: आज का इतिहास कहता है 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया, जिसके बाद गांधी जी ने नेतृत्व में देशव्यापी आंदोलन शुरू हुआ। वहीं 1929 में जर्मनी का विशाल एयरशिप LZ-127 ग्राफ स्पेलियन दुनिया की पहली सफल हवाई परिक्रमा के लिए निकला। वहीं 1945 में सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा करी। वहीं 1977 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान की स्थापना बैंकॉक घोषणा के साथ हुई। आज के समाचारों में डिप्थीरिया कहा गया, डिप्थीरिया पर प्रहार, स्कूलों में विशेष टीकाकरण अभियान। डिप्थीरिया जैसे गंभीर संक्रमक बीमारी से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिले में स्कूल आधारित विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया है। 13 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के तहत सरकारी और निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को उनकी आय के अनुसार DPT TD के टीके लगवाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की टीमें विद्यालय में पहुंचकर टीकाकरण करवा रही है। क्या करें क्या ना करें, तो बातचीत करते हैं विषयों के बारे में जो होते हैं, आम बन जाते हैं खास। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, इसमें अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें, जहां भी आपको लगे पानी इकट्ठा हो रहा है वहीं पे सफाई करें। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, अपने आसपास साफ सफाई का माहौल रखें। सदा प्रसन्न रहें और खुश रहें। इसी के साथ स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज दर्पण,
1: प्रस्तुति दे रही थी सुरभि शर्मा।
0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है संगीत रूपक सावन आया धूम मचाता। आलेख गोपाल रंजन सिन्हा का है, प्रस्तुति है इंद्रा शर्मा की।

0: बीत चले धीरे धीरे आषाढ़ दिवस रजनी, लेकिन व्याकुल जनजीवन त्रिषित धरा आकुल पंछी दल भटक रहा। जाने कब श्यामल घन आवे, जाने कब बरसे जल धारा। चातक प्यासा सारंग प्यासा, धरती प्यासी अंबर प्यासा।
1: हाहाकार मचा भूपर, पशु पक्षी मानव मरमाहत, तरस रहे हैं बूंद बूंद को झुलस रहे रवि किरणों से। दूर दूर सूनापन इतना जैसे मरघट की निरवता। झुलस गए हैं फूल पात सब, झुलस गए तन मन यौवन।
0: उमस घुटन झुलसन उत्पीड़न, त्राहि त्राहि करता जन जीवन। सूख गई जल की धाराएं, ताल तलैये पोखर सूखे। सूर्य रश्मियां जैसे नभ से बरसाती अंगारे भू पर। थपन भरे दिन रात खुटन की, जाने किस पल चैन मिलेगा, मुक्ति मिलेगी इस तड़पन से, उमस खुटन से तपन जलन से।
1: ग्रीष्म ताप से बेबस जीवन, हुआ चेतना शून्य, धरा थी मूर्छा।

0: छित सी लुंठित निढाल, तभी न जाने कब कैसे दो बिंदु धरा के प्यासे अधरों पर टप टप गिरते कह गए, उठो धरणी आकुलता छोड़ो, मेघों के रथ पर हो सवार वर्षा रानी आने वाली, जड़ चेतन को प्लावित करने अमृत घट ढुलकाने वाली।
1: वो देखो दूर दूर के क्षितिज छोर बादल बन जा रहा, ले आया अपना एक तारा, ले आया शुभ संदेशा, प्यासी धरती ने पलक खोल देखा चहुदिश खग रहे बोल, रस खोल रहे उन्मुक्त गगन की ओर चले, पल्लव पल्लव बज उठे धरा ने ली अंगड़ाई, जनजीवन हर्षाया बादल बन जा रहा आया।

लो घिर आए नभ आंगन में, लो घिर आए नभ आंगन में, जल सिंचित क्षिति सौरभ सुरभित, घन गौरव शुचि श्याम धवल, अविरल भीषण गर्जन करते, करो आज स्वागत वर्षा का, भूल लना सब मिलकर आओ, शंख बजाओ मंगल गाओ मोद मनाओ, हे विरहिणी भावा कुल नैना, हे नव वसना तड़ित चकित अभिसारिका, आओ प्रिय परिचारिका, कजरारे घन छाए नभ में गाओ मेघ मलार।

0: रिम झिम घन बरसे, गगन घन घटा सिहर तरुलता, नाचे मोर मयूरी हर्षित, दिक दिक सचकित दामिनी चमकित, कुंज कुटीरे यमुना तीरे चंचल पवन करे मनमानी, वन में मरमर नभ में झरझर, घर आंगन पथ पानी पानी।
1: आधी रात गरजते बादल, कर जाते अंतर तक घायल, ऐसे में बांधे मन कैसे, खन के कंगना झन के पायल।

0: अंजन घन छाए नभ आंगन, हरियाली छाई धरणी पर, नव कदम सुरभित नव पल्लव, नव अंकुर उभरे अवनी पर, जंगल जंगल में हरियाली, झूम रही है डाली डाली, इंद्रधनुष उभरा अंबर पर, घिरी घटाएं काली काली,
1: नदियां कल कल झरने छल छल, घर बाहर हल चल ही हल चल, दादुर मोर पपीहा बोले, लगता प्यारा ये कोलाहल।

0: सब नीले एहसास जगाता, मस्त हवाओं में इठलाता, चंपई फूलों को सहलाता, मीठे स्वर में गीत सुनाता, यौवन का उल्लास जगाए, अंग अंग मा तकता छाए, सांस सांस चंदन महकाए, वैरागी मन को ललचाए।
1: प्यासे मन की प्यास बुझाता, नव यौवन सा जो इतराता, दिक दिगंत में धूम मचाता, रस बरसाता, हंसता गाता, सावन आया रे, सावन आया रे।

अभी आप सुन रहे थे संगीत रूपक सावन आया धूम मचाता। आलेख गोपाल रंजन सिन्हा का था, प्रस्तुति रही इंद्रा शर्मा की। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है एक ही कलाकार। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, शनिवार आ चुका है और कार्यक्रम लेकर एक बार फिर से मैं आपकी दोस्त दीपिका हूँ आपके साथ। दोस्तों, आप फिल्म इंडस्ट्री के पुराने ऐसे कितने गायकों के नाम जानते हैं जिनके गाने आप अक्सर सुनते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि कुछ चुने हुए हीरे ऐसे होते हैं जिनके गीत संगीत को हम सराहते हैं लेकिन उनके नामों को भूल जाते हैं। वो जिंदा रहते हैं हमारी यादों में अपने द्वारा गाए हुए गीतों से। कई बार हमें उनका नाम तक याद नहीं रहता, हम ये भूल चुके होते हैं कि इस गीत को आवाज किसने दी। अगर कुछ बीते हुए समय की बात करूं तो 8 से 10 कुछ ऐसे गायकों के नाम हमें याद रहते हैं जिनको हम अक्सर बताते हैं कि पुरानी फिल्मों में इनके गाए हुए गीत, वाह क्या गीत थे। लेकिन कुछ ऐसे दिग्गज कोहिनूर भी हैं जिनको हम सब भूल जाते हैं, लेकिन उनका काम फिल्म इंडस्ट्री में उनके दर्जे को इतना बड़ा बनाता है कि हमें आश्चर्य होता है कि हमने इस प्रतिभा को भुला दिया। दोस्तों, आज मैं जिनके विषय में बात करने वाली हूँ वो एक ऐसा नाम है जिसने फिल्म इंडस्ट्री में 60 वर्षों तक राज किया, 20 भाषाओं में गीत गाए और उनके द्वारा गाए हुए गीतों की संख्या है 50,000। जी हाँ दोस्तों, 50,000। इतने गीत गाने के बाद भी आज की युवा पीढ़ी ने, या कहूँ अब प्रौढ़ावस्था तक पहुँच चुकी पीढ़ी ने, उनके नाम को लगभग भुला दिया। उनका जो योगदान फिल्म इंडस्ट्री में है उसे हम लोग जान ही नहीं पाए। पहले मैं आपको सुनवाती हूँ उनके द्वारा गाया हुआ ये सुमधुर गीत, फिर बताऊंगी उनकी जीवन यात्रा के विषय में।

तो दोस्तों, इस आवाज़ को सुन के आपको क्या समझ में आया? मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से मित्रों के दिमाग में वही गिने चुने एक दो नाम आए हैं, लेकिन आपको बता दूं कि इस मखमली आवाज़ को जिसने अपने कंठ से स्वर दिया है, उनका नाम है सिसलता जानकी। जी हाँ, जिन्हें हम एस जानकी या जानकी अम्मा के नाम से जानते हैं। कुछ दिन पूर्व ही जानकी अम्मा ने इस दुनिया को अलविदा कहा। तब बहुत से संगीत प्रेमियों का उनके जीवन के ऊपर एक नजरिया गया और उन्होंने ये सर्च किया कि जानकी अम्मा आखिर कौन थी। तो बताते हैं उनके जीवन यात्रा के विषय में। 23 अप्रैल वर्ष 1938 को जन्म हुआ था एस जानकी जी का। जगह थी पलापटला मद्रास, उस समय ब्रिटिश राज्य हुआ करता था। जानकी जी के पिताजी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। बचपन से ही जानकी जी को संगीत का बेहद शौक था। 3 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने कंठ का जादू बिखेरना शुरू कर दिया था। उनके इस जादू को उनके अभिभावकों ने भी महसूस किया और उनको संगीत के प्रति जो उनकी रुचि थी उसमें आगे बढ़ाया। 9 वर्ष की अवस्था में एस

0: जानकी जी ने गाना शुरू किया और स्टेज पर अपनी पहली प्रस्तुति भी दी, जिसे बेहद सराहा गया। जब वे 19 वर्ष की हुई तो उनके चाचा जी ने उन्हें सलाह दी कि तुम फिल्म इंडस्ट्री में क्यों नहीं ट्राई करती। उन्होंने अपने चाचा जी की बात मानी और चेन्नई में एक तमिल फिल्म के लिए गीत रिकॉर्ड करने का निर्णय लिया। फिल्म थी विदियन विलायतु, वर्ष था 1957 और उनके गाए हुए सभी गीतों को बेहद पसंद किया गया और एक वर्ष के अंदर अंदर ही उन्होंने 6 विभिन्न भाषाओं में गीत रिकॉर्ड किए। अब उनके पास में काम की कोई कमी नहीं थी क्योंकि उनके लिए भाषा कोई बाउंड्री नहीं रखती थी। उन्होंने तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, हिंदी और भी कई सारी भाषाओं में बहुत सारे गीत गाए। दोस्तों, उनके विषय में एक बात कही जाती है, वो जब गीत गाती थीं तो वो एक छोटे बच्चे के लिए भी उपयुक्त होता था और एक 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला के लिए भी उपयुक्त होता था। ऐसा आवाज का जादू था एस जानकी जी का। उनकी कैसे हुई फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी इंडस्ट्री में उनका आना कैसे हुआ, ये आपको जरूर बताऊंगी। पहले सुन लेते हैं उनका गाया हुआ ये बेहद प्यारा गीत।
1: Story, but everybody will sing with me.
2: Okay.
1: Ready? Come on. One, two, three, four.

0: なかなかなかなかなかなかなかなか。
1: तो दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से एक ही कलाकार कार्यक्रम और कार्यक्रम में हमारी आज की कलाकार हैं एस जानकी जी। इनका करियर 60 वर्षों तक रहा, इन्होंने 60 वर्ष दिए फिल्म इंडस्ट्री को। और अगर पुरस्कारों की बात करें तो पुरस्कार तो बस गिनते ही जाइए, 4 फिल्म फेयर पुरस्कार और उसके अलावा लगभग 60 अलग अलग स्टेट के पुरस्कार इनको मिले। लेकिन ये लाइमलाइट में एक बार फिर से आई वर्ष 2013 में। हुआ यूं कि भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण के लिए नामित किया, लेकिन एस जानकी जी ने पद्म भूषण लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब मेरी जब आयु लगभग खत्म होने को है, ऐसी उम्र में पद्म भूषण मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, आपने मेरे टैलेंट को पहचानने में बहुत देर की। दक्षिण भारतीय कलाकारों के साथ अक्सर ऐसा होता है, मैं इस पुरस्कार को स्वीकार नहीं करूंगी। ये थी एस जानकी जिन्होंने अपनी शर्तों पे काम किया और इतने प्रतिष्ठित पुरस्कार को भी सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया कि दक्षिण भारतीय सिनेमा को उसकी जगह नहीं दी जाती है।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज हम बात कर रहे हैं एस जानकी जी के विषय में। तो दोस्तों, एस जानकी जी का फिल्मी करियर शुरू तो हुआ था चेन्नई फिल्म इंडस्ट्री से, लेकिन ये सफर जहां से शुरू हुआ था वहां रुका नहीं। ये सफर चलता गया और लगभग पूरे भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उनमें से अधिकांश के लिए उन्होंने गीत गाए। आपका फिल्म इंडस्ट्री में पदार्पण कैसे हुआ ये भी एक रोचक कथा है। एक बार बप्पी लहरी किसी काम से

से चेन्नई गए हुए थे। वहां पर उन्होंने एस जानकी जी के गाए हुए गीत को रिकॉर्ड करते हुए देखा और जब उन्होंने उसे सुना तो वो ये जान गए कि ये वो आवाज है जो किसी भाषा के बंधन में बंधने लायक बिल्कुल नहीं है, और उन्होंने एस जानकी जी को अपने साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया। जानते हैं उन्होंने पहली फिल्म में कौन सा गीत गाया? दोस्तों, फिल्म हिट इस गीत की वजह से हुई और ये गीत इतना फेमस हुआ कि इसे हम आज भी सुन के अपने पैरों को थिरकने से नहीं रोक पाते। फिल्म थी साहिब और गीत था यार बिना चैन कहां रे। इसमें जो दूसरी लाइन आती है, सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला प्यार कर ले, इस गीत में उनकी आवाज की जो वैरायटी है, वर्सेटैलिटी है, उसे सुनकर हिंदी भाषी भी दंग रह गए। हालांकि वो साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी लेकिन फिर भी उनकी भाषा इतनी शुद्ध थी कि उर्दू में बोले हुए लफ्ज और हिंदी में बोले हुए शब्द भी उनकी भाषा में अलग प्रतीत नहीं होते थे। बिल्कुल ऐसा ही लगता था कि इन गीतों को भी किसी हिंदी भाषी ने ही आवाज दी है।

0: दोस्तों, बीती 11 जुलाई को जानकी अम्मा ने इस दुनिया को अलविदा कहा। वर्ष 2016 में यूं तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास ले लिया था, लेकिन अपने प्रशंसकों की बहुत अनुनय विनय के पश्चात वर्ष 2018 में उन्होंने एक गीत गाया और उसके बाद विधिवत रूप से फिल्म इंडस्ट्री को नमस्कार किया। 88 वर्ष की आयु थी एस जानकी जी की और वो अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले तक पूर्ण रूपेण स्वस्थ थी। 11 जुलाई के दिन संध्या 7:31 पर अचानक ही उनको कार्डियक अरेस्ट आया। हॉस्पिटल लेके गए लेकिन डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। तो ये थी एक ऐसी कलाकार की अंतिम विदाई जिसने सभी को भाविक कर दिया। इतने लंबे करियर के बाद, इतने सारी फिल्मों में गीत गाने के पश्चात उन्होंने जो मुकाम हासिल किया, आज उन्हें दक्षिण भारत की नाइटिंगल कहा जाता है। उनके द्वारा गाए हुए गीत हमेशा हमारे साथ रहेंगे और इस तरह से एस जानकी जी हमेशा हमारी यादों में बसी रहेंगी।
1: साम्बा
2: नो,
1: रॉम्बा
2: नो,
1: साम्बा
2: नो,
1: टेकिला
2: नो,
1: टैंगो
2: नो,
1: चार्ल्सटन
2: नो,
1: पोल्का
2: नो,
1: नो?
2: नो?
1: तो फिर क्या हो?

आकाशवाणी की मथुरा वृंदावन केंद्र से अभी आप आनंद ले रहे थे एक ही कलाकार कार्यक्रम का। इसी के साथ कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चंद्रा खत्री के साथ। नमस्कार साथियों। साथियों आसमान में जब धूप ना हो तो मौसम बड़ा ही सुहावना लगता है, बड़ा ही हंसी लगता है, और इस मौसम का जो सफर होता है वो भी बड़ा हंसी होता है, सुहाना होता है, तो दिल सिर्फ यही गुनगुनाने लगता है।

साथियों, चलते चलते जब सफर सुहाना होता है और रास्ते में अगर कोई खूबसूरत सा चेहरा दिख जाता है तो फिर बस दिल यही गुनगुनाने लगता है।

अनुराधा पौडवाल अभिजीत के युगल सुरों को अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिल है कि मानता नहीं मैं। गीत के बोल समीर के थे, संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने। जब दिल आ ही गया है साथियों, तो फिर मिलने की तो तमन्ना होनी ही है, और जब मिलने की तमन्ना होती है तो चाहे गीत गाने आए ना आए, सुर अपने आप ऐसे बोलने लगते हैं।

समीर के शब्द रचना को संगीत किया नदीम श्रवण ने। फिल्म साजन से लिया ये गीत अभी आपने सुना एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज में। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से अभी आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। और फिल्म संगीत का सफर चला था सुहाने सफर से। जी हाँ साथियों, सुहाने सफर से चलते चलते दिल कहीं गुम हो गया और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े हम इस प्यारे से मौसम में। और जब दिल किसी से लग ही गया तो उसी का चेहरा बस बार बार निगाहों में रहता है और उसी को ढूंढता रहता है। हर शख्स में बस वही चेहरा नजर आता है और मन ये कहता है।

जावेद अख्तर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था मदन मोहन ने। वीर जारा का लिया ये गीत अभी आपने सुना उदित नारायण की आवाज में। साथियों, जब चेहरा उस शख्स को ढूंढता है और जब वो दिखाई ना दे कहीं भी तो क्या होता है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अगले गीत में।

सोनू निगम, हेमा सरदेसाई, शंकर महादेवन के सुरों में ये गीत आपने सुना परदेश फिल्म से। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन तैयार की थी नदीम श्रवण ने। साथियों, जब वो चेहरा मिल जाता है सफर में घूमते घूमते, तो दो दिल हम सफर बन जाते हैं और फिर कसमें खाते हैं। तुम्हारी कसम मेरे हमदम अब हिम्मत नहीं हारेंगे, तुम्हारी कसम मेरे हमदम अब हिम्मत नहीं हारेंगे, मर जाएंगे मगर तेरे सिवा किसी और को नहीं चाहेंगे। यानी कि कसमें वादे शुरू हो जाते हैं हमारे आगे के सफर के लिए, और फिर सड़क फिल्म का ये गीत गुनगुनाते हैं।

समीर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया नदीम श्रवण ने। अनुराधा पोडवाल, कुमार सानू के युगल सुरों में ये गीत हमने लिया था फिल्म सड़क से। तो साथियों, कस्में भी हो गई, वादे भी हो गए, अब फाइनली रिजल्ट क्या होना है। ये सफर सुहाना होते होते तो कुछ आशिकाना भी होता जा रहा है। जी हाँ साथियों, सफर अगर आशिकाना हो जाए तो फिर बात ही क्या है। चलते चलते रास्ते में जब एक सफ़र से हम सफ़र मिल जाए तो दुनिया ही कितनी खूबसूरत हो जाती है। और फाइनली फिर हम ये एक्सेप्ट कर ही लेते हैं कि हमको तो प्यार हो ही गया है।

और जब दिल खो जाता है तो सफर में क्या होता है, बस ये गीत होता है तुमसे मिलके।

दिल का है जो हाल, क्या कहें, क्योंकि दिल का हाल तो बड़ा ही बेकार हो जाता है और दिल बस झूमने लगता है, गाने लगता है। क्योंकि साथियों मौसम जो है बड़ा सुहाना है, ये सावन का जो महीना है ना, ये सावन के महीने में जब थोड़ी सी भी रिमझिम बारिश हो जाए और थोड़ी थोड़ी सी जो है ना हल्का हल्का हवाओं का ठंडा ठंडा सुरूर हो जाए, तो बस फिर क्या बात है।

जावेद अख्तर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था अन्नू मलिक ने। आफताब शावरी, सोनू निगम, हाशिम साबरी के सुरों को भी आपने सुना फिल्म मैं हूं ना में। साथियों, दिल का हाल तो आप सभी ने सुन लिया कि मिलने के बाद में दिल का हाल क्या हो गया। जी हाँ साथियों, जब दोनों तरफ से कस्में हो जाएं, वादे हो जाएं, दिल के हाल बेहाल हो जाएं, और जब आसमां के नीचे रात में हम जब आराम करें और चांद को देखें, चांद में ही अपने सनम की सूरत देखें, और चांद जब बादल में छुप जाए तो क्या होता है, आइए सुने कार्यक्रम के अगले गीत में।

इस गीत को संगीतबद्ध किया था इस्माइल दरबार ने। फिल्म थी हम दिल दे चुके सनम, इस गीत को अपनी आवाज दी उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों ने। जब अपने हम सफर का चेहरा चांद में ढूंढने लगे तो फिर जिंदगी भर साथ रहने का वादा भी तो लेते हैं, और जब वादा लेते हैं तो कुछ इस तरह से गुनगुनाते लगते हैं।

अलका याग्निक, उदित नारायण को अभी आपने सुना फिल्म कयामत से कयामत तक में। मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना को आनंद बख्शी ने किया था संगीतबद्ध।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

FM 102.2 MHz पर आरंभ करते हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम गीत बात और SMS। कार्यक्रम के साथ आज मैं हूँ आपकी आरजे मित्र चंद्रा खत्री। नमस्कार साथियों और स्वागत आप सभी का। स्क्रीन पर नाम आ चुके हैं ब्रजेंद्र, विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष। आप टीकमगढ़ से हमसे जुड़ चुके हैं। आप सभी श्रोता हमारे कार्यक्रम में हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। खंडवा से आ चुके हैं अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, मीनू लता, अनुराग, अभिनव, आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अगले श्रोता साथी जुड़ रहे हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय, रतन, माला, आरती, गौरी और ओम कुमार, हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल, छत्तीसगढ़ के श्रोता, छत्तीसगढ़ से ही दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा हमसे जुड़ रहे हैं। इसी के साथ अगले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, श्वेता, रजनीश, आनंद, अच्छे लाल, बुल्की वाली और फलना झा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं के शरद पाशपोर, श्रीमती शोभा पाशपोर, बीबी वैदेही, विहान बाबू, रश्मि अक्षय और अभिनव पाशपोर, आप सभी मनचला रेडियो लिसनर्स क्लब अकोला से हैं। अगली फरमाइश लिख भेजी है सप्तरंग श्रोता परिवार ने कुंभार गली श्रीरामपुर से, अशोक दले, सविता दलिया, निकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका, सानिका, पुनावले पुणे से हैं, अजय, करिश्मा, अबिका और विशाखा। मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासीन, शमसुल कमर राही गंज डुंडवारा से अपना पैगाम हम तक पहुंचा रहे हैं। हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू, पप्पी तमन्ना जमशेदपुर से जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, आलोकिक चंसोलिया, आप सभी उत्तर प्रदेश ग्राम पंजोनिया जिला जालौन से जुड़ रहे हैं। इसी के साथ अगले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार, डीकेश साहू, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान, पीएस वानकर एंड जिगांव विदर्भ से बसंतराव भोजने, मोहन करांगले, अक्रम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अक्रम, वसीम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता रानी, पूनम कुमारी, आप सभी हमसे जुड़ रहे हैं सीतामढ़ी से, मोहम्मद आसिफ खान, निकहत परवीन, आप सभी बिहार के श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। सोनाली, समर्पण, भक्ति, विशाल नासिक से जुड़े हैं, नांदूरा से हैं संतोष, उषा, ऋषिकेश, अनिकेत, सागर कटक, आप सभी श्रोता साथी हमसे जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत शुक्रिया। जुनेद, साबिहा, मिखाइल, जैनब, अहमद नगर के श्रोता, महाराष्ट्र से नासिर, नाजिया, नासिर, साजिद और शाहिद, राजेश खन्ना, चीना पासी, सुनीता राज एंड भानु राज, अमित खन्ना और अमित तेलंगाना से हमसे जुड़ रहे हैं, जाकिर, सुमैया, सुमान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर, चाचा, चाची और इनका पूरा मुलानी परिवार हमसे जुड़ा है पंडरपुर से, मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना, एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं छन्नू लाल, श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता, रज्जन साहू, हेमंत, नामदेव, धर्मदास, वादवानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत धन्यवाद। अगले श्रोता महाराष्ट्र से हैं किशोर वानखड़े, उषा,

मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला संदेश चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा का हम तक पहुंच चुका है, आपका बहुत शुक्रिया। मधुबनी एक्सटेंशन से लिख रहे हैं स्वर्णिमा चुलबुल रानी विजय जी, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी एंड उत्कर्ष हमसे जुड़ चुके हैं, आप सभी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपका। महबूबपुरा सनावद मध्य प्रदेश से हैं मोहम्मद जावेद खत्री, मोहम्मद इकबाल खत्री, जैद मुनीरा एंड बाबूबाई खत्री, आशा नारंग सोनाली एंड

शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी एंड उत्कर्ष हमसे जुड़ चुके हैं। आप सभी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपका। महबूबपुरा सनावद मध्य प्रदेश से हैं मोहम्मद जावेद खत्री, मोहम्मद इकबाल खत्री, जैद मुनीरा एंड बाबूबाई खत्री, आशा नारंग सोनाली एंड सुरेश सहारनपुर के श्रोता। महाराष्ट्र से श्रीराम, उषा, हर्षदा, वैष्णवी, पूनम एंड युवराज, नवीन सिंह, ज्योति सिंह, रानी, मेनका पासवान, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल, गोदावरी, प्रदीप, राजबहादुर, शंभु साह। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल, ईशान, पूजा आप जुड़ चुके हैं हमसे, राजेश, राजदीप, राशि, श्रीमती शीतल संभाजी नगर से। समस्तीपुर बिहार से मीरा, ज्योति, रोहतास बिहार से सोनम, अनामिका। इसी के साथ अगले श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं मोहम्मद अमजद, मुनीरू निसा, सलमा फिरदौस तेलंगाना से, प्रशांत, सुनीता, यशराज, ऋषि, कृष्णा आप सभी पंडरपुर सिटी से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक आप सभी पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से हैं, भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी, रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान आप सभी राजस्थान से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू, पिंकी, आरती। महाराष्ट्र से गजानन एंड मरुत राव हमसे जुड़ चुके हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं विनोद, वीणा, विविधा आप सभी का धन्यवाद। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी एंड पर्ल वैली सहारनपुर के श्रोता हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी आप सभी श्रीगंगानगर राजस्थान से हमसे जुड़ चुके हैं। अगला संदेश हम तक पहुंचाया है वलीउल्लाह अंसारी ने डुमराओं से। कार्यक्रम का अगला मैसेज नारायण दयानंद ओमकार साई गायकवाड़ का है, आप सभी नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं। नारायण, कमल, दिव्या, जय आप सभी बुलडाणा से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। राजस्थान से रामकुमार रिवाड़, चंद्रकला रिवाड़, कमला रानी बोधराज, भानु प्रकाश, गीतिका उत्तम नगर दिल्ली से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य, कोयल, नानक चंद पानीपत से जुड़े हैं और रोहतक से पीयूष, कोयल और डुग्गू। राजधानी रायपुर से नीलू मिल्क, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार आप सभी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाज और गुड़िया बानो, विक्रम, सचिन, सतीश, योगेश एंड युद्धव हनुमानगढ़ राजस्थान से जुड़ चुके हैं। इसी के साथ हमसे जुड़ रहे हैं अगले श्रोता कविता गौड़ एंड दिग्दर्शन मेरठ से, परेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप एंड सिमू, एकम, दमन, अभिजोत आप सभी पंजाब से जुड़ चुके हैं। काजल, मानवी, लक्ष्य, मोहिनी, बलवीर, सोनू, सुरेश, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। सभी श्रोताओं का तहे दिल से शुक्रिया। बाड़मेर राजस्थान से बबलीश, डैनी एंड मनीष, वैशाली, प्राजक्ता, वैष्णवी, गायत्री, यज्ञेश महाराष्ट्र से अपना संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब से ही भूषण, विशु, विशाल, शालिनी, तिवांशी एंड वाणी एंड बी खेड़ा, जीवन सिंह बुक, समस्त खेड़ा परिवार हमारे कार्यक्रम को सुन रहा है। हुकुम करमकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और

और तन्या, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अगली जो फरमाइश हम तक पहुंचाई है, पहुंचा रहे हैं, वो है तेलंगाना से कानगुला गोपाल, माहेश्वरी प्रवालिका, विष्णुवर्धन विघ्नेश। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस। इस कार्यक्रम में अगला मैसेज हम तक पहुंचाया है नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई, मतीन भाई, शेख चांद, फारूक फुल तवाले और सईद खलील मोसा, करीम शेख सलीम। आप सभी हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ रोहतक से पीयूष कोयल, डुग्घू भाविक, पानीपत से नरेश, लक्ष्य लाडो कोयल, पापा नानक चंद, आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। योगेश, ओम बगड़िया, बीबी गरिमा, रजत करे और मनीष चौधरी, आप सभी हमसे जुड़ रहे हैं पंजाब से। कस्तूरी, उमा देवी एंड पृथ्वी नारायणा, आप सभी तेलंगाना के तेलंगाना से हमसे जुड़े हैं। इसी के साथ राजस्थान से दातार, संगीता, तुषार, रिंकी, आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह, शाहजहां बेगम, आप सभी हमसे जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से कमलकांत, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज एंड ऋषभ, एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख, बेबी मुस्कान, गंज डुंडवारा से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। इसी के साथ अगले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं सदर बाजार कुरावली से अनिल, माया, राहुल, विपिन एंड सोनम, हरियाणा से जसबीर सिंह, अरोरा एंड जतेंद्र कार्यक्रम हमारा सुन रहे हैं, लाडली निशा और सभी घर के सदस्य, झारखंड से अब्बास और अमजद अली, सभी का बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अभिजीत, श्रीमती सरिता, प्रणीता, अर्जुन, उमरखेड़ महाराष्ट्र से हमसे जुड़ चुके हैं। अगले श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं गगनदीप, तृप्ता, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बीबी वामिका और वाणी, आप सभी पंजाब के श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। संबलपुर कांकेर से फागुराम, ज्योति और योजस्वी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। मोहम्मद सईद, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अवान, पूरा अब्बासी परिवार हमसे जुड़ चुका है बुलंद शहर से। गन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरान, फारिया ताहिरा, आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। कुमार गली कोलगांव से पांडु चंदन, ऊषा रानी, प्रतीक्षा, अभिषेक, सार्थक, प्रथमेश, संतोष और पांडुरंग कुमार हमसे जुड़ रहे हैं। संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत, भरत, कमल, आप सभी जालंधर के श्रोता हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश, पूनम, विशाल एंड दिशानी और निमित, आरती, आराध्या, विजय और विजय सुरलकर, सभी महाराष्ट्र के श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अल्फाक, निलोफर आफरीन, मोहम्मद अशफाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद इसहाक, आप सभी छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन से हमसे जुड़ रहे हैं। आप सभी श्रोता हमसे जुड़ते हैं, हमें अच्छा लगता है, ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहिए। अगले श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं नेहरू चौक पैठर से डॉक्टर सुरेश, अनीता, आरती, प्रसाद, सोनल, बेबी सिया, जालना शहर से सोमनाथ जादव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता, आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये सदाबहार गीत।

राजेश सेन सुरेखा शुभम अक्षय खंडवा से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। इसी के साथ श्री कृष्ण संदीप अमूल्य आप सभी महाराष्ट्र के श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। मोहित लक्की तानिया और राजेंद्र डब्बाली से सुन रहे हैं। इसी के साथ जुड़ चुके हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत पश्चिम बंगाल से। इसी के साथ संजय सौभाग्यवती उषा पाटिल प्रथमेश निवृत्ति संजय आप सभी मलकापुर से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अगले श्रोता नीरज नीलेश अंजलि रोशनी सुनील कमल दीपिका गव्या सुच्चा सिंह विनोदपुरी जय एंड जयपाल आप सभी पंजाब के श्रोता हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। FM 102.2 MHz पर लीजिए प्रस्तुति कार्यक्रम ब्रज लोक गीतों का। आज हम सुनेंगे राम गोपाल शास्त्री के गाये लोक गीत।

0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या?
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट. बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
1: FM 102.2 MHz पर अभी आप आनंद ले रहे हैं राम गोपाल शास्त्री के गाए ब्रज लोकगीतों का.

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या?
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से अभी आप आनंद ले रहे हैं राम गोपाल शास्त्री के गाये ब्रज लोकगीतों का।

अभी आप सुन रहे थे राम गोपाल शास्त्री की गाये ब्रज लोक गीत। इसी के साथ कार्यक्रम को अब हम यही विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर का 1 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुन सकेंगे समाचार।

0: में जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मॉनसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने भारत में ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा प्रतिनिधियों के संघ AAERI के साथ साझेदारी में एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म AAERI सत्यापन का शुभारंभ किया। मंत्रालय ने बताया कि डिजीलॉकर से जुड़े इस प्लेटफॉर्म के जरिए ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में आवेदन करने वाले भारतीय विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक पहचान और वित्तीय दस्तावेजों का सुरक्षित और डिजिटल तरीके से सत्यापन कर सकेंगे। झारखंड सरकार आज जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से बातचीत की। ये बैठक रांची के गेस्ट हाउस में हुई। परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ पिछले दो सप्ताह से रांची में जारी विरोध प्रदर्शन के बाद ये बातचीत हुई है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच कल शाम पहली औपचारिक बैठक हुई थी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में दो आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए IED, विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त हैं। एजेंसी के मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के खिलाफ विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलुवांच मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चारिहा दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई है। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को अपना पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम।

किसान वाणी यह कार्यक्रम संध्या 6:50 से लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम संध्या 6:15 पर आप सुन सकेंगे। इस कार्यक्रम में श्रीमद् भागवत कथा क्रम में आज का प्रसंग लेकर आएंगे पूतना वध कथाकार धर्मवीर अज्ञानी।

दोपहर 1:15 पर आप सुन सकेंगे हिंदी भाषा में सामुदायिक गाने शिक्षा पाठ। ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा घर अंगना दोपहर 1:15 से। इस कार्यक्रम में सुनी गई एक वार्ता, विषय रहेगा सावन के पर्व और त्योहार। जानकारी देंगी निधि भाटिया। हमारी सांध्यकालीन सभा का आरंभ करेंगे संध्या 5:30 पर कार्यक्रम युववाणी से। इस कार्यक्रम में आज की बात क्रम में आज के विषय रहेंगे भीष्म साहनी जयंती, भारत छोड़ो आंदोलन। इसी के साथ सुनिएगा एक रूपक, शीर्षक रहेगा हम भारत की बेटी हैं। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा दोपहर 2:30 पर।

संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी संध्या 7:31 से आप सुनेंगे। संध्या वंदन ये कार्यक्रम संध्या 6:30 पर आप सुन सकेंगे। इस सप्ताह संसद में ये कार्यक्रम रात्रि 8 से आप सुनेंगे, जिसका अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा। इस सप्ताह विधानमंडल में यह कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से रात्रि 8:20 पर अनुप्रसारित होगा। रात्रि 8:30 से आप सुनिएगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। 9:15 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम में सुहाने तरानों का।

0: समवेत सुरों में अभी आपने सुना देशगान।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ। भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ। भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुति बहनों के लिए कार्यक्रम घर अंगना। कार्यक्रम की प्रस्तुति विजय लक्ष्मी दे रही है और कार्यक्रम के संयोजक है ओपी सिंह।

घर अंगना कार्यक्रम को सुनवे बारी हमारी सबई बहनान को विजयलक्ष्मी बहन की राम राम। बहनाओ कैसी हो? बढ़िया। अरे बहनाओ बढ़िया ही होनो है। क्यों? क्योंकि ये तो ऋतु आनंदित है बिकी है। अरे सावन को महीना कि मैं कि सिंगार को महीना सजबे सवरवे की ऋतु तो स्वाभाविक है कि हम बहनन को तो पसंद आएगी आएगी। और जा ऋतु में जो हमारी नव विवाहिता बहन है वो उत्सुक हैं कि वो अपने मायके जाएंगी, या बहुत सी बहन चली गई हैं। पर बहनाओं देखो ऋतु अनुसार जब वर्षा रानी आवे है ना तो चारों तरफ हरो भरो कर दे में ऐसा लगे कि हमारी प्रकृति माँ हरी चुंदर ओढ़ के हमारी बहनन को स्वागत कर रही है कि आओ बहनों सब सजें सवरें नाचें गाएं। देखो नदियों ने देखो संगीत दे रही हैं, कल कल शोर मचाए रही हैं, झरना उथल पुथल कर रहे हैं। इतनी साफ सुथरी नदी जा समय नहाए धोए के ऐसी भाव में चल रही हैं, बस बच के रहना है क्योंकि जी अपने आनंद में हमें अपने आनंद में चलना है। और बहनों देखो सजबे सवरवे की बात करें तो हमारी बहन कबो पीछे ना हटे, ऋतु अनुसार जो त्योहारा में बिन की तैयारी वो जोर शोर से करें। अरे बहन तो अपनी चूड़ी बिंदन को लेके उलायत्री में ही है, संग में अपने भगवान की बात करें अपने ब्रज की बात करें तो हमारी ब्रज में जा समय आनंद चारों तरफ अपनी जगह बनाए के बैठ गए हुए। क्यों? क्योंकि हमारे ठाकुर जी इतने सुंदर सिंगारन में अपने भक्तन को दर्शन दे रहे हैं और भक्त बिन दर्शनन को करके अपने नैनन को धन्य बनाए रहे हैं। बहनों इतनी सुंदर झांकी कहूँ ठाकुर जी मदन मोहन जी के रूप में दर्शन दे रहे हैं तो कहूँ बांके बिहारी बन के दर्शन दे रहे हैं तो कहूँ लड्डू गोपाल बन के दर्शन दे रहे हैं तो कहूँ राधा बिहारी बन के दर्शन दे रहे हैं तो कहूँ रमण बिहारी बन के दर्शन दे रहे हैं। इतने सुंदर सुंदर रूपन में अनेकन नामन में ठाकुर जी इतनी सुंदर पोशाक धारण करके सुंदर पुष्पन की माला धारण करके हरे भरे लतान से वृक्ष जो हैं बिन पे ठाकुर जी के झूला सजे हुए हैं, संग में भगवान के हिड़ोला डल रहे हैं। इतनी चहल पहल जा समय ब्रज में है कि ब्रज में आनंद को बास है। क्यों? क्योंकि आनंद निधि को धाम है मथुरा। तो बहनाओं प्रभु को नए नए रूपन में देखो हर भक्त को आनंदकारी हो गए तो सजबे सवरबे की ऋतु में खूब सजें श्रृंगार करें क्योंकि भैया हरियाली तीज आ रही है, बहनन को त्यौहार है और बहन चूड़ी बिंदी कजरा महावर मेहंदी सबको लगाए के गौरी मैया को मना में तो चूड़िन की तैयारी तो कर लियो, गलिन में खूब चूड़ी वाले डोल रहे हैं और तो और बहनन ने गाय गाय के शुरू कर दियो है तो आनंद लियो जब बहुत सुंदर से लोकगीत को।

गले ने गले ने मन रा फिरे। कल्पना एस बर्मन बहन के स्वर में अभी हमारी बहना आनंद ले रही हती जा बहुत सुंदर से लोकगीत को। बहनाओं, हमारे ब्रज की माटी की खुशबू ही अलग है, जा में ऐसी सौंधी सौंधी मिठास आवे, ऐसी खुशबू आवे कि मन प्रसन्न है जावे। और जब मेह पड़े ना तो फुवारन से वो माटी की खुशबू मन में घर कर जावे। और फिर ऋतु आवे सज बिसवरवे की, यानी कि सावन की। और सावन त्योहारन को राजा कह हो जावे, जा में बहुत सारे त्यौहार बरसात की झड़िन के संग मनाए जावे। घेवर फैनी इतनी मिठाइयन की मिठास के बीच में इन त्योहारन की, इन पर्वन की छटा ही निराली है। और हमारी बहन आज अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को सजाए के बैठी हुई है।

0: अगर जावाद को कहें कि जे त्योहार जे पर्व सजे धजे आज दिख रहे हैं तो हमारी बहनान की वजह से ही है, कोई अतिशयोक्ति ना होगी। और कैसे मनावें इन त्योहारन को, कहाँ कहाँ करें और अच्छो कैसे करें, काई को मनाए रहे हैं, तो हम निधि भाटिया बहन से जाने सावन के पर्व और त्योहार विषय पे।
1: भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रत्येक माह का जनमानस में एक विशेष स्थान है। ऋतुओं की रानी वर्षा के आगमन के साथ ही प्रकृति मंडल में हरियाली प्रस्फुटित हो जाती है और साथ ही ब्रजंगनाओं के मधुर कंठ से सावन की मल्हारें फूट पड़ती हैं। सावन के इस रंगीले रसीले महीने में वन उपवन में पक्षियों के कलरव की अनुगूंज तो बागों में झूला झूलती स्त्रियों का सुमधुर संगीत। कृषि प्रधान देश होने के कारण किसान भी आसमान की उमड़ते घुमड़ते बादल देखकर समृद्धि के स्वप्न सजोने लगता है। भक्ति, पूजा पाठ, मस्ती और उल्लास व हरियाली का पर्व है ये महीना। श्रावण मास में व्रत रखना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह पाप को मिटाने वाला और मनोकामना पूर्ति का माह है। धर्म और आस्था का अटूट गठजोड़ हमें इस माह में दिखाई देता है। इस माह की प्रत्येक तिथि किसी न किसी धार्मिक महत्व के साथ जुड़ी हुई है। हरियाली अमावस और श्रावण पूर्णिमा के साथ ही अशून्य शयन व्रत, कजली तीज, स्वर्ण गौरी व्रत, संकष्टि चतुर्थी, शीतला सप्तमी, कृष्णेकादशी, दूर्वा, गणपति व्रत, नाग पंचमी, शुक्ला एकादशी, दधिव्रत, मंगला गौरी आदि प्रमुख पर्व व्रत इस माह में विधान है। कहीं रिमझिन मेघा तो कहीं मूसलाधार वर्षा का माह है सावन। घेवर की भीनी भीनी गंध तो मेहंदी की लाली का माह है सावन। श्रावण के प्रत्येक सोमवार को शिवजी के व्रत किए जाते हैं। इस माह में शिवजी की पूजा आराधना और व्रतों का विशेष महत्व है। ये व्रत शुभदायी और फलदायी होते हैं। इस व्रत को करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार सावन के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत पूजन किया जाता है। इसमें विवाहित स्त्रियों द्वारा गौरी जी की पूजा की जाती है। श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी का व्रत किया जाता है। इस व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस दिन श्री भगवान कृष्ण का पूजन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह काशी नैमिषारण्य तथा पुष्कर में स्नान करने से भी अधिक है और यह व्रत करने वाले को भगवान के पार्षद परम धाम ले जाते हैं तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज या हरियाली तीज कहते हैं। सावन के सभी त्योहारों में हरियाली तीज महिलाओं का बहुत ही मनभावन त्यौहार है जिसे बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह मुख्यतः विवाहित स्त्रियों का त्यौहार है। इस समय प्रकृति चारों तरफ हरियाली की चादर सी बिछा देती है। जगह जगह झूले पड़ते हैं। विवाह के उपरांत सावन आने पर प्रत्येक वधु चाहती है कि उसका भाई आकर उसे मायके ले जाए जहाँ वह अपनी सखी सहेलियों के साथ हिल मिलकर झूला झूल सके। हरियाली तीज से एक दिन पूर्व सिंजारा मनाया जाता है। इस दिन ससुराल से सिंजारा भेजा जाता है जिसमें नव विवाहिता के लिए ससुराल से वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी और मिठाई भेजी जाती है। महिलाएं एक दिन पहले हाथ तथा पैरों में मेहंदी महावर रचाती हैं। हरियाली तीज के दिन हरी चूड़ियाँ और हरा परिधान पहनती हैं। मिट्टी की गौरा महादेव की प्रतिमाएं बनाकर उनका श्रृंगार करती हैं। पुआ पापड़ी का भोग लगाती हैं और सायंकाल उन्हें किसी नदी या तालाब में सिरा दिया जाता है। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। हरियाली तीज सावन के रस भीगे गीतों का त्यौहार है। श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है नाग पंचमी का त्यौहार। इस दिन घर के दरवाजे के दोनों ओर गोबर से नाग की आकृति बनाई जाती है और व्रत

0: करके शाम को उनकी खीर, कमल के फूल, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा अर्चना की जाती है तथा नागपंचमी की कथा कहकर व्रत खोला जाता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी या पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। विश्वास किया जाता है कि इस दिन व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। होली दिवाली की तरह रक्षाबंधन हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को भाई बहन के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन पारंपरिक रूप में मनाया जाता है। बहनें अपने भाइयों को तिलक कर राखी बांधती हैं और उनकी दीर्घायु की कामना करती हैं। भाई भी बहन की रक्षा का संकल्प दोहराते हैं। रक्षाबंधन स्नेह का अमूल्य बंधन है जिसका बदला धन तो क्या सर्वस्व देकर भी नहीं चुकाया जा सकता। रक्षाबंधन के संबंध में एक पौराणिक कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लगने पर खून बहता देख द्रौपदी ने तुरंत अपनी धोती का किनारा फाड़ कर हाथ में बांध दिया था। इसी कारण श्री कृष्ण ने दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीर हरण करते समय चुकाकर द्रौपदी की लाज रखी थी। अब तो प्रकृति संरक्षण हेतु वृक्षों को राखी बांधने की परंपरा प्रारंभ हो गई है। रक्षाबंधन का पर्व न केवल भाई बहन के प्यार का पर्व है अपितु आपस में भाईचारा तथा सद्भाव का भी प्रतीक है। श्रावण मास की पूर्णिमा को श्रावणी कहा जाता है। प्राचीन काल में आज ही के दिन साधु संत गांवों व नगर के समीप आकर अध्ययन मनन तथा जनता में धर्म का प्रचार करते थे। इस दिन यज्ञोपवीत के पूजन का भी विधान है। इसी दिन उपनयन संस्कार करके विद्यार्थियों को वेदों का अध्ययन एवं ज्ञानार्जन करने के लिए गुरुकुलों में भेजा जाता था। इन त्योहारों के अतिरिक्त श्रावण शुक्ल नवमी के दिन पुत्रवती महिलाएं व्रत करती हैं तथा नेवलों की पूजा की जाती है। सावन की उमड़ती घटाओं, रिमझिम फुहारों व हरे भागों के बीच जहां झूला झूलती किशोरियां व युवतियों के मन हर्षोल्लास से झूम उठते हैं, वहीं भक्ति से परिपूर्ण श्रद्धालु भी अपने आराध्य श्री राधा कृष्ण को झूला झुलाने में अलौकिक आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। देवालयों में बहुरंगी घटाओं तथा सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को कलात्मक ढंग से सजोकर राधा कृष्ण को सोने चांदी के रत्न जड़ित हिंडोलों में झुलाया जाता है। इन अद्भुत घटाओं और अपने आराध्य को झूला झूलते देखने के लिए देश विदेशों से प्रतिवर्ष लाखों यात्री मथुरा आते हैं। भारतीय संस्कृति में हर एक पर्व के आध्यात्मिक पक्ष के साथ ही सामाजिक पक्ष भी है। इनका आधार सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव ही है। पुराने जमाने में जनता के लिए सुदृढ़ स्वास्थ्यप्रद परंपराएं हमें सौगात के रूप में दी गई थी। हमारी संस्कृति में पेड़ पौधों में भी जीवन और संवेदना का वास माना गया है। यही वैज्ञानिक शोधों में सिद्ध हुआ है। यही भाव हमारी सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है। इन प्रत्येक त्योहारों का उद्देश्य भी कहीं ना कहीं हमें प्रकृति से जोड़ना था, क्योंकि ये वृक्ष ही हमारे जीवन का आधार हैं व जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाने में सहायक हैं। पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित रहन सहन के बदलाव, घर के आसपास वृक्ष और लता पताएं, अमराइयां और कदम खंडी के स्थान पर बहुमंजिला अट्टालिकाओं ने वृक्षों पर पड़े झूलों तथा सावन के प्राकृतिक हर्ष और उल्लास को परंपराओं से दूर किया है। यह चिंता और चिंतन का विषय है।
1: अब आई हमारी बहन निधि भाटिया बहन से सुन रही हती सावन के पर्व और त्योहार विषय पे बातचीत। देखो बहनाओं, जब हम काऊ की बातचीत को ध्यान से सुने हैं ना, तो अगर वह बात में नेकू वजन हो गए तो हमारे रोंगटन को खड़ो कर देवे। कितनी बड़ी बात कि हमारी जो संस्कृति पुराने जमाने में ही, मतलब हमें बताए के चले गए कि इन पेड़न में जीवन है, जे संवेदनशील हैं और आजू जा बातें मान रहे हैं, पर आज हमारे त्योहारन का रूप बदलता जा रहे हो। पर हमें मिलके अपने इन त्योहारन को फिर से सजानो है, फिर से सवारनो है। और ऐसा कौन सा काम है जो हम बहनान ने ठानो और वह नहीं कर पावे। तो आओ एक बार फिर मिलकर गांव में सब जने गीत सावन आयो, है ना? तो बहनाओ गांव में आओ सुनो।

माधुरी और सखियन के स्वर में अभी हमारी बहना आनंद ले रही हती, सावन आयो सुगड़े सुहावनो जी। तो बहनों देखो, सावन आए गए हुए, बरसात आए गई है, तो बरसात में हमें अपने स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हम स्वस्थ होंगे तभी आनंदित होंगे, और आनंदित होंगे तो नन्नी नन्नी बूंदियन को ऐसा आनंद चढ़ेगा कि हम छत पे जाए के गीत गुनगुनाएंगे। कैसे? तो आओ सुनो ऐसे।

नन्नी नन्नी बुंदिया रे, सावन को मेरो पीसनो झूलनो खेलनो, कितनी सारी कलाकृति, कितने सारे काम जुड़े हुए हैं और कितनी बचपन की याद जुड़ी हुई हैं। आज हमारी बहन अपनी उन यादन के झरोकिन को जब टटोले है ना, तो वो गुड़िया वो गुड्डा ऐसे याद आवे, मन में ऐसा लगे कि आज हम फिर से बनाए के अपने बालकन को बिने दिखावे कि हम कैसी गुड़ियन से खेलते। पर युग आज आगे चल रहे हो है और देखो कैसे कैसे नए खेल खिलौना बालकन के सामने आए गए हैं। पर समय के संग संग बदलाव हो बहुत जरूरी है और समय के संग चल बहुत जरूरी है। अब देखो जो समय कह रहे हो है कि जा कार्यक्रम को यहीं विराम दे में, तो हमारी सभी बहनान को विजयलक्ष्मी बहन की राम राम।

0: अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर अंगना। कार्यक्रम की प्रस्तुति विजय लक्ष्मी की थी। इस कार्यक्रम के संयोजक थे ओपी सिंह। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है सामुदायिक गान शिक्षा पाठ। आज आप सुन सकेंगे हिंदी भाषा में, बोल है हम होंगे कामयाब एक दिन, हिंदी अनुवाद किया है गिरिजा कुमार माथुर ने।
1: बच्चों नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: आज हम आपको एक बहुत ही अच्छा गीत सिखाएंगे, उसके बोल हैं होंगे कामयाब। ये गीत आपने पहले सुना है?
2: यस सर।
1: तो आप सीखेंगे ना?
2: यस सर।
1: अच्छा, पहले हम आपको इस गीत के बारे में थोड़ा सा बता दें कि ये गीत एक बहुत ही मशहूर इंग्लिश सॉन्ग का हिंदी ट्रांसलेशन है, और वो इंग्लिश सॉन्ग था वी शैल ओवरकम। और ये

0: पॉल रॉबसन ने इसको गा के बहुत मशहूर किया था और इसका हिंदी अनुवाद किया श्री गिरजा कुमार माथुर ने। तो सबसे पहले आप इसके बोल लिख लीजिए, कॉपी पेंसिल खोलिए। होंगे कामयाब,
1: होंगे कामयाब।
0: दूसरी बात फिर लिखिए, होंगे कामयाब,
1: होंगे कामयाब।
0: और तीसरी बार, हम होंगे कामयाब एक दिन,
1: हम होंगे कामयाब एक दिन।
0: हो मन में है विश्वास,
1: हो मन में है विश्वास।
0: पूरा है विश्वास,
1: पूरा है विश्वास।
0: हम होंगे कामयाब एक दिन,
1: हम होंगे कामयाब एक दिन।
0: तो बच्चों ये तो स्थाई हो गई। अब पहला अंक वाला लिखिए, होगी शांति चारों ओर,
1: होगी शांति चारों ओर।
0: और दूसरी बार फिर आएगा, होगी शांति चारों ओर,
1: होगी शांति चारों ओर।
0: और तीसरी बार, होगी शांति चारों ओर एक दिन,
1: होगी
0: हो मन में है विश्वास,
1: हो मन में है विश्वास।
0: पूरा है विश्वास,
1: पूरा है विश्वास।
0: होगी शांति चारों ओर एक दिन,
1: होगी शांति चारों ओर एक दिन।
0: अब दूसरा अंतरा लिखिए, हम चलेंगे साथ साथ,
1: हम चलेंगे साथ साथ।
0: डाल हाथों में हाथ,
1: डाल हाथों में हाथ।
0: हम चलेंगे साथ साथ एक दिन,
1: हम चलेंगे साथ साथ एक दिन।
0: हो मन में है विश्वास,
1: हो मन में है विश्वास।
0: पूरा है विश्वास,
1: पूरा है विश्वास।
0: हम चलेंगे साथ साथ एक दिन,
1: हम चलेंगे साथ साथ एक दिन।
0: अब तीसरा अंतर लिखिए, नहीं डर किसी का आज,
1: नहीं डर किसी का आज।
0: नहीं भय किसी का आज,
1: नहीं भय किसी का आज।
0: नहीं डर किसी का आज के दिन,
1: नहीं डर किसी का आज के दिन।
0: हो मन में है विश्वास,
1: हो मन में है विश्वास।
0: पूरा है विश्वास,
1: पूरा है विश्वास।
0: नहीं डर किसी का आज के दिन,
1: नहीं डर किसी का आज के दिन।
0: और इसके बाद होंगे कामयाब आ जाएगा। तो लफ्ज लिख लिए ना आप सबने। अच्छा, इसकी धुन जो है वो कहरवा ताल में है और इसमें चार मात्रा होती हैं। देखिए कैसे, धागी नाते नट दिन, एक दो तीन चार,
1: एक दो तीन चार,
0: एक दो तीन चार,
1: एक दो तीन चार।
0: और अब इसकी बोल बात देख लीजिए, इसकी बोल बात कैसे है। होंगे कामयाब,
1: होंगे कामयाब,
0: हम होंगे

0: इसी तरह से बच्चों इसके तीनों अंतरों की बोल बांट रहेगी। अब इसको गाने में हम लोग सिखाएंगे। तो नलिनी जी, पहले आप बताइए कि इसकी धुन कौन से स्वर से है?
1: इस गाने की धुन पांचवें काले से है।
0: बच्चों, पांचवें काले से गाना है, कौन से स्वर से?
2: पांचवें काले से।
0: अच्छा, अब सा दीजिए।

0: तो ये तो बच्चों इसकी स्थाई हो गई। अब पहला अंतरा सीखेंगे। पहला अंतरा क्या है इसका जरा बताइए।
1: होगी शांति चारों ओर।
0: और ये धुन इसकी वही है जो होंगे कामयाब की है, लेकिन इसको सम के दो मात्रा बाद गाना है। कैसे?

0: तो बच्चों ये पहला अंतरा हो गया, आप दूसरे अंतरे के बोल बताइए क्या है।
1: हम चलेंगे साथ साथ।
0: और ये भी सम के दो मात्रा बाद शुरू होता है, तो नलिन जी आपसे खाइए।

0: दूसरा अंतर आपको याद हो गया। अब तीसरे अंतर के बोल बताइए क्या है।
1: नहीं कर किसी का आज।
0: इसकी धुन भी पहले अंतर के समान है, लेकिन ये दो मात्रा से नहीं शुरू होगा, ये सम के तीन मात्रा बाद शुरू होगा। कैसे?

तो ये तीसरा अंतरा भी आपको याद हो गया। इसके बाद होंगे कामयाब आपने गाना है और आखिर में तीन बार लाइन रिपीट करनी है, हम बताते हैं कैसे। पहले आप होंगे कामयाब गाइए, एक दो तीन चार।

अभी आप सुन रहे थे हिंदी भाषा में सामुदायिक गान शिक्षा पाठ, बोलते हम होंगे कामयाब एक दिन। गीतकार थे गिरिजा कुमार माथुर। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
0: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
0: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपेरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
1: इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने भारत के शिक्षा तंत्र को शिक्षार्थी केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्योन्मुखी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कम्प्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मानसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। झारखंड में आज JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के बीच विभिन्न समूहों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता का दूसरा दौर आज आयोजित किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आज रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की विशेष कमेटी और छात्र संगठनों के बीच दूसरे दौर की वार्ता सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल ID भी

0: रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल का भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करके उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सहकारी समितियों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक केंद्रीय शासी या सहायक निकाय होता है, जिसका गठन कई स्वतंत्र सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। सहकारी क्षेत्र की शक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे छोटे निवेश को जोड़कर बड़े कारोबार के लिए बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है।
2: मेरा जो कोऑपरेटिव का समझ है, बड़ा व्यापार करने के लिए छोटे छोटे लोगों की कोऑपरेटिव बनाकर छोटी पूंजी से बहुत बड़ी पूंजी निर्मित कर बड़ा व्यापार किया जा सकता है। अमूल आज 1,25,000 करोड़ का व्यापार करता है। इप्को, क्रिप्को, एक जमाने में लिज्जत पापड़, ये किसी में भी पूंजी का निवेश 50 रुपया से ज्यादा नहीं है। और आज अमूल विश्व का खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड बन व्यापार कर रहा है।
1: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि बिहार से पहली बार GI टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दरभंगा में किसानों से सीधे खरीदी गई इस खेप से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 18% से अधिक लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से हासिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये लेख भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर चिकित्सा प्रौद्योगिकी तंत्र को उजागर करता है, जो घरेलू विनिर्माण, आयात पर कम निर्भरता और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी पहलों से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। सुबह से 2,500 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग ने केरलम में मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए आज 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और शेष 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल के लिए 4 उत्तरी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस महीने की 10 तारीख तक

0: तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने आज दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। भानु प्रताप के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। एक रिपोर्ट।
2: रेलवे ने ओणम के दौरान यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 14 अगस्त से 6 सितंबर के बीच अब तक 112 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इनमें से 38 विशेष ट्रेन दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चलाई जाएंगी। दक्षिण रेलवे ने अन्य रेलवे जोन के लिए भी 16 अतिरिक्त विशेष ट्रेन की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन भी इस दौरान 58 विशेष ट्रेन चलाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। उधमपुर में महिलाओं का एक समूह हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथ से राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे से जुड़ी सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहा है। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात में रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में 3 लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हैंसमैन ने स्वर्ण पदक जीता। अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने IIT के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतर की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत फिल्म हिना से। इस गीत को अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट. बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.

अभी आपने सुना क्रिएचर 3D से लिया ये गीत। इस गीत को अपनी आवाज दी अरिजीत सिंह ने। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से अभी आप आनंद ले रहे हैं सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत के कार्यक्रम का।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म मर्डर 2 से। इस गीत को अपने सुर दिए मोहम्मद इरफान, अरिजीत सिंह और सैम भट्ट ने। श्रोताओं, भी कार्यक्रम संबंधी सूचना, वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार 10 अगस्त 2026 को अपराह्न 1:15 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय रहेगा बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2330-135 पर फोन करके या फिर मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल। श्रोताओं, यदि आप बरसात के मौसम में होने वाली सामान्य बीमारियां जैसे कि सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल फीवर, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, पेट के संक्रमण, स्तनपान में सावधानी, कान में संक्रमण आदि समस्याओं के समाधान के लिए सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा से। ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार 10 अगस्त 2026 और समय अपराह्न 1:15। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अभी आप आनंद ले रहे हैं सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत के कार्यक्रम का।

फिल्म चांदनी से लिया ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले विनोद राठौर के युगल सुरों में। इस गीत के साथ ही सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब हम यही विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बज चुके हैं। अब हम इस सभा के प्रसारण यही संपन्न करते हैं। अपनी सांध्यकालीन सभा में संध्या 5:30 पर फिर आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। इस मीटर पर हमारी दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या?
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Book your tickets now. Noida International Airport, जहां सपने भरी उड़ान।

हर एक पल जिंदगी का कुछ कह जाता है, कुछ सिखा जाता है, कभी हंसी के रूप में आता है तो कभी आंखों से होकर बह जाता है। इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ आज मैं हूँ आपके साथ खुशबू, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम में। साथियों, आज हम बात करेंगे भीष्म साहनी जयंती के बारे में।

भीष्म साहनी आधुनिक हिंदी साहित्य के एक महान प्रगतिशील लेखक, नाटककार और अभिनेता भी थे। वो प्रसिद्ध अभिनेता बलराज साहनी के छोटे भाई थे। उनको हमने अक्सर फिल्मों में देखा होगा। उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास तमस भारत के विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। उन्हें 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी में उनका जन्म हुआ। उनकी जो शिक्षा थी, लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने एमए किया। उनके बड़े भाई बलराज साहनी जाने माने फिल्म अभिनेता थे। बात करें अध्यापन और कार्य की, तो विभाजन के बाद भारत आ गए। दिल्ली कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में वो रहे। उन्होंने मॉस्को में विदेशी भाषा प्रकाशन गृह में अनुवादक के रूप में भी कार्य किया और कई रूसी कृतियों का हिंदी में अनुवाद किया। 1975 में उन्होंने उपन्यास तमस के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2002 में वो सर्वोच्च सम्मान के लिए जाने गए।

0: साथियों नमस्कार, आपके साथ हैं हम आज के आरजे गुंजन शर्मा,
1: भावना सिंह,
2: शिवानी गौतम
3: और नैना गुप्ता।
0: भारत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत आजादी की लड़ाई में भारत के वीरांगनाओं की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। इन्हीं नायिकाओं को याद करते हुए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत की वीरांगनाएं। अपनी विविधता में भी एकता को संरक्षित किए हुए पुरातन संस्कृति, चिंतन और परंपराओं को जागृत रखकर विश्व को अपनी अखंडता का संदेश देता भारत।
1: भारत के इतिहास के वे कालखंड जो अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति, साहस, वीरता और शहादत को सजोए हैं, आज भी हमें अपने कर्तव्य मार्ग हेतु चलने की प्रेरणा दे रहे हैं।
0: आज स्वतंत्र भारत की जिस भूमि पर हम सांसें ले रहे हैं, उस आजादी को पाने के लिए अनगिनत बलिदानियों ने अपना सर्वस्व समर्पित किया है। जला अस्थियां बारी बारी, चटकाई जिसपे चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, भारत माँ की जय बोल।

0: स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने भी कंधे से कंधा मिलाकर अपनी वीरता, कुशलता, साहस और क्षमता का परिचय दिया है। इस संग्राम में शिक्षित, घरेलू, अनपढ़, श्रमिक, किसान समस्त क्षेत्रों की महिलाओं ने देश के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया है।
1: शांति प्रिय आंदोलनों से लेकर क्रांतिकारी आंदोलनों तक बालिकाओं और महिलाओं ने संघर्षों की एक अविरल गाथा इतिहास को प्रदान की है।
0: घर की चार दीवारी में रहकर तो कभी मर्दाना वेश धारण कर वीरांगनाओं ने ब्रिटिश सरकार से लोहा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
1: चूड़ियों वाले हाथों ने कभी तलवार उठाई है तो कभी बंदूक उठाने में भी

0: चित्तूर की रानी चैनम्मा पहली भारतीय वीरांगना है जिन्होंने सन 1824 में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजाया था। सन 1857 के गदर में आगे बढ़कर भाग लेने वाली रानी लक्ष्मीबाई को कौन भूल सकता है। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए लखनऊ की रानी बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग पुत्र को राजगद्दी सौंपकर अंग्रेजों का मुकाबला किया था।
1: रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने भी अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की बेगम जीनत महल ने स्वतंत्रता सेनानियों का साथ देकर अपने देश प्रेम को व्यक्त किया था।
0: इसी प्रकार छोटी छोटी रियासतों की रानियों ने आजादी के यज्ञ में अपना सक्रिय योगदान दिया था। अवध में तुलसीपुर रियासत की रानी राजेश्वरी देवी और मिर्जापुर रियासत की रानी तुलमुंद कोयर के नाम इतिहास के पन्नों में नहीं है, किंतु इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।
1: रियासतों के अलावा साधारण महिलाओं के सक्रिय योगदान को भुला पाना कठिन है। 1857 के विद्रोह को हवा देने वाले मंगल पांडे को चर्बी वाले कारतूसों की सूचना अंग्रेजों की रसोई में कार्य करने वाली साधारण महिला लज्जो ने दी थी।
0: इस विद्रोह की अग्नि में वीरांगना उदा देवी, मुजफ्फरपुर के छोटे गांव की महिला महावीरी देवी और आशा देवी अंग्रेजी सेना का सामना करते हुए शहीद हो गयी।
1: तवायफ समाज को कभी भी सम्मानजनक स्थान ना मिला हो, लेकिन इसी समाज की कुछ महिलाओं ने वीर पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए स्वतंत्रता के समर में अपनी आहुति दे दी।
0: लखनऊ की हैदरी बाई, अजीजन बाई, मस्तानी बाई वे नाम हैं जो आज भी सम्मान से लिए जाते हैं। हैदरी बाई और अजीजन बाई ने अपने पेशे का लाभ उठाते हुए क्रांतिकारियों तक महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुँचाई।
1: अजीजन बाई ने मर्दाना वेश बनाकर महिलाओं की एक टोली बनाई थी जो नाना साहब और तात्या टोपे की मदद करती थी। एक दिन ऐसा करते हुए वे अंग्रेज सिपाहियों की गोलियों का शिकार हो शहीद हो गए।
0: स्वतंत्रता एक शब्द मात्र नहीं, समाहित है जिसमें भावों की मंदाकिनी, वीरता का स्पंदन, करुणा का रुदन और है अमर गाथाओं की गायकी।

0: गाथाओं की गायकी के इन सुरों में शहादतों की कहानियों की मोटी पोथी है, किंतु कुछ वीरांगनाओं की बात अब हम कर रहे हैं।
1: 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह आरंभ होने के बाद 30 मई 1857 को अवध में विद्रोह की घोषणा की गई। अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध इस संग्राम की नेता थी अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल।
2: बेगम हजरत महल एक नर्तकी रही थी। वे बुद्धिमान और बेहद आकर्षित महिला थी। मई 1857 के अंत में विरोध को भड़काने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। परिणाम स्वरूप अवध और समीपवर्ती क्षेत्रों में विद्रोहियों का कब्जा हो गया।
1: जब कानपुर में विद्रोह की आग फैली तो उसमें वीरांगना अजीजन बेगम का प्रशंसनीय योगदान था। ये वीर साहसी और निर्भीक महिला थी। इन्होंने ऐसी ही महिलाओं का एक दस्ता बना दिया।
2: इस महिला दल की वीरांगनाएं पुरुष वेश में घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़ी। वे संघर्ष हेतु पुरुषों को उत्साहित करती। घायलों की सेवा और देखभाल के अलावा युद्धरत सेनानियों के खान पान की व्यवस्था करती। इसके अलावा वे उन्हें शस्त्र और कारतूस जान की बाजी लगाकर पहुंचाती थी।
1: मात्र 13 वर्ष की उम्र में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व कर ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ाने वाली अपने बगावती तेवरों से अंग्रेजों की आंख का कांटा रही रानी गादिल्लू देश की वो अकेली महिला क्रांतिकारी थी जिन्होंने 15 वर्ष का लंबा समय ब्रिटिश सरकार की कैद में काटा।
2: इनका जन्म 26 जनवरी 1915 में मणिपुर के चोइलांग कबीले में हुआ था। बचपन से ही स्वतंत्र और स्वाभिमानी गादिल्लू 13 वर्ष की आयु में नागा नेता जायोनोक के संपर्क में

0: आईं। वे फिरका आंदोलन के जरिए मणिपुर के अंग्रेजों को बाहर निकालने के प्रयास में लगे थे।
1: आंदोलन आगे गति पाता इससे पहले ही 29 अगस्त 1931 को अंग्रेजों ने जादव नोक को गिरफ्तार कर लिया और फांसी दे दी। अब इसका नेतृत्व बालिका गादिल्लू के हाथों में आ गया।
0: अपने 4000 हथियारबंद नागा योद्धाओं के साथ गादिल्लू भूमिगत होकर लगातार अंग्रेजों को टक्कर देती रही। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों के घर और गांव जलाकर नष्ट कर दिए, लेकिन क्रांतिवीरों का जोश कम ना हुआ।
1: परिणाम ये हुआ कि उन्होंने असम राइफल्स की सरकारी चौकी पर धावा बोल दिया। रानी के बढ़ते प्रभाव को देख नागाओं के दमन हेतु खास बटालियन तैयार की गई, लेकिन रानी लगातार स्थान बदलती और छापामार युद्ध में अंग्रेजों को क्षति पहुंचाती रही।
0: अपने 4000 साथियों को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने लकड़ी के एक किले का निर्माण शुरू करवाया। इसी बीच असम राइफल्स ने मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में अचानक हमला कर रानी गादिल्लू को गिरफ्तार कर लिया।
1: ये वर्ष था 1932। उन्हें इम्फाल ले जाया गया। मुकदमा चलाकर उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। रानी गादिल्लू ने 15 वर्ष गुवाहाटी, शिलोंग, तुरा और आयजोल की जेल में बिताए।
0: देश के लिए मर मिटने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही देश की एक और बेटी थी, जिसके सिर पे न ताज था और न ही सत्ता। फिर भी अपनी मिट्टी के लिए वो जी जान से लड़ी और भारत के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ गई।
1: वो बेटी थी झांसी की रानी की परछाई बनकर अंग्रेजों से लोहा लेने वाली वीरांगना झलकारी बाई। इनका जन्म बुंदेलखंड के भोजना गांव में 22 नवंबर 1830 को एक निर्धन परिवार में हुआ। पिता थे सदोबा और माता का नाम जमुना बाई था।
0: झलकारी बाई बचपन से ही साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञ थी। कहा जाता है एक बार जंगल में इनकी एक बाघ से मुठभेड़ हो गई। इन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से बाघ को मार डाला था। बचपन में माता की मृत्यु के बाद पिता ने इनका पालन पुत्र के समान किया। इन्हें तलवारबाजी, तीरंदाजी और युद्ध कौशल की शिक्षा दी गई।
1: इनकी वीरता से प्रभावित होकर इनका विवाह झांसी की सेना के योद्धा पूरन कोली के साथ हुआ। रानी से इनकी मुलाकात किले में आयोजित गौरी पूजा के दौरान हुई। जब रानी को इनके साहसिक कारनामों का पता लगा तो रानी ने झलकारी बाई को अपनी महिला वाहिनी में शामिल कर लिया।
0: अपने साहस और युद्ध कौशल से वे शीघ्र ही दुर्गा वाहिनी की नायिका बन रानी लक्ष्मीबाई के महत्वपूर्ण फैसलों में अपनी भूमिका निभाने लगी। इतिहासकारों के अनुसार 23 मार्च 1858 को जनरल ह्यूज रोज ने अपनी विशाल सेना के साथ झांसी पर आक्रमण किया।
1: रानी ने वीरता पूर्वक अपने 4000 सैनिकों के साथ उस विशाल सेना का सामना किया।
0: स्वतंत्रता की अलग जलाई रखने के लिए रानी का जीवित रहना जरूरी था। ऐसे मुश्किल समय में झलकारी बाई ने रानी से सुरक्षित निकल जाने को कहा और खुद रानी जैसे वस्त्र और कवच पहनकर घोड़े पर सवार हो सेना का नेतृत्व करने लगी।
1: रानी की हमशक्ल होने के कारण अंग्रेज पहचान ना सके और उन्हें रानी समझ पकड़ने को पूरी ताकत लगा दी। झलकारी बाई अदम्य साहस से लड़ी, लेकिन अंततः पकड़ी गई।
0: जब अंग्रेजों को पता चला कि उनके साथ चाल चली गई है तो उन्होंने झलकारी बाई को फांसी दे दी। झलकारी बाई की वीरता देखकर अंग्रेज जनरल ने कहा था,
1: यदि भारत की 1% महिलाएं भी उनके जैसी साहसी हो जाएं, तो अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा।

0: झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों को लोहा मनवाने वाली एक वीरांगना, जिसे शायद वो सम्मान न मिल सका जिसकी वे हकदार थी, वे थी ऊदा देवी पासी।
1: इनका जन्म अवध क्षेत्र के उजरिया गांव के एक निर्धन परिवार में हुआ था। बचपन से ही ऊदा देवी के मन में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश था। सन 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजी सरकार द्वारा कलकत्ता भेज दिया गया। अब अवध की बागडोर उनकी बेगम हजरत महल के हाथों में आ गई।
0: बेगम हजरत महल से ऊदा देवी ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग में भाग लेने की प्रार्थना की। तब बेगम ने उनसे महिलाओं की एक प्रशिक्षित टुकड़ी तैयार करने को कहा। वे इस कार्य में जुट गईं।
1: इसी बीच उनका विवाह अवध सेना के एक सैनिक मक्का पासी से हो गया। 10 जून 1857 को लखनऊ के चिनहर कस्बे के पास इस्माइलगंज में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के साथ विद्रोहियों की लड़ाई में मक्का पासी शहीद हो गए। कहा जाता है कि ऊदा देवी ने अपने पति के शव पर उनकी शहादत का बदला लेने की कसम खाई।
0: 16 नवंबर 1857 को कॉलिन कैंबल के नेतृत्व में एक विशाल अंग्रेजी फौज ने लखनऊ के सिकंदर बाग को घेर लिया। उस समय वहां लगभग 2000 भारतीय सिपाही शरण लिए हुए थे। ऊदा देवी ने अपनी महिला सैनिकों की टुकड़ी को अंग्रेजी सेना का सामना करने का आदेश दिया।
1: पुरुष वेश धारण कर वे खुद दोनों हाथों में पिस्तौल और कारतूस लेकर एक पीपल के वृक्ष पर चढ़ गए। घनी पत्तियों के बीच से वे पेड़ के नीचे से गुजरने वाले अंग्रेज सैनिकों को निशाना बनाने लगे। उन्हें हमलावर अंग्रेज सैनिकों को सिकंदर बाग में तब तक नहीं घुसने दिया जब तक कि उनके पास गोलियां खत्म ना हो गईं। कहा जाता है कि ऊदा देवी ने एक स्नाइपर की भांति हमला कर करीब 32 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: जब वे पेड़ से नीचे उतरने का प्रयास कर रही थी, अंग्रेज सैनिकों की गोलियों ने उनका शरीर बेध दिया। वे वीर गति को प्राप्त हो गईं।
1: पुरुष वेश में वीरांगना को देख कैम्ब्रिज ने अभिभूत होकर अपना हैट उतारकर उन्हें सलामी दी।
0: क्यों ना हो इस वतन की मिट्टी से मोहब्बत हमें, जाना है पेशानी पे खाक लगाकर जन्नत मुझे।

0: मां भारती को गौरवान्वित करने वाली वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने तो अमित गौरव गाथा अंग्रेजी दास्ता से मुक्त कराने के लिए रच दी। वास्तव में 1857 के संग्राम की वे नायिका थी।
1: 19 नवंबर 1835 को वाराणसी के असी घाट क्षेत्र में मोरोपंत तांबे और भागीरथी बाई की पुत्री रूप में इनका जन्म हुआ। नाम रखा गया मणिकर्णिका। प्यार से इन्हें पुकारा जाता था मनु, किंतु 4 वर्ष की आयु में मनु की माता का देहांत हो गया।
0: इनके पिता मोरोपंत बाजीराव द्वितीय की सेवा में थे। वे मनु को बिठूर ले गए। यहाँ मनु ने मल्ल विद्या, घुड़सवारी और शस्त्र विद्या सीखी।
1: समय के साथ इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। शादी के बाद मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी गई। झांसी में उन्होंने महिलाओं को युद्ध कौशल और शस्त्र संचालन का प्रशिक्षण दिया और एक महिला सैनिक संगठन बनाया, नाम था दुर्गा सेना।
0: अल्पायु में अपने पुत्र की मृत्यु होने पर गंगाधर राव ने परिवार से ही एक बालक को गोद लिया, नाम रखा गया दामोदर राव। बीमारी के चलते गंगाधर राव की मृत्यु हो गई।
1: दत्तक पुत्र के संरक्षक के रूप में रानी ने राजकाज देखना शुरू कर दिया, लेकिन ब्रिटिश सरकार उनका राज्य छीन लेना चाहती थी। लॉर्ड डलहौजी ने दामोदर राव को शासक मानने से इनकार कर दिया। झांसी को अपने अधिकार में लेने का आदेश जारी कर शासन मेजर इलिस के अधीन किया गया।
0: इस आदेश पर रानी ने जवाब दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। बातचीत से कोई हल ना निकलने पर रानी ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अब युद्ध आरंभ हुआ। किले को घेर कर अंग्रेज सेना 8 दिनों तक गोले बरसाती रही। अब कूटनीति द्वारा अंग्रेज अफसरों ने रानी

0: एक धोखेबाज सिपाही सलार को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया, जिसने किले के दाहिने द्वार को खोल दिया।
1: घोड़े पर दाहिने हाथ में नंगी तलवार लिए पुत्र को पीठ पर बांधे रानी ने शत्रु दल का संहार करना शुरू कर दिया। विशाल फौज को देख रानी को सुरक्षित निकल जाने को कहा गया। लंबी यात्रा के बाद कालपी के पेशवा ने उन्हें सहायता और शरण दी, किंतु फौज के साथ ह्यूरोज वहां पहुंच गया और उसने कालपी पर भी अधिकार कर लिया।
0: रानी ने तात्य टोपे के साथ ग्वालियर पर धावा कर नाना साहिब को पेशवा घोषित किया, किंतु ह्यूरोज ने पूरी ताकत लगाकर ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजी सेना रानी का पीछा लगातार कर रही थी।
1: 18 जून 1857 को आखिरी बार रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों से सामना हुआ। रानी ने घोड़े की लगाम दांतों से थामकर दोनों हाथों से तलवार चलाना शुरू कर दिया। अंग्रेज सैनिक मारे जाने लगे और रानी लक्ष्मीबाई आगे बढ़ती रही, किंतु अचानक एक नाला सामने आने पर घोड़ा भड़क गया और रुक गया।
0: तभी पीछा करते हुए घुड़सवार सैनिक वहां आ पहुंचे और पीछे से रानी के सिर पर वार कर दिया। उनके सिर का दाहिना भाग कट गया। उसी समय दूसरे सिपाही ने संगीन से उनके हृदय पर वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल रानी युद्ध करते हुए भूमि पर गिर पड़ी।
1: रानी के वफादार गुल मोहम्मद और रामराव देशमुख आखिरी वक्त तक उनके साथ थे। वे उनके घायल शरीर को पास ही बाबा गंगादास की कुटिया में ले गए, जहां इस वीरांगना ने मां भारती के चरणों में अपने प्राण अर्पित कर दिए। आंधी के आंदोलनों में दिखाई दिया, जिनमें उर्मिला देवी, बासंती देवी, दुर्गाबाई देशमुख, कृष्णाबाई राम और सरोजनी नायडू जैसी महिला नायिकाएं थीं।
2: The faith that he will help with your help create a charter that shall restore to our mother still in fetters, her rightful place as a torchbearer of liberty, of friendship, of love, of equity.
3: हम शपथ लेते हैं, अब या तो विदेशी शासन नहीं या फिर हम नहीं।
0: नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन आर्मी में डॉक्टर लक्ष्मी सहगल ने चिकित्सक होते हुए भी कैप्टन और कर्नल की रैंक प्राप्त कर महिला रेजिमेंट का नेतृत्व किया। उन्होंने खुद इसे याद किया।
4: नेताजी केम एंड व्हेन ही गेव द कॉल फॉर द आईएनए इंक्रीज एंड सिविलियंस बी रिक्रूटेड एंड दैट वेरी बिग मीटिंग दैट ही हैड देयर ऑन दैट मैदान देन यू सी नेताजी स्टार्टेड दिस विमेंस रेजिमेंट रानी ऑफ झांसी की रेजिमेंट and he made me the commander of that regiment. I was trained along with the other recruits. Then I moved into Burma. So my participation was there till the end. And I was arrested by the British forces. I was kept in Burma for a whole year under house arrest.
1: Kakori Kand mein Lalita Ghosh, Beena Das, कमला दास गुप्ता, कल्याणी दास के साथ दुर्गा भाभी के योगदान को कौन नहीं जानता। उनके बहुआयामी व्यक्तित्व ने क्रांति वीरों का बड़ा सहयोग किया। एक बार उन्होंने खुद बताया था,
5: जब गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हुआ और उन्होंने विद्यार्थियों से ये अपील की कि विद्यार्थी जो है वो स्कूल कॉलेज छोड़ दें और इस आंदोलन में सम्मिलित होकर के इसको आगे बढ़ाएं, तो जितने भी हमारे साथ के लोग वहाँ थे, लाहौर की बात कर रही हूँ मैं, तो वहाँ पर भगत सिंह भी थे, भगवती चरण मेरे पति वो भी थे, सुखदेव था, धनवंतरी थे, यशपाल थे और हम लोग बहुत सारे लोग थे। तो सभी लोगों ने अपने अपने कॉलेज छोड़ दिए और छोड़ने के बाद हम लोग सब जी जान से उसमें जुट गए। सुशीला दीदी वो भी थी जो कि भगवती चरण जी उनको अपनी बहन की तरह मानते थे। एक डॉक्टर लीलावती थी वो भी उसमें आई। हम लोग काफी औरतें थी उस समय। तो चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी ने अपना ये आंदोलन स्थगित कर दिया तो हमारे अंदर बहुत निराशा हुई, बड़ी भड़क पैदा हुई, तो हम लोगों ने अपना गुप्त आंदोलन आरंभ किया।

0: दुर्गा भाभी महिलाओं को लेकर पीछे जाओ, हम इनसे निपट लेंगे।
1: मारेंगे या मर मिटेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे।
2: साथियों, अभी आपने सुना रूपक हम भारत की बेटी है, भारत की वीरांगनाएं। इसी के साथ युवाणी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज्ञा दें, नमस्कार। अभी युवा श्रोता अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी FM 102.2 MHz पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का आग्रह किया है। ये निगम देश के सहकारी बैंकों का एक प्रमुख संगठन है। उन्होंने मुंबई फोर्ड क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रगति में नाविकों की भूमिका सबसे प्रमुख है। मुंबई में नाविकों की सुरक्षा और कल्याण पर एक कार्यक्रम में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत दुनिया के प्रमुख समुद्री देशों में से एक बनकर उभरा है। इस अवसर पर व्यापक डिजिटल समुद्री गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ई समुद्र का भी शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य नाविकों, नौवहन कंपनियों, बंदरगाहों, सेवा प्रदाताओं और समुद्री क्षेत्र से जुड़े लोगों को पारदर्शी और नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि ये आंकड़ा दर्शाता है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति कर रहा है। सरकार ने उद्योग जगत के प्रमुख कारोबारियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनामिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कोर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ कई रणनीतिक समझौता ज्ञापनों की घोषणा की है। इन समझौता ज्ञापनों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग को मजबूत करना है। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के बीच

0: आज दूसरे दौर की उच्च स्तरीय वार्ता हुई।
1: सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सशस्त्र बलों ने सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। यमन सशस्त्र बलों के प्रवक्ता कर्नल माजिद अल नुजैली ने कहा कि हूती विद्रोहियों के बार बार हमलों के बाद सरकारी बलों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

रात 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृत भारती। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे लघु रूपक राष्ट्र जागरण की दीप शिखाएं। रात 10:00 आप सुन सकते हैं संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम इस सप्ताह संसद में। ये सभी कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

6:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। आज इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत पूतना वध का प्रसंग। कथाकार होंगे धर्मवीर अज्ञानी। संध्या वंदन कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 6:30 पर। शाम सुहानी कार्यक्रम का आप आनंद लेंगे 7:31 पर। इस सप्ताह विधानमंडल में इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से 8:20 पर। एक ही कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे सड़क फिल्म के कुछ गीत। समय याद रखिएगा 8:30। कार्यक्रम सुहाने तराने लेकर हाजिर होंगे 9:15 पर। यह था आज का कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। वनितलो कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली

कार्यक्रम में इस सोमवार 10 अगस्त 2026 को अपराह्न 1:15 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412-25575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय है बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल। श्रोताओं, यदि आप बरसात के मौसम में होने वाली सामान्य बीमारियां जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल फीवर, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, पेट का संक्रमण, स्तनपान में सावधानी, कान में संक्रमण आदि समस्या के समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा से। श्रोताओं, ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन होगा सोमवार 10 अगस्त 2026 और समय अपराह्न 1:15। सूचना समाप्त हुई। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए अब सुनते हैं संवेद स्वरों में देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देशभक्ति परक रचना। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत पूतना वध का प्रसंग। कथाकार हैं धर्मवीर अज्ञानी।
5: ओम

भागवत जी के दसम स्कंद के छठवें अध्याय से पूतना वध को प्रसंग या प्रकार कहने हैं। सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब नंद जी अपने परम सखा वासुदेव जी से कारागार में मिले, तब वसुदेव जी ने नंद बाबा से कही, हे नंद जी, अब तुम मोसो मिल चुके और महाराज कंस को करहु चुकाया है, अब तुम बेग गोकुल पधारो, क्योंकि आजकल ब्रज में भारी उत्पात है।

ताम शंकितः। श्री सुखदेव जी कहे हैं, परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा सो चले तब मार्ग में विचार करवे लगे कि वासुदेव जी को कथन असत्य न है सके, याते बिनके मन में उत्पात है वे की आशंका है गई। तब बिनने मन ही मन प्रभु ही रक्षा करें, हम तो बिनके ही शरणागत हैं, ऐसो निश्चय कियो।

पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी हती। बाको एक ही काम हो, बालकन को मारनो। कंस की आज्ञा सो वो नगर, ग्राम और अहिरन की बस्तीन में बच्चन को मारवे के ताई घूमती रहती। जहाँ भगवान के नाम गुण और लीलान को गान नहीं होए, वहीं पूतना को जोड़ चले है। पूतना आकाश मार्ग सो गमन के संग इच्छा अनुसार रूप बनाए वे मैं हूँ सक्षम हती। एक दिना नंद बाबा के गोकुल के नज़दीक आई पूतना ने सुंदरी युवती को रूप बनाए के नगर में घुस आई। बाकी सुंदरता के आगे अप्सराहू ले जाए गई। पूतना बालकन को ग्रह के समान हती। पूतना इधर बिधर देख देख के नंद बाबा के घर में जाए घुसी। घर में लाला कन्हैया पीड़ा पे पौड़े भये हते पूतना ने देखे। हे राजन परीक्षित, भगवान तो

सबके भीतर के भाव को जानन हारे हैं। पूतना ऊपर सो तो बड़ी सुंदर व्यवहार कर रही हती, पर भीतर सो कपट रूप धारण कर राख्यो तो। माँ रोहिणी यशोदा पूतना की विशेष सुंदरता को देख के मोहित है गई। वे चुपचाप देखती रही। इतमें पूतना ने लाला को गोद में उठाए के कालकूट विष लग्यो भयो। अपनो स्तन तुरंत ही श्री कृष्ण के मुख में दे दियो। इधर भगवान ने क्रोध को अपनो साथी बनाए के दोनों ही हाथन सो स्तन को दबाए के दूध के संग संग पूतना के प्राणन को पीवे लगे। अब तो वो पूतना मारे कष्ट के छटपट

अरे छोड़ दे अब बस कर। पूतना बार बार हाथ पैर पटक पटक के रोवे लगी, बाकी दो आँख पलट गईं। पूतना को पसीना आए गयो, पूतना के चीख वे चिल्लाहट सो पृथ्वी आकाश सिगरी दिशाएं सोड़ सो भर गईं। अंत में पूतना अपने असली रूप में प्रकट है गई। तब तक पूतना के प्राण श्री कृष्ण ने शरीर सो अलग खींच लिए। पूतना को मुख फट गयो, बालहू बिखर गए, हाथ पांव फैल गए। भागती भई पूतना घर सो बाहर गोष्ठ में आए के गिर गई। हे राजन परीक्षित, गिरते गिरते हो पूतना छह कोस के भीतर के पेड़न को कुचल गई। जे बड़ी अद्भुत घटना भई। पूतना की काया भारी भयंकर हती, मुख सो झाग दे रही। वाको मुख हल जैसो नथुना गुफा के समान है। दाढ़ तो और हु भयंकर ही, दोनों स्तन दो गुम्बदाकार पहाड़न के समान हते। बाल झाड़ी नुमा उलझे भये और आँख आँख तो अंधे कुआ जैसी हती। भुजा और टांग नदी के पुल के समान ही, पेट सूखे तालाब जैसो हो। पूतना की वा भयंकर काया को देख के सिगरे गोपी ग्वाला भयभीत है गए। पूतना की छाती पे निर्भय खिलते भये। कन्हैया जी को देख के गोपी ने झरपट उठाए लिए और वाके बाद यशोदा रोहिणी के संग गोपी ने गाय की पूंछ को झारो देके बालक के सिगरे अंगन को सुरक्षित कियो। उनने पहले लाला को गौमूत्र से स्नान करायो, हरेक अंग पर गौरज को लेप लगायो और गोबल सो उपटन करके अज मंत्र सो बालक की रक्षा करी। मैया यशोदा ने अपने लाला को स्तनपान कराए के पालने में सुबाई दियो। यही समय नंद बाबा और बिनके साथी गोप मथुरा सो गोकुल को लौट आए। जब बिनने पूतना को भयंकर शरीर देखो तो आश्चर्य करवे लगे। नंद बाबा कहवे लगे, आज मोकू जे विश्वास है गयो के वसुदेव जी के रूप में कौ ऋषि ने जन्म लियो है, या फिर वासुदेव जी पिछले जन्म में कोई योगी ही रहे होंगे। चूंकि बिनने जो बात मोकू बताई उत्पाद गोकुल गोकुल में हैवे की सो सांची है गई। तब तक ब्रजवासी ने पूतना को शरीर कुल्हाड़ी सो काट काट के लकड़ियन पर धर दियो और जराय दियो। जब पूतना को शरीर आग पे जलो तो अगर और चंदन की सी खुशबू महक उठी, महक चोना उठे। प्रभु ने पूतना को दूध पी के निष्पाप कर दियो हो। हालांकि पूतना एक बाल घातनी दैत्या ही, वो तो कन्हैया को भी मारवे के लिए ही आई थी। अपने स्तन पे कालकूट जहर लगाए के, लेकिन भगवान की लीला कोई नहीं जाने है। फिर भी प्रभु ने वह दुष्टा को सतपुरुषन के समान परम गति प्रदान करी। परंतु जो हरि भगत रात दिन उन परम ब्रह्म परमात्मा को सब प्रकार बंधन करे हैं, उनको ही ध्यान दे रहे हैं,

0: की सदगति तो निश्चय होवे है। प्रभु अपने सिगरे भक्तन को श्रेष्ठता देते भय कह में है। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकट मणि, नंद बाबा के संग मथुरा सो लौटे सिगरे ही गोपन की नाक में जब पूतना के जरवे की सुगंध पहुंची तो एक दूसरे से पूछवे लगे, जे कहाँ जल रहे है, जे महक कहाँ सो आ रही है। तब ब्रजवासी ने पूतना बद को सिगरों वृतांत उन गोपन को कह सुनायो। बाबा नंद ने अपने लाला को सुरक्षित बचो जान के खुशी सो गोदी में उठाए लियो और अपने लाला को मुख चूमे लगे। जो कोई जन जा कथा को नित्य सुने और सुनावे है बाकू परम गति प्राप्त हुए है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
1: आप सुन रहे थे ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम। आज आपने आनंद लिया श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत पूतना वध की प्रसंग का। कथाकार थे धर्मवीर अज्ञानी। और आइए अब सुनते हैं घनश्याम शर्मा द्वारा प्रस्तुत ये ब्रज लोकगीत।

घनश्याम शर्मा द्वारा गाया अभी आपने ये ब्रज लोकगीत सुना। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या वंदन।

अनुराधा पौडवाल और हरिहरन के स्वरों में आपने सुना सूर्यपुत्र शनिदेव फिल्म का ये भजन। कार्यक्रम का अगला भजन हमने लिया है, फिल्म का नाम है शिव महिमा, स्वर दिया है हरिहरन ने।

0: भजन। इसी के साथ संध्या वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे लखनऊ केंद्र से।
1: लोकायतन कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: पंचों
1: जय
0: जय
1: हिंद।
0: हिंद।
1: अपूर्व भैया,
0: हाँ अपनीता
1: भैया
0: बहन,
1: देखो अपने देश के यार मुख्य व्यवसाय जो है वो खेती है भैया, लेकिन जनसंख्या बढ़ाई के खातिर अपन जोत जोन है कम हो रही है, तो हमका सबका कुछ ऐसा तरीका अपनावे के है कि हमार खेती पाती भी बनी रहे, हमार जोन बिरवा बिरुख है उन्हों बने रहे और हमारा पर्यावरण जोन है बहुत संरक्षित रहे।
0: बिल्कुल सही कहे हो। और देखो ई का पुनीता बहनी एक है तरीका है, वो है कृषि वानिकी। जो हम लोग पारंपरिक खेती करित है वो तो करत रही, जैसे कि गेहूं उत्पादन करित है, धान उत्पादन करित है, दलहन है, तिलहन है। लेकिन ई के साथ साथ मा देखो हम पेड़ पौधा भी लगाई। हमारी जो खाली पड़ी भूमि है, परती की भूमि है, मेड़ हैं, उन पर हम चाहे इमारती लकड़ी होए या औषधीय लकड़ी होए, ई का हम उत्पादन करी। इससे न सिर्फ हमारे पर्यावरण सुधरते हैं बल्कि हमारी अतिरिक्त आमदनी भी होते हैं।
1: बिल्कुल भैया।
0: पुनीता बहनी बातें तो बहुत हैं, लेकिन हम लोगन का कुछ जानकारी भी लेते रह चाहिए। आजकल का हो रहा है तो आओ सुन लीन जाए आज की खबरें।
2: उत्तर प्रदेश में ड्रोन प्रशिक्षण केंद्रों का होगा विस्तार। प्रदेश के सभी 18 मंडल मुख्यालयों या मंडल के एक प्रमुख जिले में ड्रोन एकेडमी के नाम से प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों को कृषि या उद्यान विभाग के फार्मों पर स्थापित करने की योजना है। इन केंद्रों में ग्रामीण युवाओं को ड्रोन निर्माण से लेकर उसकी मरम्मत और संचालन तक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं को सरकार की ओर से प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा जो उनके रोजगार और कैरियर में उपयोगी होगा। गौरतलब है कि ड्रोन की महंगी कीमत के कारण प्रदेश में 90% से अधिक किसान इसे खरीदने में सक्षम नहीं है। ऐसे में सरकार ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। पिछले 2 से 3 वर्षों में प्रदेश में 80 से अधिक ड्रोन बैंक स्थापित किए जा चुके हैं। प्रशिक्षित युवा किसानों के खेतों में ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक और तरल उर्वरकों के छिड़काव में सहयोग करेंगे। इससे किसानों की लागत और श्रम दोनों कम होंगे तथा खेती को स्मार्ट और आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी।
3: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहा,
4: परम तो सभी डाले
3: सब नहीं। आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: अपूर्व भैया,
0: हाँ
1: भैया देखो, हम सब कोई फल फूल सब्जी सब चीजें उगाई थे और उनका उद्देश्य होते कि उसे हमका सबका ज्यादा लाभ मिले, तो उनका कैसे संरक्षित करा जा सकते है, कैसे उनकी मार्केटिंग की जा सकते है, कैसे पैकेजिंग की जा सकते है, इसके बारे में हम बता रही है डॉक्टर नीलिमा गर्ग। तो सुन लीन जाए
0: आज की बात।
6: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां फल फूल और सब्जियों का उत्पादन आप कर रहे हैं वहां इसकी ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण और मार्केट

0: टिंग कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा की पूर्व निदेशक डॉक्टर नीलिमा गर्ग साहिबा। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि फल फूल और सब्जियों की जहां व्यवसायिक खेती कर रहे हैं किसान भाई बहन, वहां अच्छा दाम मिले इसके लिए ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण और मार्केटिंग कैसे करें किसान भाई बहन?
1: सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ताजी उपज का खेत से बाजार तक का सफर कई चरणों से गुजरता है, जिसमें ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण और मार्केटिंग अत्यधिक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसी से उत्पाद की गुणवत्ता निर्धारित होती है और बाजार में उसका उचित मूल्य मिलता है, जिससे कि किसान को उसकी मेहनत का फल मिलता है। इन सभी चरणों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत।
0: तो शुरुआत करें डॉक्टर साहब ग्रेडिंग की। कोई भी उत्पाद, चाहे वो सब्जी हो, फूल हो, फल हो, उसकी ग्रेडिंग का क्या महत्व है और किसान और उपभोक्ता दोनों कैसे इससे लाभान्वित होते हैं?
1: जी, ग्रेडिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि तुड़ाई या कटाई के फौरन बाद किसी फसल की यदि ग्रेडिंग कर दी जाए तो उससे बहुत से तुड़ाई उपरांत नुकसान को बचाया जा सकता है। एक जैसा रंग, रूप, आकार, वजन होने के कारण ये अधिक आकर्षक लगते हैं और मार्केट में अधिक उनका मूल्य मिलता है, इससे किसानों को फायदा होता है।
0: डॉक्टर साहब, ग्रेडिंग के कुछ खास तरीके होंगे?
1: जी, ग्रेडिंग के बहुत से तरीके हैं, जिनमें ये डिपेंड करता है कि हम किस उत्पाद को, किस कमोडिटी को ग्रेड कर रहे हैं। जैसे कि फलों की ग्रेडिंग अलग तरीके से होती है, सब्जियों की थोड़ी अलग होती है और फूलों की अलग। जैसे कि फलों की ग्रेडिंग में हम अधिकतर उनके आकार का ध्यान रखते हैं कि सभी फल एक ही आकार या जैसे एक ही व्यास के हों। जैसे कि सेबों की ग्रेडिंग करें तो हम ये देखेंगे कि एक पेटी में 80 से 100 फल आए, तो उनका जो व्यास होगा वो मोर और लेस एक ही जैसा होगा। इसी प्रकार आम में वजन के हिसाब से ग्रेडिंग होती है, अंगूर में गुच्छे के वजन के हिसाब से ग्रेडिंग होती है और बेरीज में आकार के हिसाब से। कभी कभी फलों की ग्रेडिंग में हम रंग का भी ध्यान रखते हैं कि सभी फल में एक जैसा रंग होना चाहिए।
0: और सब्जियों की ग्रेडिंग?
1: सब्जियों की ग्रेडिंग में हम उनकी ताजगी को देखते हैं कि उनकी पत्तियां जो है वो ताजी हों, कुरकुरी हों, मतलब उनमें कड़ापन हो।
0: और डॉक्टर साहब फूलों में?
1: फूलों में ग्रेडिंग हम लोग देखते हैं कि फूल किस एक ही जैसी अवस्था के होने चाहिए और जो स्टेम की मोटाई है वो एक मानक के अनुसार से होनी चाहिए। सभी स्टेम एक ही जैसी लंबाई के होने चाहिए। जो लंबे स्टेम्स हैं उनकी ग्रेडिंग अलग होती है और जो छोटे हैं उनकी अलग होती है, जिससे कि जब फूल खिले तो सभी एक ही अवस्था में हों।
0: तो डॉक्टर साहब, जो भी ग्रेडिंग है चाहे फल फूल और सब्जियों की, तो इसमें कुछ सरकारी मानक भी हैं क्या?
1: जी, इसके मानक है, एपिडा है, जो कि निर्यात के लिए जो भी हमारे उत्पाद हैं उनके लिए मानक निर्धारित करता है, और घरेलू बाजार में एगमार्क के मानक के हिसाब से जो गुणवत्ता है वो निर्धारित की जाती है।
0: डॉक्टर साहब, ये तो रही ग्रेडिंग की बात, अब पैकेजिंग की बात कर ली जाए। बाजार में जो दिखता है वही बिकता है।
1: जी,
0: तो पैकेजिंग के बारे में क्या कहना चाहती हैं फल फूल और सब्जियों की?
1: जी, फल फूल और सब्जियों, इन सब की पैकेजिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उनकी उम्र को निर्धारित करती है। पैकेजिंग जो है उनकी ना सिर्फ सुरक्षा करती है, उनकी वो उम्र को भी, और एक तरीके से मार्केटिंग टूल का भी काम करती है। तो ये एक पैकेजिंग का है कि ये अधिक मूल्य मिलने में सहायता करती है।
0: डॉक्टर साहब, फल फूल और सब्जियों की पैकेजिंग की बात करें तो कुछ खास तकनीक होगी इसकी?
1: सब्जियों में पैकेजिंग के लिए अधिकतर परंपरागत पैकेजिंग होती है। पुरानी जो पैकेजिंग होती है वो फोम के उसमें होती थी, प्लास्टिक के उसमें होती थी, या फिर हमारे खुले हुए बोरों में। लेकिन आजकल जो है वो प्लास्टिक के जालीदार पैकेजिंग होती है।
0: जी, जालीदार बैग,
1: जालीदार बैग्स होते हैं। जैसे कि आलू है या कंद वाली जो फल है, आलू, प्याज, लहसुन इत्यादि, इनको जालीदार में रखा जाता है, जिससे कि नमी ना इकट्ठी होने पाए, सब्जियों में फफूंद की समस्या ना आए। फूलों की पैकेजिंग भी दो तीन तरीके की है। एक तो ये होती है स्लीव पैकेजिंग। तो स्लीव पैकेजिंग तो ऑर्डिनरी जो हम बाजार से फूल खरीदते हैं, आप देखते होंगे उसके ऊपर उपभोक्ता अपनी लोगो और अपने जो भी मार्केटिंग के जो भी प्रमोशन के लिए जो भी चीज़ें वो सब लिखवा देता है, और फूलों को एक तरीके की सुरक्षा भी प्रदान करती है और उनको थोड़ी देर तक नमी के लॉस से भी बचाती है, जो प्राइमरी पैकेजिंग है। उसके बाद फूलों के लिए हम लोग कार्डबोर्ड पैकेजिंग भी होती है, अगर आपको लंबी दूरी तक भेजना है, और यदि आपके फल फूल के नमी बहुत जल्दी नुकसान होगी तो आजकल हाइड्रेशन पैकेजिंग भी होती है, जिसमें कि पानी युक्त बोतलें रहती हैं या फिर जेल रहता है और या फिर उसमें फोम रहता है, भीगे हुए फोम, जिसमें कि हम फूलों को पैक करके भेजते हैं, जिससे कि नमी की कमी ना होने पाए।
0: डॉक्टर साहब, जो भी फल फूल और सब्जियां किसान भाई बहन पैदा

0: कर रहे हैं, कई बार मार्केट में भाव समय से नहीं है तो उसको भंडारण करना होता है।
1: जी जी
0: तो भंडारण में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं इस समय?
1: भंडारण में तो एक जो महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए जहाँ बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं वहाँ पर तो आपके जो लोकल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि जीरो एनर्जी कूल चैम्बर जिसको हम बोलते हैं कि जमीन के नीचे और गड्ढे में दबा दीजिएगा आप अपना, या फिर एक टेम्परेरी एक स्ट्रक्चर खुले में भी रख सकते हैं, एक ईंटों का स्ट्रक्चर बना के और उसमें यदि दो दीवारों के बीच में आप रेत भर के और उसमें पानी सर्कुलेट करते हैं और थोड़ी हवा का वेंटिलेशन की भी व्यवस्था रखते हैं तो उसमें हमारी सब्जियाँ ज़्यादा देर तक रखी रहती हैं। इसके अलावा जो भंडारण के लिए शीत गृह जो है वो एक आजकल बहुत ही प्रचलित हो गए हैं और जहां पर भी है तो लोगों को उसका इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि हम अपने फल और सब्जियों को थोड़ा भंडारण कर लें। तीसरे तरीके की जो भंडारण का है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर के लिए हम लोग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें क्या करते हैं कि जो कमोडिटी है उसकी श्वसन दर को कम कर दिया जाता है।
0: डॉक्टर साहब, अब मार्केटिंग महत्वपूर्ण है और मार्केटिंग के साथ साथ ब्रांडिंग भी जरूरी है।
1: बहुत जरूरी है, आजकल तो जो दिखता है वो बिकता है।
0: इसमें सोशल मीडिया
1: जी इंस्टाग्राम
0: और डिजिटल प्रचार का भी,
1: फेसबुक इंस्टाग्राम पे आजकल तो ये बहुत कॉमन हो गया है कि जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपनी चीजों को पहले इन मार्केट्स में पहले पॉपुलराइज करते हैं, लोकप्रिय बनवाते हैं और फिर लोग अपने आप से उनको कॉन्टेक्ट करते हैं।
0: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे फल फूल और सब्जियों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण और मार्केटिंग के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: 94-15-78-66-33।
0: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहती हैं किसान भाइयों बहनों का फल फूल और सब्जियों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण और मार्केटिंग के बारे में? डॉक्टर साहब,
1: मैं सभी किसान भाई बहनों से मैं ये आग्रह करूंगी कि वो हमारी जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं ग्रेडिंग की उनका इस्तेमाल करें या फिर किसी मशीन से करें और उसके बाद खूबसूरत पैकेजिंग करें जिससे कि आपका उत्पाद सुंदर दिखे और उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़े। आजकल ऐसी स्मार्ट पैकेजिंग भी हैं जिसमें कि आप ट्रांसपोर्ट के दौरान ही उसमें आप मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर रखते हैं जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी रहती है तो हम लोग अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।
0: डॉक्टर नीलिमा गर्ग साहिबा, आज आप कार्यक्रम में आए और फल फूल और सब्जियों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण और मार्केटिंग कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अपूर्व भैया,
3: हाँ पुनीता
2: भैया, देखो सावन है, हर तरफ हरियाली और ये रिमझिम गिरत बूंदे, अगर ऊपर झूला ना झूला जाए तो बड़ा सुना रह जाते।
3: बिल्कुल,
2: तो भैया कहे ना सुन लीन जाए अपनी बैठकी में, यहाँ एक झूला गीत मोरी चुनरी रंगाए दो और स्वर है अनुज श्रीवास्तव और ममता सक्सेना के।
3: बिल्कुल सही कहो, तो आप सुन लीन जाए यू लोकगीत।

0: पुनीता बहनी,
1: हाँ पूर्व भैया,
0: देखो हम पंच अपने कार्यक्रम के माध्यम से जो अपने किसान भाई हैं इनका तमाम तरह की सूचना साझा कीन करित है। और जब कोई किसान भाई अपने कार्यक्रम में आय का अपन अनुभव साझा करते हैं तो वही का प्रभाव अपने पंच भाई पर बहुत परत है।
1: तो भैया आज के किसान हैं संदीप कुमार वर्मा भैया, जो उन बता रहे हैं अपने जरवेरा फूल उत्पादन के बारे में है, तो भैया लीन जाए या जानकारी।
2: किसान भाइयों बहनों, आज आपको ले चलते हैं बाराबंकी जनपद के रामनगर ब्लॉक के मोती नगर बेरिया गांव, जहां फूलों की संरक्षित खेती से जुड़े संदीप कुमार वर्मा भैया टेलीफोन लाइन पर हैं। संदीप वर्मा भैया, आप फूल उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि इस समय कितने क्षेत्रफल का पाली हाउस है जिसमें आप फूल उत्पादन कर रहे हैं?
3: इस समय हमारे पास डॉक्टर साहब 16,000 स्क्वायर मीटर, लगभग 4 एकड़ क्षेत्रफल में हमारे पास पॉली हाउस है, जिसमें हम जरबेरा पुष्प का उत्पादन कर रहे हैं। हाँ। और इसको लखनऊ मंडी में बेच रहे हैं।
2: तो इसकी शुरुआत हुई कब से?
3: डॉक्टर साहब, ये हमारी शुरुआत हुई है अक्टूबर 2014 में, हमने पहले पॉली हाउस का निर्माण करवाया था जो कि आधा एकड़ का एरिया था हमारा। ये 3 महीने हमको स्ट्रक्चर बनाने में लगे, उसके बाद 7 जनवरी 2015 में हमने जरबेरा पौधे का प्लांटेशन किया।
2: यानी 12 साल हो गया आपको फूलों की संरक्षित खेती से जुड़े।
3: जी,
2: तो आज किस मुकाम पर अपने को पाते हैं फूल उत्पादन में?
3: फूल उत्पादन में आज हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बहुत अच्छे मुकाम पे पाते हैं। 2000 स्क्वायर मीटर यानी कि आधा एकड़ से हमने स्टार्ट किया था और आज हम करीब करीब 16,000 स्क्वायर मीटर लगभग 4 एकड़ में काम कर रहे हैं। अच्छी आमदनी भी कर रहे हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। जो खेती

0: में और किसी भी काम से बहुत ही अच्छा काम है।
1: तो ये बताएं कि पाली हाउस में कौन कौन फूल पैदा करते हैं आप?
0: पाली हाउस में हम तो केवल जरबेरा ही पैदा करते हैं।
1: और 4 एकड़ पूरा जरबेरा ही है?
0: जी जी पूरा 4 एकड़ जरबेरा ही है।
1: तो पूरे साल की दिनचर्या क्या है आपकी सुबह से शाम तक की?
0: दिनचर्या ये है कि सुबह जैसे हम आ गए अपने फार्म पे, अपने खेत पे आ गए जिसपे कि हमारा पॉली हाउस लगा हुआ है, तो दिन भर हमने काम देखा, फिर शाम के वक्त फूल को निकलवा लिया, फूल की पैकिंग करवाई, उसके बाद उसको जो है पैकिंग करवा के शाम को एकदम फिट कर दिया। सुबह वो मंडी ले जाया जाता है, ज्यादातर लखनऊ मंडी लेके जाते हैं, तो लखनऊ मंडी लेके गए, अपना सेल हो गया, उसके बाद आए घर नहाए धोए, उसके बाद फिर अपने फार्म पे 9-10 बजे तक अपने फार्म पे आ जाते हैं।
1: यानी अपने खेत पर होते हैं दिन भर?
0: जी जी लगभग लगभग पूरे दिन का करीब करीब 70% जो अपने खेत पे बीतता है।
1: तो जरबेरा उत्पादन में कौन कौन सी बारीकी आपने 12 साल में अनुभव किया?
0: जरबेरा उत्पादन में सबसे बड़ी बारीकी ये है कि एक तो ये खेती में थोड़ा ज्यादा पूंजी लगने वाला काम है, तो इसमें देख रेख आप जो भी करें, जैसे जो भी फसल है किसान लोग लगाते हैं, जैसे धान गेहूं या ट्रेडिशनल फसल कोई भी लगाए, तो उसमें डेली मॉनिटरिंग नहीं होती, डेली उसकी देख रेख नहीं होती। लेकिन ये काम ऐसा है जरबेरा पुष्प का जो आपको हर एक दिन आपको उसकी देख रेख करनी पड़ेगी, कहाँ पे कौन सा फंगस लग रहा है, कहाँ पे कौन सी बीमारी लग रही है, कहाँ पे कौन सा कीड़ा लग रहा है, और कहाँ पे उत्पादन कम आ रहा है, कहाँ पे ज्यादा आ रहा है, कहाँ पे अच्छी क्वालिटी आ रही, कहाँ पे खराब क्वालिटी आ रही, आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो मंडी में माल बिकेगा वो आपकी क्वालिटी प्लस क्वांटिटी पे डिपेंड होके ही बिकेगा, कि आप उससे अच्छा मुनाफा निकाल पाएंगे, वरना फिर जो ज्यादा पूंजी लग रही है फिर आप जो है धीरे धीरे घाटे में चले जाएंगे।
1: तो आप इसको लगाते कब हैं और एक बार लगाने के बाद कितने दिन तक फूल आपको मिलता रहता है?
0: डॉक्टर साहब इसको लगाने का जो अच्छा समय होता है वो तो प्लांटेशन का मतलब जो समय होता है वो 15 अगस्त होता है। दो तीन समय होते हैं साल में, एक तो आप 15 अगस्त में करा लीजिए, दूसरा आप जो है 15 अक्टूबर को करा लीजिए, तीसरा समय जो होता है वो फरवरी के पहले हफ्ते में करा लीजिए, जनवरी के लास्ट हफ्ते में करा लीजिए, या तो फरवरी के पहले हफ्ते में करा लीजिए। केवल 3 मौसम है साल में जिसमें आप इसका जरबेरा पुष्प का आप प्लांटेशन करा सकते हैं, उससे पहले 3 महीने आपको लगेंगे पूरा स्ट्रक्चर बनाने में। तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जब आप संपर्क करेंगे वहाँ से आपकी फाइल पास हो जाएगी, उसके बाद आप स्ट्रक्चर बना के आप प्लांटेशन करा दीजिए, फिर उसके बाद 3 महीने के बाद आपको फूल मिल जाता है। जैसे मिला मतलब फूल तो लगभग लगभग 2 महीने में ही आ जाता है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग की जो 2 कली होती है उनको आप डिबडिंग करनी पड़ेगी आपको, उसका आपने डिबडिंग किया उसके बाद जो तीसरी फ्रेश फूल आया उसको आप निकालना चालू कर दीजिए, पैकिंग करके मंडी में सेल करिए। तो ये प्रोसेस ये है कि 3 महीने बाद जब से फूल आना चालू होगा तो करीब करीब आपका 4 से 5 साल तक अगर अच्छी देख रेख है, अच्छी मॉनिटरिंग है, मैनेजमेंट आपका अच्छा है, लेबर अच्छे है, लेबर पे आप ध्यान दे रहे हैं, आप जो काम बता रहे हैं वो लेबर कर रहा है, तो करीब करीब इससे 4 से 5 साल तक के आप फूल निकालेंगे, 4 से 5 साल तक के आपको रेगुलर आमदनी होगी डेली बेसिस पे।
1: 12 साल का आपका तजुर्बा है फूल उत्पादन का पाली हाउस में, तो पूरे साल में कितनी लागत गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं और आपका मुनाफा होता कितना है?
0: देखिए मोटा मोटा हम 1 एकड़ का बता के चलेंगे, आप उसी में जो है किसान भाइयों को हम समझाने के लिए 1 एकड़ का लेके चलते हैं। देखिए अगर आप खुद से कुछ काम नहीं कर रहे हैं, मतलब खुद से केवल देख रेख कर रहे हैं, तो मोटा मोटा इसमें जो लागत जो रनिंग जो लागत लगती है, जो मंथली खर्चा आता है, मोटा मोटा 70 से 80 हजार रुपए आएगा। मान के चलिए करीब करीब 10 लाख रुपए लगभग लगभग आपका 1 साल का खर्चा हो गया, और जो आपकी बिक्री जाएगी वो करीब करीब अगर 4 रुपए फूल का औसत पकड़ के चले तो करीब करीब लगभग लगभग 1 एकड़ में 10 लाख फूल निकलेगा, तो 10 से 40 लाख रुपए जाएगा, जिसमें से 2 रुपए करीब आप खर्चा निकाल लीजिए एक फूल पे, तो लगभग लगभग 20 लाख रुपए आपके खर्चे में चले जाएंगे। ये मतलब हम मोटा मोटा बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि इसमें कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कुछ किसान होते हैं अपने हाथ ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं अपने हाथ ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते, उनका काम पूरा लेबर पे डिपेंडेंट होता है, तो ये थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, तो करीब करीब 20 लाख रुपए आपको शुद्ध मुनाफा हुआ साल में। किसान इतना भी ना माने, किसान आप मोटा मोटा आप पकड़ लीजिए कि 1 एकड़ में साल में 12 से 15 लाख रुपए हर हाल में आपको बच जाना है।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: जी हमारा मोबाइल नंबर है 9670-56-83-13 9670568313 9670-56-83-13।
1: चलते चलते कुछ और कहना चाहते हैं आपकी कहानी के बारे में?
0: जी बिल्कुल कहना चाहते हैं हम ये अपने देश के युवाओं से, एक हमारी अपील है या हमारी रिक्वेस्ट है, हम उसको आग्रह करना चाहेंगे कि किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी

0: की तरफ भागने से अच्छा है, अगर आपके पास खेत है तो आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से संपर्क करिए। इस समय गवर्नमेंट कुछ लोन सुविधा अच्छे इंटरेस्ट 3% रेट इंटरेस्ट रेट पे लोन भी दे रहे हैं। अगर जिन युवाओं के पास अपना पैसा खुद की पूंजी नहीं है तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से संपर्क करके, ये एक बहुत ही अच्छा बहुत ही फ्यूचरिस्टिक काम है। ये जो प्रोटेक्टेड संरक्षित खेती है, ये समझ लीजिए अपने देश की खेती को बहुत आगे ले जाने का एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में लग के अगर गांव में आके कुछ काम करेंगे तो गांव के लोगों को भी रोजगार देंगे, प्लस अपना अच्छी आमदनी करेंगे, अपने घर के घर रहेंगे और एक अच्छा मुनाफा जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने खेत का इस्तेमाल करें, उसको खेत से अच्छी पूंजी निकालने का प्रयत्न करें, तो निश्चित रूप से अगर आप अच्छी मेहनत करें तो निश्चित रूप से यहाँ की खेती, अपने भारत की खेती एक बहुत अच्छी दिशा में जाएगी।
1: संदीप कुमार वर्मा भैया।

0: ले जाने का एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में लग के अगर गांव में आके कुछ काम करेंगे तो गांव के लोगों को भी रोजगार देंगे, प्लस अपना अच्छी आमदनी करेंगे, अपने घर के घर रहेंगे और एक अच्छा मुनाफा जो है आप तो प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने खेत का इस्तेमाल करें, उसको खेत से अच्छी पूंजी निकालने का प्रयत्न करें, तो निश्चित रूप से अगर आप अच्छी मेहनत करें तो निश्चित रूप से यहाँ की खेती, अपने भारत की खेती एक बहुत अच्छी दिशा में जाएगी।
1: संदीप कुमार वर्मा भैया, आज के किसान क्रम में आपसे इतनी अच्छी बात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: पुनीता बहनी।
4: हाँ पूर्व भैया।
3: देखो हम पंचन का प्रयास रहते हैं कि अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपने किसान भाइयों का हर वह जानकारी दी जाए जी की उनका आवश्यकता रहा।
4: बिल्कुल भैया।
3: लेकिन कबो यू होते है जो उनका जानकारी चाहिए होते वह हम न दे पाए थे।
4: हाँ तो एक ही खातिर है ना कि वे हमका चिट्ठी पत्री के माध्यम से नहीं लिख के पूछ सकते हैं कि वे का जाना चाहते हैं और अपन कार्यक्रम कैसे इसके बारे में सुझाव भी दे सकते हैं।
3: बिल्कुल तो पता बताओ।
4: तो भैया कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ और भैया पिन कोड है 226001।
3: और अपने पंच भाई देखो मोबाइल का और मेल का भी उपयोग करते हैं।
4: हाँ बिल्कुल भैया तो अपन हाथ में है फोन है तुरंत है हमका लिख दें इसे।
3: बिल्कुल तो उनका मेल भी बता दी जाए।
4: बिल्कुल भैया कार्यक्रम के ईमेल आईडी है farmandhomeairlko@gmail.com।
3: तो पंच भाई हम सब लोग मिलकर आपका मेल का या आपके पत्रन का इंतजार करीबा और यही के साथ देखो अपने कार्यक्रम का समय भी समापन की तरफ बढ़ रहा है। तो पंच भाई से लीन जय विदा। जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
1: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
2: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
1: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
3: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हवाई निरीक्षण कर मेरठ में कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। कहा, कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैयार है सरकार। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज लखनऊ में इको एजुकेशनल हब का किया उद्घाटन। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैज्ञानिक सोच की परिकल्पना को साकार करता है ये केंद्र। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद और प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल आगरा में 2 दिवसीय एआई फ्यूचर रेडी कॉन्क्लेव 2026 के समापन समारोह में हुए शामिल। एआई के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कार्यों को सराहा और प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश जारी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारी वर्षा का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा, समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मेरठ के मोदीपुरम क्षेत्र में एक मंच से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। इस अवसर पर मेरठ के सांसद अरुण गोविल समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी कांवड़ यात्रियों पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई। इसके साथ ही पूरे कांवड़ मार्ग पर हेलीकॉप्टर से भी शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को कांवड़ यात्रियों की नियमित सुरक्षा, सम्मान, सुविधा आदि की समुचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार पूरी तत्परता से कांवड़ यात्रियों के स्वागत और सुरक्षा के लिए तैयार है।
5: कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आए हुए सभी कांवड़ यात्रियों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूँ और सबका अभिनंदन करता हूँ। उनकी सुरक्षा के लिए और उनके स्वागत के लिए हम सब तत्परता के साथ।
4: मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन, सेक्टर मजिस्ट्रेट, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी, जोन, रेंज, जनपद, थाना स्तर के साथ ही तमाम पुलिस अधिकारी भी अभियान का हिस्सा बनकर सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। उधर उत्तर रेलवे के मुरादाबाद रेल मंडल में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने आज बताया कि कांवड़ मेला 2026 के दौरान रेल यात्रियों के सुविधाजनक आवागमन के लिए सहारनपुर, हरिद्वार, सहारनपुर अनारक्षित स्पेशल रेलगाड़ी का संचालन आज से 10 अगस्त तक किया जाएगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज लखनऊ में सीएसआईआर एनबीआरआई के बंथरा कैंपस में इको एजुकेशनल हब का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के वैज्ञानिक संस्थान अब केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है बल्कि समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान विकसित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये इको एजुकेशनल हब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस परिकल्पना को साकार करता है जिसमें विज्ञान, सतत विकास और जनभागीदारी को एकीकृत करते हुए देश की वनस्पतिक धरोहर को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा रहा है। डॉक्टर सिंह ने इस बात पर बल दिया कि वैज्ञानिक संस्थानों को उभरती पर्यावरणीय एवं जलवायु संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक प्रौद्योगिकी का समन्वय करना चाहिए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये केंद्र विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और प्रकृति प्रेमियों के लिए पर्यावरण शिक्षा, जैव विविधता संरक्षण तथा अनुभवात्मक अधिगम का एक अनूठा मंच सिद्ध होगा।
6: प्रत्येक प्रदेश के पौधे भी लगाए गए हैं, वो चाहें तो आकर के अपने प्रदेश के पौधे के साथ खड़े होकर के तस्वीर खिंचवा सकते हैं, सेल्फी खिंचवा सकते हैं। दूसरे विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर के यहाँ विधिवत पीएचडी और दूसरी तरह के अध्ययन कोर्सेज की भी व्यवस्था की जा सकती है।
4: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल आज आगरा में 2 दिवसीय एआई फ्यूचर रेडी कॉन्क्लेव 2026 के समापन समारोह में शामिल हुए। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि एआई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप जो कार्य हो रहे हैं उसका असर धरातल पर दिख रहा है।
7: जहाँ एआई एडॉप्शन की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ भारत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच अनुरूप कार्य जो हो रहा है कि धरातल पर इसका प्रभाव दिखाई दे,

0: फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान हैं, मैं उनको समझाऊंगा।

0: इससे कृषि से लेकर स्वास्थ्य लेकर छोटे मध्यम उद्योग और तमाम ऐसी जगहों पे एआई का इस्तेमाल करते हुए भारत कैसे आगे बढ़ेगा, और ख़ास तौर से हमारे युवा जिनकी आज प्रतिभा मैंने देखी, ये जो छात्र छात्राएं हैं कॉलेजेस में, उनको एआई के लिए क्या सरकार प्रोत्साहन दे रही है उसके बारे में जानकारी दी।
1: केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि एआई के बिना भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता।
2: एआई का भविष्य क्या है, हमें कितना इस्तेमाल करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और इसके बिना भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है, विशेषज्ञों ने अपने विचार दिए। ये दो दिवसीय था, इस वैचारिक मंथन से अमृत निकलेगा, वो भारत को प्रधानमंत्री का विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को पूरा करेगा।
1: एसपी सिंह बघेल केंद्रीय राज्य मंत्री कार्यक्रम में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी शामिल हुए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज प्रयागराज में केपी ग्राउंड में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए देश के विकास में युवाओं की सहभागिता को लेकर चर्चा की। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज प्रयागराज में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जनपद एवं क्षेत्र से जुड़े विभिन्न स्थानीय विषयों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं, जनहित से जुड़े विषयों तथा स्थानीय स्तर पर सामने आ रही समस्याओं की जानकारी प्राप्त की और संबंधित अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने आज बस्ती में जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए चादरों और एसी की स्थिति को लेकर नाराजगी जताई और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को व्यवस्थाएं तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों से उनके इलाज और अस्पताल में मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली।
3: मरीजों को अभी तक वातानुकूलित सेवाएं वहां उपलब्ध नहीं थी, तत्काल एसी लगाए जाने के निर्देश दिए, पूरे वार्ड को वातानुकूलित किया जाए, इसके लिए धनराशि रोगी कल्याण निधि में उपलब्ध है, अस्पताल परिसर की पूरी मरम्मत किया जाए, सड़कें जो टूटी हैं बनाई जाए।
1: प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार एक पहल करने जा रही है। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि शासन की ओर से सभी जिलाधिकारियों को जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रत्येक जिले में तैनात आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के युवा अधिकारी हर माह कम से कम एक इंटरमीडिएट स्तर के विद्यालय का भ्रमण कर विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करें। एक रिपोर्ट।
4: अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा को प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इन कार्यक्रमों में सहभागितापूर्ण चर्चा और प्रश्नोत्तर को प्राथमिकता दी जाएगी। निर्देशों के अनुसार जिलाधिकारी प्रत्येक माह इन कार्यक्रमों का कैलेंडर तैयार करेंगे। प्रत्येक जिले को आयोजित कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण तैयार कर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक शासन के माध्यमिक शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराना होगा। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अभियान तेज हो गया है। इसी क्रम में हर घर तिरंगा अभियान 2026 के सफल और प्रभावी आयोजन के संबंध में अमरोहा में जिलाधिकारी डॉ नितिन गौड़ ने लोगों से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। वहीं पीलीभीत में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह और पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षक और स्थानीय लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सिद्धार्थनगर जिले के एक दिवसीय दौरे के दौरान डुमरियागंज एवं बांसी में लगभग 311 करोड़ रुपए की लागत वाली योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के जनपद भ्रमण से सिद्धार्थनगर जिले को विकास की कई सौगातें मिलेंगी। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी है। नोएडा में बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं अगले 2 दिनों के लिए राज्य के कई भागों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं मैदानी और पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। घाघरा नदी बाराबंकी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बदायूं और

बाद में गंगा लखीमपुर खीरी में शारदा और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हवाई निरीक्षण कर मेरठ में कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा, कहा कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैयार है सरकार। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज लखनऊ में इको एजुकेशनल हब का किया उद्घाटन, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैज्ञानिक सोच की परिकल्पना को साकार करता है ये केंद्र। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल आगरा में 2 दिवसीय एआई फ्यूचर रेडी कॉन्क्लेव 2026 के समापन समारोह में हुए शामिल। एआई के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कार्यों को सराहा और प्रदेश के कई जिलों में रूक रूक कर बारिश जारी, मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारी वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम श्याम सुहानी।

उम्र गुजर रही है मगर सफर अभी बाकी है, जो टूटकर बिखरा हूँ उसका असर अभी बाकी है। लोग मेरी हार के किस्से सुनाते हैं, उन्हें मेरी जीत का खबर होना बाकी है। सबको लगता है कहानी खत्म हो गई, पर मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत अध्याय अभी बाकी है। इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ आज मैं हूँ आपकी रेडियो मित्र, आपके साथ में खुशबू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम में।

जी हाँ श्रोताओं, और अब हम अपना अध्याय शुरू करते हैं। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है आपका। आप हैं गांव गोपी की नगरिया से मिठन लाल सारस्वत, नेहा, नीरज, निकिता और इनके मम्मी पापा। गांव नगलापुला से विजय सिंह, भानु प्रताप, रामानुज, राधिका, पवन, करण, नमन, भोला, डुग्गू और इनके सभी परिवारीजन। गांव नौधरा से कोमल मास्टर, जसुदा, लाखन, सूरज, रोहित, चंचल, अंजना और इनके मम्मी पापा। हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से अजीत, अमित, शिवांश, शिवांगी, चुन्ना और इनके मम्मी पापा। अगला संदेश हमें मिला है श्री राधा सिटी गोवर्धन रोड मथुरा से। शारदा प्रसाद प्रजापति, लक्ष्मी प्रजापति, बेबी व्योमिनी, पुरंजय, कविता, गोविंद, सिमरन और प्रजापति फैमिली हमसे जुड़ी है। अगला संदेश हमें मिला है गाजीपुर से सुरेश उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल का। संबलपुर कांकेर से ये संदेश हमें मिला है फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव का। गमहरिया जमशेदपुर से अगला संदेश मिला है रोहन आर्य और जायसवाल। बाबरी बाजार चंदौली से विजय सरोज जायसवाल। जमशेदपुर से मराहू देवंती जायसवाल। चकिया बाजार चंदौली से सुंदर और सुमन जायसवाल। किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए प्रकाश, तांति, राकेश, देवेंद्र, इन सभी का हमें संदेश मिला है जिला झारखंड से। अगला संदेश हमें मिला है नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण हांगे, दयानंद, ओमकार और साई का। ये संदेश हमने लिया है आप सभी का। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से इन्होंने हमें संदेश लिखा है। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से ये संदेश हमें मिला है कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा।

पुष्पराज और ऋषभ मरावीगा। बेरनी से राजेश सोनी, कंचन गायत्री वैष्णवी और चंचल ढोमने हमसे जुड़ चुके हैं। और ये संदेश संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से आया है। अनिल कुमार घोड़के, वैशाली प्राजक्ता, वैष्णवी गायत्री और यज्ञेश हमसे जुड़े हैं। मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता हमसे जुड़े हैं पटियाला से। सुन लेते हैं सबसे पहले आप सबकी फरमाइश का ये गीत। किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम है मंजिल।

इस खूबसूरत से गीत के बाद अब ले लेते हैं आप सभी के फरमाइशें। पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता हमसे जुड़ चुके हैं। किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए पूना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा, चेतन और सुलोचना भगत का हमें अभी संदेश प्राप्त हुआ है। जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मानस और कनिका पटेल हमसे जुड़े हैं। अगला संदेश हमें मिला है आप सभी का। आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश और करुणा वर्मा, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार का हमें संदेश मिला है।

मेरठ से अनिल जैन, संयम मुस्कान मास्टर जीवीएम जैन, इन सभी का संदेश हमें मिला है। और अगला संदेश महाराष्ट्र से हम तक आया है, मास्टर विठल सुरुषे, सुषमा परिधि, मायरा, नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन, पीआर जैन हमसे जुड़ चुके हैं और किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए। हर्ष विनय विनीत रोजस भाई हमसे जुड़े हैं मनाली हिमाचल से, चंडीगढ़ से शेफाली शेफी डेविस बिमला और सतीश अनेजा का हमें संदेश मिला है, पैठर से शेख चांद, शेख गुफरान, शेख अदनान, शेख नुमान, जाकिया बाजी, शेख फुरखान हमसे जुड़े हैं, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गुगनेजा, पूनम विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा का संदेश हमें मिला है, नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव जानवी गुरु महाराज, नीरेंद्र राजपूत महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से इनका हमें संदेश मिला है, अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा दिलीप अक्षय रुद्रा और रामेकर परिवार, रिजवान खान आयशा सबीहा अनस और रेहान का संदेश हमें मिला है अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से। अगली फरमाइश करता है दीपेश, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, नासिक से विशाल गवली, सोनाली समर्पण और भक्ति गवली का संदेश मिला है, नादुरा से संतोष वसाने, उषा ऋषिकेश अनिकेत और सागर कटक हमसे जुड़े हैं, संजय कुमार साहू, सुजाता शशांक और सीमा साहू का संदेश मिला है पोटिया कला दुर्ग से, गांधीनगर गुजरात से संदेश हमें मिला है सुरेश राठौर, मंजुला विशाल और निशा का, प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश जोहरी हमसे जुड़े हैं गुजरात गांधी ग्राम से, हर्षा रामेकर, इन सभी का हमें पुनः मैसेज मिला है, तो कृपया करके आप हमें दोबारा मैसेज ना करें, आपका संदेश हमने पढ़ लिया है। अगली पसंद करता है नादुरा महाराष्ट्र से के हिवराले, साधना प्रतीक हिवराले, भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी हमसे जुड़े हैं और अगली फरमाइश करता है विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक, चेतन नहाटा, बोरखेड़ा से इन्होंने हमें संदेश लिखा है, पोषण बंछोर, चंद्र किरण, प्रीति और छाया बंछोर हमसे जुड़े हैं पाहरा दुर्ग छत्तीसगढ़ से, ये संदेश हमें मिला है महाराष्ट्र से आदिनाथ बाग पाटिल, अमोल गुड़िया और अशोक देशमुख का, मलकापुर से संजय पाटिल, उषा प्रथमेश निवृत्ति और संजय चौहान का हमें संदेश मिला है, और अगला संदेश हमें मिला है नांदेड़ महाराष्ट्र से, किसी भी गीत में शामिल कीजिए ऐसा इन्होंने लिखा है, गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोधले और आरती जोधले का हमें संदेश मिला है, और ये संदेश हम तक आया है राजनगर से कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, क्रांति मिश्रा, रानी संगीता पासवान, मेनका मुखिया, भूलिया देवी और नवीन रंगोली का, किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए। अगला संदेश हमें मिला है मारहरा दरवाजा एटा से, नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद सुहेल और अनम यशफ अब्बासी, पीएस नवारकर, निर्मला विशाल, सोपान नारायण और आशीष मुहर्रेकर का संदेश मिला है हमें नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, किसी भी गीत में शामिल कीजिए ऐसा इन्होंने लिखा है, तीव्रता छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम और जया मरकाम ने, अगला संदेश बुलंदशहर से हमें मिला है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य, ये संदेश हम तक आया है आप सभी का मोताला महाराष्ट्र से हमसे जुड़े हैं अगले श्रोता विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती गौरी, ओम कुमार सुरलकर, किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए। अगले श्रोता हमसे जुड़े हैं गंज डुडवारा से आफताब अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर लुबना अंसारी और आलिया अंसारी, प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल और यशस्वी वर्मा हमसे जुड़े हैं छत्तीसगढ़ पलारी से।

हमें मिला है आप सभी का, नवीन, ज्योति रानी, मेनका पासवान, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, गोदावरी देवी, प्रदीप, राज बहादुर और शंभू साहा। इन सभी का संदेश मिला है मधुबनी बिहार से। अगला संदेश चौटाला हरियाणा से, दारा पंडित, संजय, प्रियंका, और ये हमने लिया है महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, पीएस नवारकर, विदर्भ से वसंत राज भोजने और मोहन करागले। सुन लेते हैं आप सबकी फरमाइश का ये गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की स्वरों में। फिल्म का नाम है आया सावन झूम के।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वरों में आपने सुना फिल्म आया सावन झूम के का ये गीत। और अब ले लेते हैं आप सभी के संदेश। ये संदेश हमें मिला है मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु सागर और सतना एमपी से उमंग, आकांक्षा और माही मलिक का। अगला संदेश हमने लिया है झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली निशा और परिवार के सभी सदस्य। ये संदेश विलासपुर छत्तीसगढ़ से आया है छुन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास बादवानी का। अगला संदेश हमें मिला है स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत राजदीप गुनरूर, शुभदीप गुरलाल और अविराज का, फिरोजपुर पंजाब से। अगली फरमाइश करता है वैष्णव कॉलोनी सनावाद से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। जामा मस्जिद रोड गोंगावा से हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी। ये संदेश हमें मिला है गंज डुंडवारा से एम खलीक कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरैशी और बेबी अरीबा हबीबा का। गंज डुंडवारा से ही अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है केएच राही, गुड़िया बेगम, वकील प्रेमी हम्माद जमील का। शमगुल खान, अदनान, फैजान, तनु, तबेश आबाद और उरहान खान हमसे जुड़े हैं गंज डुंडवारा से। ये संदेश छत्तीसगढ़ से हमें मिला है बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति प्रहलाद, राजेंद्र उमेश, प्रमिला बंछोर का। अगला संदेश हमने लिया है आप सभी का, आप हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरविंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अकीता लक्ष्मी, बेबी वैदेही जोशी और बेबी हंसिका जोशी। इन सभी का संदेश हमें मिला है जगतपुर बस्तर से। ये संदेश हमने लिया है आप सभी का राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश दीपक, कुमारी पूजा खटक का। अगला संदेश आप सभी का मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़। अगला संदेश हमें मिला है सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री मोहित, देविका, गजेंद्र और हेयांश कुमार। अगला संदेश आप सभी का

जे कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए पित्रामल से विनोद मूडत, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन नहाटा। अगला संदेश हमने लिया है आप सभी का नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सौरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह हमसे जुड़े हैं। सैयद आलम हाशमी, गुनलाज, सलमा असद अरहाम, समस हाशमी परिवार हमसे जुड़ा है अजमेर शरीफ से। उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसु, अर्णव, सत्यमानंद हमसे जुड़े हैं पश्चिम बंगाल से। मुन्ना भगत और गुड्डी भगत का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और निलोफर फातिमा हमसे जुड़े हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से। किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान फैजान, अनु उस्मान और कलीम अंसारी हमसे जुड़े हैं। अगला संदेश हमें मिला है जगराओ पंजाब से। सुनील पाठक, कमल, दीपिका, गव्या, सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी और जयपाल यादव। किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए अगले श्रोता हमसे जुड़े हैं एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज, नवेद, अनम और यशफ अब्बासी। सुन लेते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है काला बाजार।

लिसनर क्लब मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीम, पलक लुबना और यश मंसूरी का हमें संदेश अभी प्राप्त हुआ है। अगला संदेश सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो हमसे जुड़े हैं। ये संदेश मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, साबिक पवार, अलमास, बानो पवार, मोइन छोटू पवार, मोहम्मद हसनैन पवार का हमें मिला है खंडवा से

काला बाजार के इस गीत के साथ ही आज का शाम सुहानी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये तीसरा सप्ताह था। इस सप्ताह भी दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग तथा अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी जैसे मुद्दों को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि इस दौरान कुछ अहम विधेयकों को बिना चर्चा के या संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही, जिस कारण से कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। सदन की बैठक 2 बार के स्थगन के बाद 2 बजे शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित कर दिया। मेघवाल ने मॉनसून सत्र के पहले दिन ही 20 जुलाई को सदन में यह विधेयक पेश किया था। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान है। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2:10 पर ही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाई, जिस पर सभापति ने आपत्ति जताई। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सदन में हंगामा जारी रहने पर सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 बजे शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ोतरी हुई है। मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है, बल्कि इसके कारोबार की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा और नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उपसभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बजे बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। मंगलवार को लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे शुरू होने पर पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखने को कहा। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और

पारित करने के लिए पेश किया। हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। उधर राज्यसभा में भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बैठक बार बार बाधित हुई। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य जांच एजेंसियां आरोपों की जांच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की बैठक 12 बजे शुरू होने पर भी सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया और दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को और संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही और उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी पहले जैसी स्थिति ही रही। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री के बयान की मांग दोहरा रहे थे। हंगामा देखते हुए अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर शुरू होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने चर्चा और पारित करने के लिए बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। सदन ने हंगामे के बीच ही इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की बैठक होते ही विपक्षी सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृहमंत्री की सदन में मौजूदगी की मांग की। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, किंतु सदन में हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक में उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। विधेयक पर करीब 2.5 घंटे तक चली चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। कानून मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदन में विपक्षी सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की बैठक पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा की कार्यवाही
शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और

असाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की वर्षगांठ का उल्लेख किया और सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे और अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखा। विपक्ष के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सदस्य एनके प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सदन ने कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। ये विधेयक सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। इसके बाद बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही सदन ने विनियोग विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया, जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुए अतिरिक्त राशि के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इस दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन भी किया। सुबह 11 बजे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बैठक शुरू होने पर शून्यकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। सदन में हंगामा थमते न देख सभापति ने कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे दोबारा बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन शोरगुल के कारण उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2:15 पर बैठक पुनः शुरू होने पर भी सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और उपसभापति हरिवंश ने 1 मिनट के भीतर ही बैठक को दोपहर 2:45 तक स्थगित कर दिया। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:45 पर बैठक दोबारा शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री के बयान की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा के दौरान सदस्यों ने अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलू उठाए। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि सरकार ये अनुदान की अनुपूरक मांगें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अतिरिक्त बजट को लोक लेखा समिति पीएसी की सिफारिश पर लाई है और पीएसी की अध्यक्षता विपक्ष के नेता के पास है। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर इसे लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोकहित के विभिन्न मुद्दे उठाए। सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया। फिर सदन ने कुछ क्षण मौन रखकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख करते हुए विपक्षी सांसदों से उनसे प्रेरणा लेने को कहा। अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांग दोहराते हुए नारे लगाने लगे। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो मंत्री जीतनराम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखा। इस दौरान विपक्ष के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच ही सदन ने विधेयक को चर्चा के बिना पारित कर दिया। राज्यसभा में यह विधेयक सोमवार को ही पारित हो चुका है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण लगातार 15वें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल शुरू नहीं हो सके।
राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा कि करो या मरो के नारे के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए जो संघर्ष किया उसकी वजह से ही आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। बाद में सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के सम्मान में कुछ क्षण के लिए

0: ये मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बाद सभापति ने इसके बाद शून्यकाल शुरू कराना चाहा। विपक्षी सदस्यों के ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी और इसके बाद सदन में हंगामा जारी रहने पर करीब 5 मिनट के भीतर ही बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: दिस इज आकाशवाणी। Review of this week's Parliament proceedings read by Amrit Bhushan. This was the third week of Parliament's monsoon session. Throughout the week, opposition members in both the houses created uproar over a number of issues such as
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है संवेद स्वर।

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देशभक्ति परक रचना। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम इस सप्ताह विधान मंडल में। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे लखनऊ केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: तो को लेकर सदन में हुए शोर शराबे और हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही मात्र 3 दिन ही चली। 3 दिन में भी कुल 5 घंटे 32 मिनट की कार्यवाही में 2 घंटे 49 मिनट का स्थगन रहा, जबकि 2 घंटे 43 मिनट तक सदन की कार्यवाही प्रभावी रूप से संचालित हुई। सत्र के दौरान विभिन्न विधायी संसदीय एवं प्रक्रियागत कार्यों का निष्पादन किया गया। इसके साथ ही विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। सत्र के दौरान याचिका समिति को कुल 435 याचिकाएं प्राप्त हुई। परीक्षण के उपरांत 282 याचिकाएं स्वीकार की गई। प्रश्न व्यवस्था के अंतर्गत इस सत्र में कुल 2427 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 490 तारांकित तथा 1466 अतारांकित प्रश्न स्वीकार किए गए। इनमें से 120 उत्तरित तारांकित एवं 838 उत्तरित अतारांकित प्रश्नों के उत्तर शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए। सपा सदस्य के शोर शराबे और हंगामे के चलते जहां सदन के सारे कार्यों का निष्पादन हुआ, वहीं 59,000 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पेश किया गया। सत्र के तीसरे और अंतिम दिन ही सदन में जहां ध्वनिमत से अनुपूरक बजट पारित किया गया, वहीं संभल हिंसा की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी गई। सत्र के पहले दिन विधानसभा में वर्तमान सदस्य आलमबदी सहित 21 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और सदन के वरिष्ठ सदस्य आलमबदी के निधन की सूचना दी। उन्होंने कहा कि आलमबदी इस सदन के सबसे वरिष्ठ और बुजुर्ग सदस्य थे और 5वीं बार निर्वाचित होकर आए थे। नेता सदन के अलावा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे सहित सभी दलीय नेताओं ने आलमबदी के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर इसे सदन के अपूर्णीय क्षति बताया। इसी दिन विधानसभा में 21 पूर्व सदस्यों के निधन पर भी शोक व्यक्त किया गया। सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सपा के सदस्य श्री राम मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वेल में गए। सपा सदस्यों की मांग थी कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाए। सपा सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे के चलते सदन स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्यवाही पुनः शुरू होते ही सपा के सदस्य नारेबाजी करने लगे। सपा सदस्यों के हंगामे के बीच ही सरकार ने अपने विधायी कार्यों को निस्तारित किया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बार बार कहने के बाद भी सपा के सदस्य अपने आसन पर नहीं गए। हंगामा कर रहे सपा सदस्यों को आगाह करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग विशेषाधिकार का हनन कर रहे हैं। उनकी इस चेतावनी के बाद भी सपा के सदस्य शांत नहीं हुए। हंगामे के दौरान ही सपा के सदस्य सचिन यादव ने सदन में मौजूद नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो लहराने पर विधानसभा अध्यक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई। बावजूद इसके वह नहीं माने तो उन्हें बलपूर्वक शेष सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया। स्थिति तब अभूतपूर्व हो गई जब नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वक्तव्य देने के लिए खड़े हुए तो सपा के सदस्य नारेबाजी और हंगामा करते रहे। उनके वक्तव्य के समाप्त होने तक सपा के सदस्य नारेबाजी और हंगामा करते रहे। शोर शराबे के दौरान भाजपा और सपा सदस्य दोनों आमने सामने आ गए। सदन के सुरक्षाकर्मियों से धक्का मुक्की भी की। सदन स्थगित होने के बाद भी सपा के सदस्य नारेबाजी करते रहे और धरना देते रहे। सपा सदस्यों के हंगामे के बीच ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा सदस्यों का आचरण प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भावनाओं से विश्वासघात है। जिस मंच का उपयोग जन समस्याओं को उठाने और उनके समाधान के लिए होना चाहिए, वहां पर इस तरह का शोर शराबा और हंगामा लोकतांत्रिक मर्यादा के विपरीत है। सत्र का तीसरा और अंतिम दिन भी शोर शराबे और हंगामे से सराबोर रहा। इसी बीच जहां विधायी कार्यों का निष्पादन हुआ, वहीं विपक्ष ने राम मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना नहीं छोड़ा। सपा सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान किए शोर शराबे और हंगामे पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने क्षोभ व्यक्त किया। सदन की कार्यवाही पुनः शुरू होते ही सपा के सदस्य फिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग को लेकर वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सपा सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे के बीच ही सदन में जहां सारे विधायी कार्यों का निष्पादन हुआ, वहीं उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक का ध्वनि मत से पारित हो गया। सत्र के अंतिम दिन ही संभल हिंसा की रिपोर्ट भी पटल पर रखी गई। सपा सदस्यों द्वारा शोर शराबे और हंगामे पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि विधायिका किसी से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि वाद विवाद, सहमति और असहमति लोकतंत्र का अंग है, परंतु भाषा की मर्यादा हमें ध्यान में रखनी होगी। संसदीय आचरण की परिधि लांघना इस संस्था के लिए अत्यंत हानिकारक है।
1: यह थी विधानसभा की साप्ताहिक समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की साप्ताहिक समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्रा।
0: विधान परिषद सदन की कार्यवाही बीते सप्ताह मात्र 3 दिन ही चली। प्रस्तावित कार्यक्रम से 1 दिन पूर्व ही सदन की बैठक समाप्त हो गई। हालांकि पहली बार सदन में पूर्ण

0: विधानमंडल समीक्षा, आइए सुनते हैं विधानमंडल की साप्ताहिक समीक्षा। सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की साप्ताहिक समीक्षा। लेखक हैं योगेश नारायण श्रीवास्तव।
1: विधानसभा की साप्ताहिक समीक्षा। 18वीं विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार काफी संक्षिप्त रहा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सत्र के कार्य दिवस के लिए 4 दिन निर्धारित किए गए थे। श्री राम मंदिर के चढ़ावा चोरी जैसे अन्य

0: वंदे मातरम का गायन हुआ। विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और शिक्षा के गिरते स्तर व बेसिक स्कूल बंद होने के मुद्दे उठाकर सरकार को घेरा, लेकिन सरकार ने भी पूरी तैयारी से विपक्ष को करारा जवाब दिया। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के खिलाफ सदन में निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। इसके साथ ही सदन में अनुपूरक बजट समेत 12 विधेयक ध्वनिमत से पारित हुए और सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। पहले दिन सोमवार को सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे वंदे मातरम से हुई। पहली बार पूर्ण वंदे मातरम का गायन हुआ। प्रश्न प्रहर शांतिपूर्वक चला। शून्य प्रहर में सदन ने अपने पूर्व सदस्य जयप्रकाश चतुर्वेदी को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। शून्य प्रहर में भाजपा के डॉक्टर विजय बहादुर पाठक ने नियम 59 में वाराणसी स्थित प्राचीन व ऐतिहासिक बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर कहा कि सारनाथ बौद्ध परंपरा पवित्र स्थल के रूप में सार्वभौमिक मान्यता प्रदत्त है। ये सदन सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने पर गर्व करता है तथा इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करता है। इसके साथ ही उन्होंने नियम 115 में राजस्व मामलों से संबंधित विषय उठाते हुए लोक अदालत की तर्ज पर राजस्व जन अदालत शुरू करने की मांग की। इसके बाद समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉ मान सिंह यादव, मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा, बलराम यादव, मोहम्मद जासमीर अंसारी, शाहनवाज खान और शाह आलम ने उत्तर प्रदेश के मंदिरों के प्रबंधन में वित्तीय अनियमितताओं का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाते हुए राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर हंगामा किया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को पहले 15 मिनट के लिए स्थगित किया, जिसे बाद में 20 मिनट के लिए और बढ़ा दिया गया। नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, लंबे संघर्ष के बाद रामलला का मंदिर बना, हमें मंदिर बनाने पर गर्व है। निर्दलीय समूह के नेता राजबहादुर सिंह चंदेल ने शिक्षणेतर कर्मचारियों और रिटायर्ड शिक्षकों कर्मचारियों को भी कैशलेस चिकित्सा योजना में शामिल किए जाने का मुद्दा कार्यस्थगन के रूप में उठाया। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारी सरकार ने शिक्षकों के लिए बड़ा काम किया है, यदि कोई वर्ग छूट रहा है या कोई दिक्कत है तो मुख्यमंत्री से बात करके रास्ता निकालेंगे। दूसरे दिन मंगलवार को समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉ मान सिंह यादव, मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा, बलराम यादव, किरण पाल कश्यप, मोहम्मद जासमीर अंसारी, शाहवाज खान, शाह आलम ने प्रदेश में शिक्षा के गिरते स्तर और बेसिक स्कूल बंद किए जाने का मुद्दा कार्यस्थगन के रूप में उठाया। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सदन में विपक्ष ने जो आंकड़े पेश किए हैं वे गलत हैं। ये जनता को भ्रमित कर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार पर गलत बयानी का आरोप लगाते हुए सपा सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदान की मांगों को सदन में प्रस्तुत किया। भाजपा सदस्य विजय बहादुर पाठक ने नियम 110 में नगरों के फुटपाथों एवं सार्वजनिक मार्गों पर बढ़ते अतिक्रमण तथा अवैध कब्जों को हटाने एवं जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित किए जाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाकर फुटपाथों एवं सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। इसके साथ ही निर्दल समूह के राजबहादुर सिंह चंदेल ने राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रवक्ताओं के ग्रेड पे का मुद्दा उठाया। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सरकार इनके प्रमोशन की तैयारी कर रही है, प्रमोशन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। तीसरे दिन बुधवार को अनुपूरक बजट समेत 12 विधेयक बहुमत से पारित हुए। अनुपूरक बजट पारित कराने के प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने आपत्ति दर्ज कराते हुए चर्चा कराने की मांग की। इसी बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा टकराव हुआ। सभापति के निर्देश के बाद भी बैठे नहीं और विरोध करते रहे। वह सभापति तथा नेता सदन पर टिप्पणी की और सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। इसके बाद भाजपा सदस्यों की मांग पर नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे सदन में पारित किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की साप्ताहिक समीक्षा। लेखक थे योगेश नारायण श्रीवास्तव और मुकुल मिश्रा।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है सड़क।

सड़क महेश भट्ट द्वारा निर्देशित 1991 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसमें संजय दत्त और पूजा भट्ट ने अभिनय किया है।

फिल्म का साउंड ट्रैक संगीत जोड़ी नवदीन श्रवण द्वारा रचित है और सभी गाने अनुराधा पौडवाल के साथ कुमार सानू, अभिजीत भट्टाचार्य और मनहर उदास, इनके साथ देवाशीष दास गुप्ता, जुनैद अख्तर और बाबला मेहता ने गाए थे।

अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाजों में आप सुन रहे थे सड़क फिल्म का गीत, और आइए सुनते हैं इसी फिल्म का अगला गीत।

इसी गीत के साथ आज का एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे थे सड़क फिल्म के कुछ गीत FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में सुने जा सकते हैं।

0: अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
2: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
2: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
2: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नवक्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फोरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
3: आज हमारे अमरेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अमरेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये शहरी सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। श्री शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास

भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है।

0: निगम में शामिल होने का भी आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ट इंडिया, कॉर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेनदेन निःशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेनदेन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेनदेन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेनदेन पर नाममात्र दर से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन एक सक्षम प्रावधान है जिसका उद्देश्य यूपीआई की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति को दर्शाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी और राज्य में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बीच राज्य सरकार और विभिन्न छात्र संगठनों के बीच बातचीत जारी है।
1: 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों पर कायम हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे और जब तक ठोस परिणाम सामने नहीं आता आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच राज्य सरकार ने विभिन्न छात्र संगठनों से बातचीत का सिलसिला तेज कर दिया है। कई संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद सरकार ने उनकी मांगों और सुझावों पर आगे निर्णय लेने की बात कही है। प्रशासन ने आंदोलन के मद्देनजर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये बगरा तवा, सुहागपुर और दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी। ये आकाशवाणी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में भोपाल में 5 अगस्त से चल रही 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में आज भोपाल घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग मजबूत करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 10 ब्रिक्स सदस्य और 4 सहयोगी देशों सहित कुल 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
2: बैठक की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संबोधन से हुई। इसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक और भोपाल डिक्लेरेशन के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। इसके साथ ही भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक के प्रमुख कार्यक्रम भी संपन्न हो गए हैं। अब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि सांची के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे विश्व धरोहर और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे। कल यानी 9 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल भीम बैठका का दौरा करेगा, जहां वे भारत की प्राग ऐतिहासिक और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई, ताकि भारत को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ वार्ता करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अपनी सरकार के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करता है, ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा, लेकिन अगर अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो ईरान इसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया था कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है। श्री ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित चल रही वार्ताओं पर भी सकारात्मक परिणाम की आशा व्यक्त की है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने सरकारी कंपनी अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़े एक जहाज पर होर्मुज जलडमरू मध्य के पास हुए ईरान के हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना समुद्री आवाजाही की आजादी की गारंटी देने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। उधर ओडिशा में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। बैतरनी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से भद्रक और अन्य निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका व्यक्त की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
4: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है, जबकि कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। भद्रक में सालंदी और बैतरणी नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा फिर से पैदा हो गया है। भद्रक और तिहिड़ी ब्लॉक के कई निचले इलाकों और गाँव में पानी भरा हुआ है। कटक में सापुआ और कंटिया नदियों के उफान पर होने से पुराने कटक संबलपुर रोड के कुछ हिस्सों पर आवाजाही प्रभावित हुए है और खेतों में पानी भर गया है। भारी बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब कुछ खेल खबरें। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराया। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। उधर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with news at 9.

मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत, स्वर दिया था कुमार सानू और अलका याग्निक ने। इसी के साथ सुहाने तराने कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृत भारती। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

संस्कृति केवल हमारी स्मृतियों में सुरक्षित अतीत का नाम नहीं, वो उन विचारों, मूल्यों, कलाओं और अनुभवों की एक निरंतर यात्रा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हुए हमारे वर्तमान को अर्थ देती है और भविष्य की दिशा तय करती है। भारत की सांस्कृतिक चेतना और समृद्ध ज्ञान परंपरा में स्वतंत्रता का विचार भी कुछ ऐसा ही है।

0: केवल राजनीतिक मुक्ति नहीं बल्कि विचारों की स्वतंत्रता, ज्ञान की स्वतंत्रता, अपनी पहचान और अपनी परंपराओं को समझने की स्वतंत्रता। इसी विषय पर आज की पत्रिका के संपादकीय में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर विभा नाइक।
1: भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व की प्राचीनतम वैचारिक धरोहर है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह किसी एक रूढ़ी, डॉगमा या संकीर्ण विचारधारा से बंधी हुई नहीं है, बल्कि इसके मूल में स्वतंत्रता का एक ऐसा गहरा, व्यापक और बहुआयामी मूल्य निहित है जो मनुष्य को न केवल बाहरी बंधनों से मुक्त करता है, बल्कि उसे आंतरिक और आध्यात्मिक धरातल पर भी परम स्वतंत्र बनाता है। आधुनिक युग में जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमारा ध्यान राजनीतिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की आज़ादी, नागरिक स्वतंत्रताओं और व्यक्तिगत स्वायत्तता की ओर ही अधिक जाता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि भारतीय चिंतन में स्वतंत्रता केवल अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव अस्तित्व के चरम लक्ष्य और उसके लोक परलोक के कल्याण से भी जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता शब्द दो पदों से मिलकर बना है, स्व और तंत्र, जिसका अर्थ है अपने तंत्र या अपने नियम के अधीन होना। यहाँ स्व का अर्थ व्यक्ति की वह अंतर्निहित चेतना है जो समूचे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, जिसका लक्ष्य है वासनाओं, विकारों, अज्ञान और इंद्रियों की अधीनता से मुक्ति। इस स्वतंत्रता की सिद्धि तब होती है जब मनुष्य अपने विवेक और धर्म के अनुशासन में रहकर आचरण करता है। इसीलिए भारतीय चिंतन धारा में स्वतंत्रता का लक्ष्य मोक्ष या मुक्ति है, जिसे सभी आस्तिक दर्शनों में जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वीकारा गया है। स्वतंत्रता का यह बोध भारतीय ज्ञान परंपरा की पहचान है। भारतीय ज्ञान परंपरा में जहां वेदों को परम प्रमाण मानने वाली आस्तिक परंपराएं जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन हैं, तो वहीं वेदों की सत्ता को खारिज करने वाली नास्तिक परंपराएं जैसे जैन, बौद्ध और चार्वाक दर्शन भी समानांतर रूप से हैं। विचार और अभिव्यक्ति की इसी स्वतंत्रता का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें उपनिषदों के संवादों में भी मिलता है, जहां गुरु और शिष्य के बीच अत्यंत लोकतांत्रिक और स्वतंत्र माहौल में संवाद मिलता है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में भी जब अर्जुन विषाद से घिर जाते हैं और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, तब भगवान कृष्ण उन्हें जीवन, प्रकृति, कर्म और आत्मा का गहनतम ज्ञान देते हैं और पूरे 18 अध्यायों के बृहत उपदेश के बाद अंत में अर्जुन से कहते हैं, मैंने तुम्हें यह परम गोपनीय ज्ञान दिया है, अब तुम इस पर पूरी तरह से विचार करो, इसका विश्लेषण करो और फिर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। निर्णय लेने की यह स्वायत्तता और स्वतंत्रता ही भारतीय ज्ञान परंपरा का वास्तविक गुण है, जो भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में भी धर्म के माध्यम से प्रतिध्वनित होता है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि यहाँ धर्म का तात्पर्य किसी विशेष कर्मकांड या संप्रदाय से नहीं है, बल्कि उन सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों, कर्तव्यों और नियमों से है जो समाज के विनियमन के लिए आवश्यक हैं। इसी धर्म का प्रभाव है कि भारतवर्ष में कभी भी राजा की सत्ता को निरंकुश और असीमित नहीं माना गया है। ऋग्वेद का संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसि जानताम का उद्घोष सामाजिक स्वतंत्रता और समता का एक ऐसा ही प्रमाण है जो सभी को अपने साथ चलने, साथ बोलने और सभी के मनों को समान रूप से समझने के भाव पर केंद्रित है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि सामूहिक चेतना के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और परस्पर संवाद को कितना अनिवार्य माना गया है। इसी प्रकार भारत ही नहीं विश्व में समादृत रामचरितमानस के उत्तर कांड से एक उदाहरण द्रष्टव्य है, जहां राज्याभिषेक के बाद राम प्रजा को संबोधित करते हुए कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुसार

0: चाय के बागान और शिक्षा के नए अवसर उनके जीवन को एक नई दिशा देने वाले थे। लेकिन हेलेन की राह आसान नहीं थी। कम उम्र में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। मगर पढ़ाई छूटने का अर्थ ये नहीं था कि सीखने और आगे बढ़ने का सिलसिला भी रुक गया। सन 1917, पहाड़ियों में चरखे और खादी का आंदोलन चल रहा था। कलकत्ता से आए एक वक्ता के भाषण ने युवा हेलेन के मन को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने तय कर लिया, उनका जीवन अब देश की सेवा के लिए होगा। अगले ही वर्ष 1918 में वो कलकत्ता पहुंची। चरखा प्रशिक्षण केंद्र में सूत कातना सीखा। उनकी प्रतिभा और लगन ने उन्हें मुजफ्फरपुर बिहार में आयोजित खादी और चरखा प्रदर्शनी में कलकत्ता का प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी दिया। फिर आया वर्ष 1920। बिहार भयंकर बाढ़ की चपेट में था। हजारों लोग प्रभावित हुए थे। ऐसे समय में हेलेन लेपचा राहत कार्यों में जुट गई, निस्वार्थ भाव से लगातार। और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी से। हेलेन की सेवा और समर्पण से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें साबरमती आश्रम में आने का निमंत्रण दिया। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने उनके व्यक्तित्व और देशभक्ति को करीब से देखा। यहीं गांधी जी ने उन्हें नया नाम दिया, सावित्री देवी। लेकिन जिस आवाज में इतनी दृढ़ता हो, वो सत्ता को भला कैसे सुहाती? ब्रिटिश सरकार की निगाहें अब उन पर थीं। उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। गिरफ्तारी से बचते हुए वो इलाहाबाद पहुंची और कुछ समय आनंद भवन में रही। वहां उनका संपर्क कांग्रेस के कई नेताओं से हुआ, लेकिन पहाड़ उन्हें पुकार रहे थे। वो वापस करसियांग लौटी और दार्जिलिंग की पहाड़ियों में स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने में जुट गई। घर घर जाकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान, ब्रिटिश प्रशासन की पाबंदियां और उनके सामने एक दृढ़ निश्चय, वो पीछे नहीं हटी। 29 जनवरी 1922, हेलेन लेपचा गिरफ्तार कर ली गई। दार्जिलिंग सदर जेल में 3 महीने, फिर करसियांग में नजरबंदी। समय आगे बढ़ा। सन 1939 और 40, नेताजी सुभाष चंद्र बोस करसियांग में नजरबंद थे। हेलेन लगातार उनके संपर्क में रही। कहा जाता है कि वो संदेश पत्रों के माध्यम से पहुंचाती थी।
1: मैं दिलीराम दुलाल, एक पत्रकार और इतिहास के विद्यार्थी।
2: कोलकाता में मोहम्मद अली पार्क में आयोजित सभा में हेलेन लेपचा महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गई थी। उन्होंने झारिया कोयला क्षेत्र के 10,000 से अधिक मजदूरों का नेतृत्व करते हुए आदिवासी श्रमिकों को शोषण के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन भी किया था। उनको इसी आंदोलन में शामिल होने के कारण गिरफ्तार भी किया गया था। और बाद में जब उन्होंने दार्जिलिंग में अपने साथियों के साथ सदर जेल में 3 महीने तक, बाद में 3 वर्षों तक खरसांग में जब उनको नजरबंद रखा गया था, उस समय में भी उन्होंने स्वतंत्र संग्राम में योगदान दिया था। जैसे कि 1939-40 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस खरसांग में नजरबंद थे, तब उन्हें उनके साहसिक पलायन में महत्वपूर्ण सहायता की थी। बताया जाता है कि पठान की भेष तैयार करने में हेलेन लेपचा ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया था। उनके योगदान के कारण सिक्किम सरकार ने हाल ही में सरकारी मेडिकल कॉलेज को उनके नाम पर रखने के लिए हेलेन लेपचा मेडिकल कॉलेज निर्णय लिया है।
3: मैं सोमनाथ पांडे, सिक्किम से। मैं एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हूँ। हेलेन लेपचा के खोज में हम लोग ने सक्रियता से काम किया। उनका सभी इष्टजन थे, उनका जो मित्रों था, उनका परिवार जन था, उनसे मिलके उनका जो पेपर्स वगैरह ताम्र पत्र सब हम लोग ने निकाल के अभी पूरा ऑडियो विजुअल्स पूरा इतिहास हम लोग ने समेट लिया है। सिक्किम में 1973 से पहले उस समय में भी सिक्किम के लोग भारत के आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन में किस तरह से भाग लिया करते थे, इस प्रश्न में हम लोग पूछ करते हैं। इसी दौरान में सावित्री देवी जो हेलेन लेपचा है उनका संदर्भ में हम लोग ने काम किया है। वो विशेष करके मजदूरों को इकट्ठा करना, मजदूरों को स्वावलंबी कैसे बनाना, इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया। सबसे पहले तो बीमारियों को

0: रखा, दवाई औषधियां किया, उसके बाद में उन्होंने स्वावलंबी बनाने का काम किया। तब ये तो वो बड़ा स्वाभिमानी, वो एक तो निडर माता के रूप में परिचित है। उनका तीन नाम है, एक तो सबसे पहले नाम उनका हेलेन लेप्चा था, तो बाद में जाके ये नाम थोड़ा सा अंग्रेज का जैसा लगा, अंग्रेजी स्कूल से ये शिक्षित हुई थी, तो अंग्रेज का जैसा नाम होने के बाद में महात्मा गांधी ने उनको सावित्री देवी नाम दे दिया। तब उनका गांव में जो खरसांग और सिक्किम में उनका नाम साइली दीदी करके परिचित था। साइली मतलब होता है नेपाली भाषा में थर्ड, तीसरा होता है, तब साइली करके थर्ड करके साइली दीदी, साइली दीदी करके ऐसा नाम उस प्रसिद्ध हुई। तो उनको ताम्र पत्र भी मिला उस समय में स्वाधीनता संग्राम की, लेकिन वो थोड़ा सा समाज में वो ओझल हो गई, क्योंकि हमारा ऐसा है कि जो आगे निकल गए उनका इतिहासकारों ने समेट दिया, लेकिन जो ट्राइबल तो उन्होंने विशेष करके दुर्गम क्षेत्र में ही काम किया, तो उनका नाम थोड़ा इतिहास में थोड़ा सा पीछे रह गया था। तो अभी बहुत अच्छा से उनका नाम आगे आ रहा है। सिक्किम में तो उनका नाम से मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, तो और उनका कहीं रास्ता का नाम हेलेन लेप्चा का नाम से अभी बन रहा है।
1: वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भाग लिया। स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने समाज सेवा का काम जारी रखा। 15 अगस्त 1972 को भारत सरकार ने उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को सम्मानित करते हुए उन्हें ताम्रपत्र प्रदान किया। 18 अगस्त 1980 को हेलेन लेप्चा ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनका जीवन आज भी हमें प्रेरणा देता है।
2: हेलेन लेप्चा, हिमालय की बेटी, आजादी की आवाज। अभी आपने ये लघु रूपक सुना। आलेख अंकुश रोनियार का था, वाचन स्वर प्रांजल।

0: स्वतंत्रता संग्राम केवल रणभूमि में लड़ी गई लड़ाई नहीं थी, ये घरों में लड़ी गई, विद्यालयों में लड़ी गई, लेखन और पत्रकारिता में लड़ी गई, गीतों और कविताओं में लड़ी गई। और इस संघर्ष में भारतीय महिलाओं ने अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई। किसी ने आंदोलन का नेतृत्व किया, किसी ने जेल की यातनाएं सही, किसी ने भूमिगत रहकर क्रांतिकारियों की सहायता की, तो किसी ने अपने लेखन और विचारों से राष्ट्र की चेतना को जगाया। ऐसी ही कुछ साहसी महिलाओं की स्मृति को समर्पित है हमारी अगली प्रस्तुति, राष्ट्र जागरण की दीपशिखाएं, स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी महिला सेनानियां। आलेख और स्वर है प्रसारण कर्मी और प्राध्यापक बिंदु पांडे का।
1: बोलिए सब मिल महाशय मंत्र।

0: जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो सबसे पहले स्मरण होती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिस अदम्य साहस का परिचय दिया वह भारतीय इतिहास की अमर गाथा बन चुका है। अंग्रेजी सत्ता के सामने उनका यह संकल्प, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आज भी राष्ट्रीय स्वाभिमान का उद्घोष प्रतीत होता है। इसी संघर्ष की एक और तेजस्वी कड़ी बेगम हजरत महल। अवध की इस वीरांगना ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया और लखनऊ में विदेशी सत्ता को खुली चुनौती दी। स्वतंत्रता आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने वाली एक सशक्त आवाज थी सरोजनी नायडू। अपनी वोजस्वी वाणी और राष्ट्रवादी विचारों के माध्यम से उन्होंने हजारों महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। वे मानती थी स्वतंत्र भारत का निर्माण तभी संभव है जब महिलाओं को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो।
1: I believe that I must disprove the age-old proverb that the woman has the last word and the longest word. I have the last word, no doubt, not because I am a woman, but because I'm acting today as the hostess of the

0: ihr Necken, Kongress!
1: महात्मा गांधी के संघर्ष में एक मौन किंतु अत्यंत सशक्त शक्ति थी, कस्तूरबा गांधी। उन्होंने सत्य, अहिंसा और सेवा के आदर्शों को जीवन में उतारते हुए अनेक आंदोलनों में भाग लिया और जेल यात्राएं भी की। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हर बड़े परिवर्तन के पीछे त्याग, धैर्य, समर्पण की एक शांत धारा भी बहती है। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब अधिकांश राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार कर लिए गए, तब अरुणा आसफ अली ने ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर अंग्रेजी शासन को सीधी चुनौती दी। उनका साहस उस दौर के युवाओं के लिए प्रेरणा बना। स्वतंत्रता संग्राम की चेतना को जन जन तक पहुंचाने में साहित्य की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और इस क्षेत्र में सुभद्रा कुमारी चौहान का योगदान अविस्मरणीय है। वो केवल एक कवित्री ही नहीं बल्कि सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी भी थी। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने जेल यात्रा की और राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनकी अमर कविता खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी ने भारतीय जनमानस में देशभक्ति और स्वाभिमान की ऐसी लौ प्रज्वलित की जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की। इसी आंदोलन के दौरान एक युवा महिला ने अपनी आवाज को स्वतंत्रता का हथियार बना लिया। यह थी उषा मेहता। उन्होंने गुप्त कांग्रेस रेडियो की स्थापना कर पूरे देश में स्वतंत्रता का संदेश पहुंचाया। जब अंग्रेजी सरकार समाचारों और सूचनाओं पर नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी, तब उनके साहसिक प्रयासों ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की।
2: दिस इज द कांग्रेस रेडियो कॉलिंग ऑन 42.34 मीटर। टुडे वी शैल रीड टू यू अ स्टूपिड रीजनिंग ऑफ द सीएनसी।
1: सुचेता किपलानी ने भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व कौशल का परिचय देते हुए भूमिगत आंदोलनों को सशक्त बनाया। बाद में वे स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी और यह सिद्ध किया कि संघर्ष से निकला नेतृत्व राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करता है। बंगाल की वीरांगना मातंगिनी हाजरा का बलिदान भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। 73 वर्ष की आयु में भी वे आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। अंग्रेजों की गोलियां लगने के बाद भी उनके हाथों में तिरंगा नहीं छूटा और उनके मुख से वंदे मातरम का उद्घोष निरंतर निकलता रहा। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, तब कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व संभाला। उन्होंने महिलाओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर यह स्थापित किया कि राष्ट्र रक्षा और बलिदान के क्षेत्र में स्त्रियां किसी से कम नहीं हैं।
3: नेताजी हमसे 5 घंटे बात किया, हमारे देश का और दुनिया का आधा हिस्सा को कैसे नजरअंदाज करें, यानी महिलाओं को। अगर महिलाओं को भी देश का प्रेम है, उन लोगों को आजादी का जरूरत है, इसलिए आप महिलाओं को भी हम लेने के लिए तैयार है, उनका भी एक फौज बनाएंगे।

अभी आपने सुनी लघु प्रस्तुति राष्ट्र जागरण की दीपशिखाएं। आलेख और स्वर था प्रसारण कर्मी और प्राध्यापक बिंदु पांडे का। इन दीपशिखाओं ने अपने समय को तो रोशन किया ही, आज भी उनका जीवन हमें ये याद दिलाता है कि परिवर्तन की शुरुआत अक्सर एक अकेले साहस भरे कदम से होती है। संस्कृति का संसार बहुत विस्तृत है। कभी वो करघे पर आकार लेता है, कभी किसी पुस्तक के पन्नों में, और कभी उन समुदायों की स्मृतियों में जीवित रहता है जिन्होंने प्रकृति और

परंपरा के साथ सह अस्तित्व की अनूठी संस्कृति रची है। हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ये दिवस भारतीय हथकरघा परंपरा और देश के बुनकरों के योगदान को सम्मान देने के साथ साथ स्वदेशी आंदोलन की उस ऐतिहासिक भावना की स्मृति से भी जुड़ा है, जब 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक आरंभ हुआ था।

किताबें हमारी स्मृति हैं और पुस्तकालय उस स्मृति का सार्वजनिक घर। हर वर्ष 12 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। पुस्तकालय केवल पुस्तकों का संग्रह नहीं बल्कि ज्ञान के संरक्षण और उसके प्रसार के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, और डिजिटल युग में भी वो पढ़ने, शोध और विश्वसनीय ज्ञान तक पहुंचने की संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। भारत की आदिवासी परंपराएं अपनी भाषाओं, लोक कथाओं, संगीत, नृत्य, कला और प्रकृति केंद्रित जीवन दृष्टि से बेहद समृद्ध हैं। हर वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के आदिवासी समुदायों के अधिकारों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और उनके योगदान के लिए जागरूकता बढ़ाना है। करघे के धागों में बुनी हमारी हस्तशिल्प परंपरा, पुस्तकालयों में संरक्षित ज्ञान की दुनिया और आदिवासी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ये तीनों मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक बेहद सुंदर और समृद्ध चित्र रचते हैं। और अब समय है उन विभूतियों के स्मरण का जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में भारत के सार्वजनिक और सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद बिस्मिल्ला खां, राम किंकर बैज, वी एस गायतोंडे, जहांगीर सभावाला, फिरोज शाह मेहता, प्रफुल्ल चंद्र रे, पंडित रविशंकर शुक्ल और अभी हाल ही में दिवंगत हुए पंडित जगन्नाथ बेहरा। इन विभूतियों का स्मरण उन विचारों, कर्मों और सृजनात्मक ऊर्जा को याद करना है जिनसे हमारा सांस्कृतिक वर्तमान निर्मित हुआ। इन महान विभूतियों के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री का शहनाई वादन। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री शहनाई की प्रारंभिक शिक्षा श्री रंगाचारी काकंडीकी से प्राप्त की। उसके बाद श्री चन्नवीर बन्नूर के मार्गदर्शन में लगातार 9 वर्ष तक शहनाई वादन की उच्च शिक्षा प्राप्त की। श्री चन्नवीर बन्नूर डॉक्टर पंडित पुटराज गवाई के प्रमुख शिष्य थे। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री कई पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं, जैसे कि कलाश्री पुरस्कार, कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार इत्यादि। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री देश विदेश के कई प्रमुख संगीत सम्मेलन में अपना शहनाई वादन प्रस्तुत कर चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर श्री मले मलेश हुगार देसाई कल्लूर साथ दे रहे हैं।
1: This is Akashvani. In tonight's national program of music, we bring you a Shahnai recital by

0: अब तक आप सुन रहे थे राग रागेश्री, आइए अब सुनते हैं राग जोग।
1: दैट वॉज राग रागेश्री। श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री विल नाउ प्रेजेंट राग जोग।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग जोग। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री गिरिमल्लप्पा भजंत्री का शहनाई वादन। आपके साथ तबले पर श्री मले मलेश हुगार देसाई कल्लूर साथ दे रहे थे।
1: That was Raag Jog. With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to Shahnai recital by Shri Girimallappa Bhajantri, and he was accompanied on the tabla by Shri Male Malesh Hugar Desai Kallur.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: This program was recorded earlier in the studios of Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर बाद आप ठीक 11 बजे सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
2: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता की पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने

0: शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
1: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स डार्विन डायनेमिक्स, वॉल्ट इंडिया, कार्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निःशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेन देन पर नाम मात्र दर से लागू होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।